साथियों, सोच में अगर मिठास हो तो दिन हसीन बनता है, दिल में अगर हौसला हो तो बंजर भी जमीन बनता है। शुरुआत करो आज के दिन की एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि हर गिरता हुआ कचरा भी फिर तो नगीना बनता है।

वैसे दोस्तों रविवार का दिन आराम से जागने, मनपसंद नाश्ता खाने और नाश्ते की मेज पर अपनों के साथ हंसी के पल बिताना, बस इसी मिठास से तो हर एक भोर सुहानी बनती है। घर की मेज पर जब अपनों की हंसी गूंजती है, हर छोटी से छोटी बात भी खुशियां ढूंढती है। प्यार से भरी एक मुस्कान ही काफी है दोस्तों, इसी मिठास से तो हर एक भोर सुहानी बनती है। और खासकर तब जब आपके अपने आपकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाएं और आपकी हर बात को मंजूर कर लें कि हाँ चलो आज चाहे आपकी छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी हो जाए, पर कितनी खुशी मिलती है। आपस में अपनों का साथ खुशियों के रंगों को दोगुना कर देता है।

शुक्रिया करो उस रब का जिसने ये नया दिन दिया। सांसों की एक लड़ी में एक और मोती पिरो दिया। शिकायतों को छोड़कर आज सिर्फ आभार जताओ, देखो फिर कैसे खुशियों से भर जाता है तुम्हारा जहान। इन खुशियों भरी राहों पर आप इसी तरह हमारे साथ चलते रहें, झूमते रहें। इसी आशा के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल विदा लेती है रूपा। तब तक के लिए विदा दीजिए। इसके बाद आप सुनेंगे बहुत सारे कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए आपको आज के खास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें।

6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण कार्यक्रम, जिसे लेकर आएंगी आपके लिए शीतल। छह बजकर 44 मिनट पर होगा श्री रामचरित मानस गान, जिसमें आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 73। छह बजकर 55 मिनट पर आप सुनेंगे पहले संस्कृत, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम होगा गोल्ड सुप्रभात। 8:45 पर कार्यक्रम होगा म्यूजिकल दिल लगी। 9 बजे से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर होगा म्यूजिकल दिल्ली की कार्यक्रम, जिसमें आपके साथ होंगी कुसुम लता। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:30 पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल का मेलबॉक्स, जिसे आपके लिए लेकर आएंगी कुसुम लता। 6:00 दिल्ली का गोल्ड चैनल है, FM गोल्ड चैनल। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ

0: फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartruhari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from Lower House and 10 from the Upper House. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of the Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Ruti has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by Congress MP Shaptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. Niti Aayog member Rajiv Gauba has emphasized the need for regulatory frameworks to evolve alongside a rapidly changing geopolitical, technological and economic environment. He emphasized that the challenge before policymakers is not to choose between regulation and growth, but to develop regulations that manage risk while supporting innovation, competition and investment. Mr. Gauba stated this while addressing the plenary session on regulatory oversight in an age of disruption at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi yesterday. Emphasizing the need for a proportionate approach, Mr. Gauba said regulatory requirements should be calibrated to the nature and consequences of the risk involved. The Ministry of External Affairs has summoned

चलिए आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर बताती हूँ, और वो खुशखबरी है कि हम सब जीवित हैं। जी हाँ, इससे बड़ी खुशखबरी हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकती। हम जब तक जीवित हैं तब तक अपने इस

हर एक दिन को खुशियों से भरने की उम्मीद रखते हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हो सकता है समस्याएं आएं, लेकिन हम उनका समाधान करने में सक्षम होंगे। अर्थात जो सबसे बड़ी पूंजी हमारे जीवन में कुछ है तो वो ये चलती हुई सांसें हैं, ये जीवन है। और इस जीवन को हृदय से स्वीकार करते हुए, जीवित होने को स्वीकार करते हुए, आइए करते हैं अर्पण की शुरुआत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज अर्पण में आपका साथ देने के लिए मैं शीतल हूँ आपके साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अगर हम सचमुच में अलग अलग खुशियों की बात करते हैं तो उन सबसे बहुत परे, बहुत ऊंची और कह सकते हैं सबसे अहम ये खुशी है कि हम जिंदा हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे संसार के लोग हैं जो इस सुबह आंख ही नहीं खोल पाए, जिनके लिए आज के दिन की शुरुआत ही नहीं हो पाई। हो सकता है हम सुबह सुबह बहुत सी चिंताओं और बहुत सी शिकायतों के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हों, लेकिन उन्हें जरा परे करके महसूस करने की कोशिश कीजिए कि सचमुच में कितनी खास बात है ना कि आप और हम आज के दिन जीवित हैं।

एक बड़ी खुशखबरी तो मैं आपको सुना चुकी थी और एक और बड़ी खुशखबरी मैं आपको फिर सुनाने जा रही हूँ। वो ये कि हम जिस परम शक्ति की तलाश करते हैं, जो शक्ति सारे संसार को चलाती है, वो स्वयं हमारे भीतर विराजमान है। जी हाँ, और जब हम उस शक्ति की तलाश इधर उधर करते हैं तो हम बेहद परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंतर्मुख होंगे तो हम उस शक्ति से, यकीन करिए, जो इतने विशाल पहाड़ों का निर्माता है, जो इतने विशाल असीमित ब्रह्मांड का निर्माता है, वो स्वयं हमारे भीतर बैठा है। क्या इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है? नहीं ना, जीवन में हो सकता है, इस जिंदगी में, मानव जीवन में बहुत सी समस्याएं हों, जिन समस्याओं को लेकर के अक्सर हम ये सोचते हों कि हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों, लेकिन क्या कभी हमने महसूस किया कि ये जो विशेष मानव जीवन का अवसर है, ये ही हमें क्यों मिला है?

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

6:30 और 10 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है अर्पण, अर्पण में आज आपके साथ हूं मैं शीतल। देखिए, खुशखबरियों की जो झड़ी लगी है वो अभी तक रुकी नहीं है। एक और बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये कि अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसे अपने जीवन से बदल सकते हैं। जी हाँ, और हमें क्या चाहिए, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो आप और मैं क्या चाहते हैं कि जो हमारी पसंद की चीज़ नहीं है वो हमारी जिंदगी से चली जाए। तो ऐसा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, बस थोड़ा सा अभ्यास लगेगा, हर एक दिन आपको ये अभ्यास करना होगा। और देखिए, करे बगैर तो बहुत सारे काम जो होते ही नहीं है, तो फिर करना क्या है, तीन चीज़ें हैं। या तो आप खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार कर लीजिए, दूसरा आप उसे नजरअंदाज कर दीजिए, तीसरा बड़े ही प्यार से आप ये मान लीजिए कि ऐसे ही होना था और उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हम उससे नहीं बच सकते, लेकिन अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि पड़ोसी बड़ा शोर कर रहा है और हमें उसके शोर करने की वजह से नींद नहीं आ रही। वहीं जब हम यात्राओं पर होते हैं, हम खासतौर से भारत की बसों में बैठ करके आराम से इतनी तेज़ आवाज़ों में भी सो जाते हैं। रेल में जा रहे हैं, रेल में इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, हम फिर भी सो जाते हैं। इसका मतलब क्या कि हम बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होते, हम आंतरिक परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं। तो बस फिर ये तो बहुत मज़े की बात है, बड़ी खुशखबरी है कि ये जो रिमोट है जिससे हमें खुश रहना है वो हमारे ही हाथों में है। तो हमने करना क्या है, हमने तो बस उस प्रभु का ध्यान करना है, उनके चरणों में खुद को समर्पित करना है और उनको समर्पित हुए अपने इस जीवन के रिमोट से सिर्फ और सिर्फ खुशियों का बटन ही दबाना है।

अद्भुत बात, हम अपने जीवन में हर किसी को जानने में लगे हुए हैं, हर किसी की पहचान करने में, वो कैसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, या फिर इस जीवन को जीने के लिए किसको देखा जाए, किससे प्रेरणा ली जाए। लेकिन इस जीवन का जो सबसे अहम व्यक्ति है वो हम खुद हैं। हम हमारे लिए सबसे अहम हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को ही अपने आप से मिलाने से बहुत दूर रह जाते हैं। तो ज़रूरत है कि हम आज किसी और को न जानने की कोशिश करें, बल्कि खुद को जानने की कोशिश करें कि हम आखिरकार हैं क्यों, हम यहाँ आए क्यों, और हमारे भीतर जो इतनी योग्यताएं हैं, हमारे भीतर जो इतनी सारी चिंताएं हैं, जो इतने सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी हमारे ही अंदर हैं। तो क्यों ना आज हम ये प्रयास करें कि किसी और को ना जाने, बल्कि खुद को जाने कि हम सचमुच उस परमपिता परमात्मा का ही अंश हैं। चाहे हम कैसा भी व्यवहार करते हैं, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस खुद को जाने, देखें कि हमने क्या पाया है, सिर्फ हमने, और ये जीवन कितना खूबसूरत है।

पाया तो हमने अपने इस जीवन में बहुत कुछ है, जैसे ये अवसर था जब हम इन भजनों का आनंद ले सकते थे, और अब एक नया अवसर है कि हम अब रामचरितमानस से पाठ सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं आज अयोध्या कांड के कुछ अंश।

मर्म स्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, फिर उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर होगा आपका और मेरा साथ गोल्ड सुप्रभात में। आप सुनिए समाचार।

0: साधन समित्याः सप्तगिरि उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्याः निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्याः अध्यक्ष पदम अलंकरिष्यन्ति। अद्य नवदेहल्यां पंचम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं संबोधयन्ति वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत यत् गत दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य बैंकिंग परिष्काराणां वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यं अतीव सुदृढम् अभवत्। वित्तमंत्री अब्रवीत यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूल तत्त्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति। इस्राइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहु वर्येण आगामी स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगलदीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ। दूरवाणी संभाषण वेलायां नेतन्याहु महोदयेन कैप्टन मच्छारस्य वीरतायाः भूरिशः प्रशंसा विहिता। स च भारत इज़राइल देशयोः धीरनायकत्वेन उद्घोषितः। परंपरागत रूपेण एतत् मंगल ज्वाला प्रज्वालनस्य गौरवं केवलं इज़राइल नागरिकेभ्यः एव आरक्षितं भवति, येन एतत् आमन्त्रणम् अतीव दुर्लभं विशिष्टं च मन्यते। जापान देशस्य नागोया नगरस्य क्रीडांगणे अद्य सायंकाले षड्वादने आईची नागोया एशियाई क्रीडायाः भव्यं समापनं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूणी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार तीन लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने

0: कैप्टन मछार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशियाई खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from the Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as the chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radhamohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. The Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. The Department of Higher Education has approved the establishment of the 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali, and classical Prakrit. We have more from our correspondent.
2: The Centers of Excellence will be established at Tezpur University in Assam, Vishwa Bharati University in West Bengal, Deccan College, Postgraduate and Research Institute in Pune, Central University of Odisha, and Central University of Gujarat. The initiative will provide dedicated institutional support for advanced academic research, preservation, and digitization of linguistic and literary heritage, and wider dissemination of knowledge relating to these classical languages. The establishment of these 5 centers marks a significant step towards strengthening the institutional ecosystem for the study, research and preservation of India's classical languages. With Suparna Saikia, Saklayan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
1: Ministry of External Affairs has summoned the Charged Affairs of Pakistan High Commission to lodge India's strong protest over the continued facilitation of illegal cross-border infiltration from Pakistan. India also categorically rejected the baseless and motivated allegations regarding an incident in the Firozpur sector, Punjab, along the international border on Friday. External Affairs Ministry said that the Pakistani side was informed that 3 individuals infiltrated into Indian territory and, despite multiple warnings by the BSF to return to Pakistan, continued to move towards the border fence. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

7:20 और 52 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये है गोल्ड सुप्रभात, जिसमें आपके साथ हूं मैं शीतल। जब सुबह की बात होती है तो भाई सेहत की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो सेहत की बात में यहाँ सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन में योग जरूर अपनाएं, कोई ना कोई योग क्रिया जरूर करें। हम चाहें तो अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम चारों तरफ तनाव से घिरे हुए हैं, वहां हम कुछ देर के ऐसे छोटे छोटे आसनास कर सकते हैं जिन्हें करके हम बड़ी ही आसानी से चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, और साथ में जो खड़े खड़े या बैठे बैठे हमारी कमर में दर्द हो जाता है ना, हम उससे भी राहत पा सकते हैं। तो आज जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो योग है शशांक आसन, जिसे चाइल्ड्स पोज भी कहा जाता है। बहुत सरल तरीके से ये किया जा सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जिनके घुटनों में समस्या है वो ये ना करें, जिनके पैरों से नहीं घुटने मोड़ कर बैठा जाता वो ये बिल्कुल ना करें। और करना कैसे है पहले हम देख लेते हैं। वज्रासन यानी घुटनों के बल हमें बैठ जाना है, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, जब तक कि माथा जमीन को ना छू ले। हाथों को सामने फैला दें और थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में रहें और एंजॉय करें कि किस तरीके से हमारा शरीर जो है पूरे तनाव को छोड़ रहा है। फायदे ये हैं इस आसन के कि तनाव और चिंता में भी कमी होती है, मन शांत हो जाता है और कमर को भी बहुत बढ़िया वाला रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ मैं रेडियो पर आपको ये बातें बता रही हूँ, संभव है कि आप वहाँ बैठे हुए मेरी बातों को कैसे समझ रहे होंगे। तो हमेशा जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो ज़रूर किसी न किसी ट्रेनर या विशेषज्ञ के देखरेख में ही करें।

ख्याल तो हमें हर किसी का करना चाहिए, चाहे हमारे आसपास बहने वाला पानी हो या फिर हमारे आसपास फैली हुई गंदगी, क्योंकि ये शहर हमारा है, ये देश हमारा है, ये पृथ्वी हमारी है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम विशेष तौर पर अपनी तरफ से कोई सफाई अभियान नहीं चला रहे हैं, न चलाएं, लेकिन कम से कम हम अपना, अपने आसपास के क्षेत्र का तो ध्यान रख ही सकते हैं। अपना कूड़ा कूड़ेदान में डाल सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, और साथ ही अपने आसपास होने वाली ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के बारे में अगर हम सजग रहें, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सजग रहें तो हम इन परिस्थितियों को बहुत साधारण तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बढ़ाना चाहें तो इस समस्या को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है कि अपना कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में डालना है, और साथ ही दूसरों को भी इसी बात के लिए प्रेरित करना है कि बेशक से हम बहुत बड़े सफाई अभियान के हिस्से ना बने, लेकिन अपना कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें।

क्या आपको भी किसी के आने का इंतजार है, किसी से मिलने का इंतजार है? तो हम यही दुआ करेंगे कि आज आपका दिन खुशियों से भरा रहे, आपकी उनसे मुलाकात हो जाए और आप उनसे अपने दिल की बात कह दें या फिर वो आपसे अपने दिल की बात कह पाएं। यही हमारी उम्मीद है कि जैसे भी हो ये दिन खुशियों से भरा रहे। वक्त हो चला है आपसे गोल्ड सुप्रभात में इजाजत लेने का, लेकिन आप सुनिए समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे और मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। होगी आपसे मुलाकात म्यूजिकल दिलगी में।

0: नमस्कार श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कभी ये नहीं सोचता कि मिट्टी कितनी सख्त है। वे बस अपनी जड़ें फैलाते रहता है धीरे धीरे पर लगातार। ना उसे जल्दी होती है ना ही वो थकता है, क्योंकि उसे पता है एक दिन वही बीज एक छायादार पेड़ बनकर खड़ा होगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर तुरंत नतीजे चाहते हैं और जब वे नहीं मिलते तो हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें सच में मायने रखती हैं, वो धीरे धीरे बनती हैं, चाहे वो कोई सपना हो, आदत हो या कोई रिश्ता। जरूरत बस इतनी है कि हम अपनी कोशिशें जारी रखें, एक ना एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसी धैर्य और उम्मीद के साथ समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। हेलो सायरा।
1: हेलो वैष्णवी, नमस्कार राधा एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। एंड वैष्णवी हैज ओपन्ड द शो विद वेरी वेरी थॉटफुल एंड मोटिवेशनल लाइंस, सो आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी हैज गॉट देयर संडे डोज ऑफ पॉजिटिविटी। यस, वी ब्रिंग यू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ आवर सवेरे वेयर वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ नॉट जस्ट न्यूज बट ऑल्सो सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम योर ओन मेट्रो सिटीज। देखेंगे वहां क्या खास चल रहा है। एंड ऑफकोर्स द लास्ट सेगमेंट इन विच वी रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थडे, birth anniversaries or death anniversaries, all of that in the next half an hour. Let's start with the headlines. Vaishnavi,
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: The 19th Pravasi Bharatiya Divas PBD convention will be held from 7th to 9th January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. The PBD convention will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards and preside over the valedictory session. The convention will also have a youth PBD segment. The event will bring together Indian diaspora members, young diaspora leaders, entrepreneurs, professionals, academics, innovators and other stakeholders from across the world.
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, वहीं उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे।
1: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephonic conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family. Mr. Netanyahu noted that the honor of lighting the ceremonial flame is traditionally reserved for Israeli citizens, making the invitation a rare and significant recognition of Captain Machar's courage and service.
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करा है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है।
1: Ethiopian Federal Forces have reportedly retaken the airport in Mekelle, the capital of the northern Tigray region, reversing a takeover by Tigrayan fighters that led to the suspension of commercial flights last month. Local media reported that severe disruptions to internet and mobile phone networks have made it difficult to gather and verify information from Tigray. Meanwhile, neither the Ethiopian government nor the Tigray People's Liberation Front had publicly commented on reports of the airport's recapture.
0: और अब खेल जगत के खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: जी वैष्णवी, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए खेलों में कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा अगर वैष्णवी बात करें क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 48 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वैष्णवी, ये थे अब तक के कुछ मुख्य खेल समाचार।
0: धन्यवाद मुकेश। श्रोताओ, अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। भारत सरकार की रिफॉर्म उत्सव पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने छात्रों को नमो भारत से परिचित कराने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्रों को नमो भारत के संचालन, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा संबंधी जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। छात्रों ने सरायका लेखा स्टेशन के कंट्रोल रूम का दौरा कर ट्रेन और स्टेशन के संचालन की आधुनिक व्यवस्थाओं को भी करीब से देखा। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल रोहिणी सेक्टर 8 स्थित केंद्रीय विद्यालय में सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ तभी सार्थक है जब उसकी जानकारी और जरूरी सहायता आसानी से लोगों तक पहुंचे। सेवा सेतु कैंप में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। यहां नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता मिलती है।
1: And now let's go to Chennai. The S-band Doppler weather radar at Chennai port is to be replaced next year. The radar has been working for more than 2 decades and it has been restored and will be kept operational till December this year. IMD Director General of Meteorology Mrityunjay Mohapatra said that an order for replacing the radar has been placed. The present order was imported from Germany and has been working since 2002. The S-band radar has a range of about 500 kilometers and is important for tracking cyclones and other weather systems, besides monitoring rain-bearing clouds. Another story coming in from Chennai. The Greater Chennai Corporation's Gender Policy Lab is conducting safety audits at its 417 schools to identify infrastructure gaps, assess physical and environmental risks, and recommend improvements. The exercise follows reports of shortcomings in some schools, including girls being asked to leave class during the periods. The audit, which began last month, assessed child protection systems and students' psychological safety too.
0: और चेन्नई से चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री गडकरी शनिवार को नागपुर में एशियन सिनेरियो ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सम्मेलन के एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वैकल्पिक और बेकार सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब तक सड़क निर्माण में लगभग 80 टन शहरी कचरे का इस्तेमाल कर चुका है।
1: Moving on to Bengaluru, Bengaluru Electricity Supply Company BESCOM has registered a profit of over 293 crore rupees for the year 2025-26. Karnataka Energy Minister K.J. George has informed that revenue collection improvement, efficient management of power procurement, reduction in finance cost and stronger financial discipline helped achieve this feat. He was speaking in Bengaluru after chairing the 144th BESCOM board meeting. He added that increasing revenue and controlling expenditure resulted in improving the financial performance last year.
0: और अब कोलकाता की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार विकास के साथ राष्ट्रवाद, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात उन्होंने राज्य के भारतीय संग्रहालय के एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राज्य में विकास और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ उसकी खराब वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए काम करेगी। उन्होंने युवाओं में राष्ट्रवादी चेतना जगाने का आह्वान किया।
1: And now moving on to Hyderabad, Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy said Greater Hyderabad cannot develop through slogans alone. He said it needs full coordination among officials and scientific plans based on people's needs. Speaking to media after chairing the Hyderabad District Disha Committee meeting at CSIR IICT Dharnaka, he said the city should be planned as one unit even though district and corporation boundaries differ. He asked the collectors of Hyderabad and Mechal Malkajgiri, the GHMC and the three municipal commissioners in the Cyberabad area to work together.
0: सायर, अब महानगरों का मौसम का हाल श्रोताओं को बताते हैं।
1: बिल्कुल, शुरुआत की जाए दिल्ली से।
0: बिल्कुल, दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
1: एंड इफ यू टॉक अबाउट द साउदर्न सिटीज ऑफ चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ऑल थ्री विल हैव मोर और लेस सिमिलर वेदर कंडीशंस। वेल, चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई एंड सम लाइट रेन इज आल्सो एक्सपेक्टेड देयर। टेंपरेचर्स विल रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 27 एंड मैक्सिमम ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल आल्सो हैव अ क्लाउडी स्काई एंड अगेन सम लाइट रेन इज एक्सपेक्टेड। द मिनिमम टेंपरेचर वॉज 21 वाइल मैक्सिमम मे रीच 31 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद will also have a partly cloudy sky and there's some possibility of thunder lightning over there. Temperatures are expected to hover between 23 and 33 degrees Celsius.
0: और अब बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में। सायरा,
1: बिल्कुल,
0: आज विश्व पशु कल्याण दिवस है और इस दिन का उद्देश्य जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और उनके कल्याण, सुरक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूकता करना है। और अगर भारत की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ भी पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम हमें हर इंसानों में जरूर दिखती ही है।
1: Absolutely, I think in our

0: culture. It's very, you know, it's a part of our culture, especially see, you know, the whole, it's, you know, worshipping the cow is symbolic because, you know, ek cow se aapko kitni sari cheeze milti hain. Isliye, like, you know, you pay respect to that animal. So it's a part of our culture. But nonetheless, a lot needs to be done because hum log kai baar dekhte hain ki wahi gaay jab doodh dena band kar deti hai to usko bas chhod diya jata hai, you know, to fend on its own. That should not happen. But yes, definitely, I think today is the day when we remind ourselves of that.
1: बिल्कुल. और जैसा आपने कहा ही, तो श्रोताओं इतना जरूर याद रखिए कि हमारी संवेदनशीलता की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि हम इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि इससे भी होती है कि हम उन जीवों के प्रति कितने दयालु हैं जो अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं कह सकते. और अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है.
0: यस, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 1582 व्हेन Pope Gregory the 13th introduced the Gregorian calendar in several countries. So October 4 was followed directly by October 15 to fix the calendar drift. So today was that day.
1: और मेक्सिको का पहला संघीय संविधान आज ही के दिन 1824 को लागू हुआ था. इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने देश को यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स के रूप में एक संघीय गणराज्य का आधिकारिक स्वरूप दिया.
0: That's right, on this day it became a republic. Also on this day in 1957, the Soviet Union launched Sputnik 1, the world's first artificial satellite, starting the space age.
1: और 1977 में आज ही के दिन तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महासभा के 32वें सत्र को हिंदी में संबोधित किया था. ये पहली बार था जब किसी भारतीय नेता ने वैश्विक मंच पर हिंदी में अपनी बात रखी थी.
0: That's right. And now if we remember some of the personalities, तो इस पे शुरुआत किससे की जाए?
1: सबसे पहले बात करते हैं कस्तूरी बाई के बारे में. स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी सिर्फ बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, इसके पीछे ऐसी अनेक महिलाओं का योगदान भी रहा जिन्होंने समाज सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई. कस्तूरी बाई ऐसी ही एक महिला थी. आज कस्तूरी बाई की पुण्यतिथि है. वर्ष 1892 में जन्मी कस्तूरी बाई प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी की बहन थी. राष्ट्रसेवी परिवार में पली बड़ी कस्तूरी बाई के मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी. गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया. वे महिलाओं को संगठित करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के काम से जुड़ी रहीं. स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रियता इतनी महत्वपूर्ण थी कि वे महाकौशल क्षेत्र से जेल जाने वाली पहली महिलाओं में शामिल थीं. राष्ट्र सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र से भी सम्मानित किया गया था.
0: That's right. Today we are also remembering Shyamji Krishna Varma, a revolutionary lawyer and a journalist who founded the Indian Home Rule Society, the India House, and the Indian Sociologist in London. A graduate of Balliol College, Krishna Varma was a noted scholar in Sanskrit and other Indian languages. He pursued a brief legal career in India and then served as the Diwan of a number of Indian princely states in India. He, however, had differences with the crown authority and was dismissed following a supposed conspiracy of British colonial officials at Junagarh, and then he chose to return to England. An admirer of Swami Dayanand Saraswati's approach of cultural nationalism and of Herbert Spencer, Krishna Varma believed in Spencer's dictum, that is, resistance to aggression is not simply justified but imperative.

सारा, मुझे लगता है कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ भारत की धरती तक सीमित नहीं थी, विदेशों में रहकर भी कई भारतीयों ने स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। और ऐसे ही राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, एक महत्वपूर्ण नाम था जिनका, वो था श्याम जी कृष्ण वर्मा। और श्रोताओं को हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी शुरू की थी जिसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारों को आवाज दी। वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल जैसे युवा राष्ट्रवादियों पर भी उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था।

अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की अभिनेत्री और नृत्यांगना संध्या शांताराम के बारे में। उनका असली नाम वैसे तो विजया देशमुख था। वे प्रसिद्ध फिल्मकार वी शांताराम की पत्नी थी और उनके निर्देशन में बनी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय तथा नृत्य से अपनी अलग पहचान बनाई। संध्या को खास तौर पर झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और मराठी फिल्म पिंजरा के लिए याद किया जाता है। फिल्म पिंजरा में उनके अभिनय और नृत्य को खूब सराहा गया। वहीं नवरंग का लोकप्रिय गीत अरे जा रे जा नरहरि नटखट उनके नृत्य की पहचान बन गया था। सारा अब इस गीत के बारे में बात हो ही रही है तो आइए श्रोताओं को सुनाते हैं।

अब हम बात करेंगे तेलुगु सिनेमा में ऐसी फिल्मों के निर्माता के बारे में जिन्होंने मनोरंजन के साथ संगीत, कला और मजबूत सामाजिक विषयों को भी महत्व दिया। हम बात कर रहे हैं इदिदा नागेश्वर राव के बारे में। उन्होंने पूर्णदेव मूवी क्रिएशंस की स्थापना की और लगभग एक दशक के अपने निर्माता जीवन में सिरी सिरी मूवा, शंकर

भरणम, सितारा, सागर संगमम, स्वाति मुथयम, स्वयं कृषि और स्वर कल्पना जैसी चर्चित फिल्मों का निर्माण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में शंकरा भरणम को विशेष रूप से याद किया जाता है, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को केंद्र में रखकर दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्म स्वाति मुथयम को 1986 की सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और निर्माता के रूप में इदिदा नागेश्वर राव को रजत कमल से सम्मानित किया गया। उनकी कई अन्य फिल्मों जैसे सिरी सिरी मूवा, स्वयं कृषि और शंकरा भरणम को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जबकि सितारा, सागर संगमम और अन्य फिल्मों को नंदी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

हिंदी साहित्य को समझने के लिए जिन नामों का उल्लेख सबसे पहले किया जाता है उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रमुख है। आज ही के दिन 1984 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आलोचक और निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल रचनाओं के आधार पर नहीं बल्कि उसके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ समझने की कोशिश की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत कृतियों में माना जाता है। उनकी अन्य चर्चित रचनाओं में चिंतामणि, रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और भ्रमर गीत सार शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाली साहित्य संगीत की दुनिया में अपनी सुरीली और भावपूर्ण आवाज से अलग पहचान बनाने वाली संध्या मुखर्जी, जिन्हें प्यार से गीताश्री भी कहा जाता था, का जन्म आज ही के दिन 1931 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बंगाली के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया। अपने लंबे करियर में उन्होंने 10,000 से अधिक गीत गाए। उन्होंने एसडी बर्मन, मदन मोहन, नौशाद, अनिल विश्वास और सलील चौधरी जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। संध्या मुखर्जी की आवाज में भावनाओं की गहराई और शास्त्रीय संगीत की मजबूत पकड़ सुनाई देती थी। उन्हें 1970 में फिल्म जय जय संतोषी माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने वैसे तो कई हिंदी फिल्म के लिए अपने आवाज दी है, पर यहाँ पे हम आपको एक उनका खूबसूरत गीत सुनाना चाहेंगे।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेर में आज की हमारी मुलाकात यहीं पूरी होती है। आप जहां भी रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और हर दिन को अपनी एक खूबसूरत याद बनाने की कोशिश कीजिए।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट संडे। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
5: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जाँच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका

0: पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
2: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
3: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान

0: सुरक्षित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पिज़िश्कियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में

0: कि राम राज्य की झलक, पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिकॉन्स्टिट्यूट्स सेवरल डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर 2026-27 टर्म। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री अप्रूव्स 5 न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस, असमीज, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत। इंडिया समन्स स्पार्क एनवॉय टू रजिस्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर कंटिन्यूड फैसिलिटेशन ऑफ इलीगल क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। 19th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन टू बी हेल्ड फ्रॉम द 7th टू 9th ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर इन कोलकाता। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डिस्क्राइब्स इंडियन पायलट स्मिथ मॉचर हीरो ऑफ इजरायल। इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड इनवाइट्स हिम एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इजरायल्स इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी। एंड एशियन गेम्स 2026 टू कंक्लूड टुडे एट नागोया इन जापान। ट्रैप शूटर नीरू ढांडा टू बी इंडियाज फ्लैग बेयरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। एंड नाउ द न्यूज इन डिटेल। Lokasabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bharthru Hari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. It includes 21 members from the lower house and 10 from the upper house, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of the Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP Saptagiri Olaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The term of these committees will be effective from the 26th of last month. So, Ministry of Education has approved 5 centers of excellence for studies in classical languages. Department of Higher Education has approved the establishment of 5 centers of excellence for studies in classical Assamese, classical Bengali, classical Marathi, classical Pali and classical Prakrit. We have more from our correspondent.
3: The Centers of Excellence will be established at Tezpur University in Assam, Viswabharati University in West Bengal, Deccan College Postgraduate and Research Institute in Pune, Central University of Odisha and Central University of Gujarat. The initiative will provide dedicated institutional support for advanced academic research, preservation and digitization of linguistic and literary heritage and wider dissemination of knowledge relating to these classical languages. The establishment of these 5 centers marks a significant step towards strengthening the institutional ecosystem for the study, research and preservation of India's classical languages. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar, Akashvani News, Delhi.
2: The 19th Pravasi Bharatiya Divas Convention will be held from the 7th to the 9th of January next year at Kolkata in West Bengal. The convention will be organized by the Ministry of External Affairs in partnership with the West Bengal government. We have a report.
4: The PBD convention will be inaugurated.

0: more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लियामानी कमेटियों की असरनौ तश्कील की है। मरकजी वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों आसामी, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के मुतालियात के लिए 5 नए महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाली गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयानत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7-9 जनवरी तक कोलकाता में मुनक़िद होगा। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ मच्छर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। और एशियन गेम 2026 खेल आज जापान के नागोया में अख्ताम पजीर हो रहे हैं। ट्रैप शूटर नीरू ढांडा अख्तामी तकरीब में भारत की परचम बरदार होंगी। अब खबरें तफसील से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक कई पार्लियामानी कमेटियों की असरनौ तश्कील की है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट भारद्वाज महताब को खजाना की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। जनाब बिरला ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर को उमूर खारजा की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। रेलवे की कमेटी के सरबराही बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधीर गुप्ता करेंगे। जनाब बिरला ने लोकसभा की रुकन डॉक्टर काकुली घोष दस्तेदार को केमिकल्स और खादों से मुतालिक कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चरणजीत सिंह चुन्नी जरात, मवेशी परवरी और खुराक की डब्बाबंद की कमेटी के चेयरमैन होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह दिफा से मुतालिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी की आबी वसाइल से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि देही तरक्यात और पंचायती राज से मुतालिक कमेटी की सरबराही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सप्तागिरी उलाका करेंगे। इसी तरह बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को मवासलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इन कमेटियों की मुद्दत कार पिछले महीने की 26 तारीख से नाफिजुल अमल हुई। तालीम की वजारत ने क्लासिकी जबानों के मुतालियात के लिए 5 महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। आला तालीम के महकमे ने क्लासिकी आसामी, क्लासिकी बंगाली, क्लासिकी मराठी, क्लासिकी पाली और क्लासिकी प्राकृत के मुतालियात के लिए 5 महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये महारत के मराकज आसाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी, मगरबी बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पुणे के दक्कन कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कायम किए जाएंगे। इस इकदाम के तहत आला सतह की इल्मी तहकीक, लसानी व अदबी विरसे के तहफ़ और इसे डिजिटल शक्ल देने, नीज इन क्लासिकी जबानों से मुतालिक इल्मी मालूमात को वसी पैमाने पर आम करने के लिए खसूसी अदाराजाती ताउन फराहम किया जाएगा। इन 5 मराकज का क्याम भारत की क्लासिकी जबानों के मुताले तहकीक और तहफ़ के लिए दारा जाती निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की समत में एक अहम कदम है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7-9 जनवरी तक मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुनाकिद किया जाएगा। कन्वेंशन वजारत खारजा और मगरबी बंगाल सरकार के इश्तराक से मुनाकिद किया जाएगा। इसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इख्तितामी इजलास की सदारत करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान एजाजात तकसीम करेंगी। वजारत खारजा के मुताबिक प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी को खिराज अकीदत के तौर पर मनाया जाता है, जो 9 जनवरी 1915 को जनूबी अफ्रीका से भारत वापस आया।

0: गए थे। अपग्रेड किए गए आईटीआईज के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले बरस 4 अक्टूबर को हुआ था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस स्कीम का मकसद सनत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना, तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुव्वत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। यह स्कीम भारतीय सनती तरबियती इदारों आईटीआईज को जदीद सनत से हमाहंग तरबियती इदारों में तब्दील करके पेशावराना तरबियत और बेहतर मयार के मौके फराहम करती है। स्कीम की मजमुई लागत 60,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 30,000 करोड़ मरकज की जानिब से, 20,000 करोड़ रियासतों की जानिब से और 10,000 करोड़ रुपए सनत की तरफ से ताउन शामिल है। आईटीआईज नौजवानों को पेशावराना तरबियत से आरास्ता करते हैं और उनके लिए सनत में रोजगार के मौके पैदा करते हैं। दस्तकारी की तरबियत की स्कीम सीटीएस के तहत सरकारी और प्राइवेट सनती तरबियती इदारों में इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग से मुतालिक रोजगार के लिए तरबियत दी जाती है। इस कोर्स की मुद्दत 6 महीने से 2 साल तक है। दिल्ली से हर्षिता ओझा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: नीति आयोग के रुकन राजीव गाबा ने तेजी से तब्दील होते हुए जुग्राफियाई, तकनीकी और इक्तसादी माहौल से हम आहंगी करते हुए एक इंजिबाती फ्रेमवर्क तश्कील करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिसी साजों के सामने इंजिबात और तरक्की के दरमियान किसी एक का इंतखाब करना ही एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ऐसे जाब्तों को तय करना है जो इख्तरा, मुसाबिकत और सरमायाकारी की हिमायत करते हुए खतरा से निमटने की सलाहियत के हामिल हों। जनाब गाबा कल नई दिल्ली में 5वें क्वार्टरली इक्तसादी कॉन्क्लेव के मुकम्मल सेशन से खिताब कर रहे थे, जिसका मौजू था तेज रफ्तार तब्दीलियों के दौर में जाब्ता जाती निगरानी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपने खुसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि हुकूमत ने हवाई अड्डों पर आलमी मयार की सहूलतें फराहम करके शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे को किस तरह बेहतर बनाया है। पेश है कैंपेगौड़ा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से मुतालिक बेंगलुरु के हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा आज एक बड़े मुसाफिर और कार्गो मरकज में तब्दील हो चुका है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात से जोड़ता है। माली साल 2025-26 के दौरान इस हवाई अड्डे ने 4 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों को खिदमात फराहम की, जबकि बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों की तादाद में तकरीबन 24% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान इस हवाई अड्डे पर तकरीबन 2,80,000 तैयारों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। पिछले साल इसने 5,00,000 मैट्रिक टन से ज्यादा सामान का नकल व हमल किया, जिसके जरिए कारोबार को भारत और बैरून मुल्क की बड़ी मंडियों से जोड़ा गया। चेक इन और सामान रखने की जदीद सहूलियात, फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, लाउंजेज और शानदार अंदरूनी डिजाइन की वजह से इसे सोशल मीडिया पर बहुत सराहा गया। टर्मिनल 2 का बागीचे के तस्वर पर मबनी डिजाइन, सब्ज दीवारों, लटकते बागात, खूबसूरत मनाजिर और कारीगरी के साथ बांस का इस्तेमाल कुदरती रोशनी को अंदर आने देता है और आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी यानी बागों का शहर भी कहा जाता है। ये हवाई अड्डा मुसाफिरों के लिए सहूलियात, जदीद बुनियादी ढांचे, मुनफरिद तर्ज तामीर और सख्त हिफाजती इंतजाम को यकजा करता है, जबकि शहर की खसूसियात और मिजाज की भी अक्कासी करता है जिसकी ये खिदमत करता है। बेंगलुरु से सुजेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजारत खारजा ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाजिबुल उमूर को तलब किया और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय सरहद में गैर कानूनी दरअंदाजी की मुसलसल एयानत करने के खिलाफ पाकिस्तान से सख्त एहतजाज दर्ज किया। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर जुमे के रोज पेश आने वाले एक वाकये के बारे में लगाए गए बेबुनियाद इल्जाम को भी यकसर मुस्तरद किया। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी फरीक को बताया गया कि 3 अफराद भारतीय इलाके में दाखिल हुए और बीएसएफ की जानिब से कई बार पाकिस्तान वापस जाने की वार्निंग दिए जाने के बावजूद वो सरहदी बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। इन अफराद की जानिब से फौरी खतरा पैदा होने की सूरत में बीएसएफ को कार्रवाई करनी पड़ी। भारत के

0: मुताबिक ये वाकया पाकिस्तान की जानिब से सरगर्म मुसल्ला मुनशियात के ग्रोहों की जानिब से बार बार सरहद पार नकलो हरकत करने की कोशिश को जाहिर करता है। पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि वो सरहद पार दरअंदाजी, मुनशियात की स्मगलिंग की सरगर्मियों और पाकिस्तान की सरहदी मुहाफिज फोर्सेज की मिली भगत की तहकीकात करे और उसे रोकने के मुनासिब इकदाम करे। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइल के आइंदा यौम आजादी की तकरीबात में तकरीबाती शमा रोशन करने के लिए मदऊ किया है। कैप्टन मच्छर से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान जनाब नेतन्याहू ने फजाई हमले को नाकाम बनाने में उनकी बहादुरी को सराहते हुए उन्हें भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन मच्छर की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं की और उनके अहले खाना के लिए भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। जनाब नेतन्याहू ने कहा कि तकरीबाती शमा रोशन करने का एजाज रिवायती तौर पर इसराइली शहरियों के लिए मखसूस होता है, इसलिए कैप्टन मच्छर को यह दावतनामा उनकी बहादुरी और खिदमात का एक गैर मामूली और अहम एतराफ है। कैप्टन मच्छर इस वक्त अबूजबी में जेर इलाज है और सेहतियाबी के मरहले से गुजर रहे हैं। उन्होंने कॉकपिट में होने वाले हमले के दौरान गैर मामूली दिलेरी और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए 174 मुसाफिरों की जानें बचाई। आईजी नागोया में एशियन गेम 2026 आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस तरह दो हफ्ते से ज्यादा अरसे तक जारी खेलकूद का यह शानदार मुकाबला खत्म हो जाएगा। एशियाई खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नागोया सिटी मिजो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में मुनाकिद होगी। इसी मकाम पर इफ्तिताही तकरीब भी मुनाकिद की गई थी। इख्तितामी तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगी। इस साल एशियाई खेलों में भारत ने कुल 85 तमगे जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वो तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर रहा। भारत ने सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे जीते। इख्तितामी तकरीब के लिए भारत की खवातीन परचमबरदार सरकर्दा निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वो नागोया में फख्र के साथ तिरंगा थामेंगी। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-1 रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत ने सीरीज के पहले 2 मैचों में जीत हासिल की, जबकि कल रात न्यू चंडीगढ़ के मौलनपुर में तीसरे और आखिरी 1 रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में उसे वेस्टइंडीज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 92 रन जबकि केएल राहुल ने बगैर आउट हुए 129 रन बनाए। इस तरह भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा। जवाब में वेस्टइंडीज ने 48 ओवर्स 2 गेंदों में 5 विकेट पर 352 रन बनाकर जीत का निशाना हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप ने 162 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात अपने सफ़े अव्वल पर मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के भोपाल दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी बनाई है। भारत का फौजदारी निज़ाम दुनिया के जदीद तरीन निज़ामों में शामिल होगा, अमित शाह का बयान। इसी अखबार ने नायब सदर जमहूरिया के खिताब को सुर्खी बनाई है। भारत ने यह साबित कर दिखाया कि जमहूरियत और तरक्की साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश तंजानिया में बैन पार्लियामानी यूनियन के 153वें इजलास में भारतीय पार्लियामानी वक्त की क्यादत करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने अपने खेल के सफ़े पर एशियन गेम्स में भारत की शानदार कारकर्दगी को नुमाया तौर पर शाये करते हुए लिखा है, एशियन गेम्स में भारत को क्रिकेट और हॉकी दोनों में गोल्ड मेडल मिले।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लियामानी कमेटियों की असर नौ तश्कील की है। मरकजी वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों आसामी, बंगाली, मराठी, पाली और प्रकृत के मुतालियात के लिए 5 नए महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाले गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयानत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में मुनक़िद होगा। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल, भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ और वजीर आजम को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

अक्सर जिन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत होती है या जो दिल से सबसे सच्चा प्यार करते हैं, वही जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तन्हा छूट जाते हैं। कभी हालात, कभी मजबूरियां, तो कभी किसी दूसरे की बेरुखी। वजह चाहे जो हो, कुछ नसीब में मोहब्बत के हिस्से लिखे ही नहीं होते हैं। नाजुक से दिल को कोई सहलाने वाला ना मिला, हम दर्द में तड़पते रहे पर कोई अपनाने वाला ना मिला। यूं तो शहर में भीड़ बहुत थी अपनों की, पर जो हमें समझे ऐसा कोई मोहब्बत का हिस्सा ना मिला। लेकिन हम ये कहेंगे कि मोहब्बत का हिस्सा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही अपने आप में मुकम्मल मोहब्बत का एक उदाहरण है। तो अपनी जिंदगी में हम अगर किसी की तलाश में हैं, तो कोशिश करिए कि आप अगर किसी को नहीं मिल पा रहे हैं, कोई आपसे आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आप किसी की इस यात्रा को पूरा कर पाएं, आप किसी की मंजिल बन पाएं। 8:47 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से। जब जब बात होती है मोहब्बत की, तो बात होती है कि एक ऐसा बहुत ही खूबसूरत एहसास है जो हर एक दिल चाहता है, हर एक दिल मोहब्बत करने का मुंतजर है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे प्यार किया जाए, पसंद किया जाए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, तो ये कड़ी अगर हमसे ही शुरू हो जाए, तो फिर देखिएगा ये आगे कितनी बढ़ेगी। तो इस प्यार को, मोहब्बत को, अगर हम इंसानियत का नाम देकर मोहब्बत करते चले जाएं, प्यार करते चले जाएं, तो इस दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत होती दिखाई देगी हमें।

मोहब्बत से बढ़कर कोई और काम की चीज हो भी नहीं सकती है। हम खबरों में बार बार सुन रहे हैं, अपने आसपास सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारी जगह, एक ही नाम, स्मिथ मच्छल। जी हाँ, इनका नाम सुनते ही हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि सिर्फ एक भाव की अपनी जान से ज्यादा अहमियत इंसानियत को दी गई, तो इससे हम देखें कि उनको एक अलग पहचान मिल रही है। पूरा आकाशवाणी एफएम गोल्ड परिवार उन्हें सलाम करता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय होने का जो असली गुण है और उसमें भी इंसान होने का जो असली गुण है कि बेशक से मुझ पर कितना भी संकट आ जाए, हो सकता है उन्हें ये भी मालूम हो कि पता नहीं वो इस इवेंट के बाद कैसे होंगे, ठीक होंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया और उनके जीवन को बचाया। इनके इस खूबसूरत सी चीज़ के लिए वो बधाई के पात्र हैं, जो कि हम देख रहे हैं देश विदेश हर कहीं से उनके लिए इतनी सारी शुभकामनाएं आ रही हैं। हमारी तरफ से भी उनके जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएँ हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इसी तरह से अपने जीवन में इन्हीं सिद्धांतों पर चलते रहें। और उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्या हम अपने जीवन में भी इसी भाव, इसी पूर्णता के साथ जीते हैं कि हम बेशक से अपने सुख को पीछे रखें, बेशक से हम दुख में रहें, पर दूसरों के जीवन के लिए कुछ ऐसी वजह बन पाए जहां उनके जीवन सुख सुविधाओं के लिए हम कुछ कर पाए। अगर हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं तो ये जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत लम्हा है।

8:59 और 28 सेकंड हुए हैं। वक्त है आपसे म्यूजिकल दिल्ली में यहाँ छोटा सा विराम लेने का। आपके साथ होंगी 9:10 पर कुसुम। बहुत सारे गीतों और बातों के साथ आप सुनिए समाचार। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजनी नगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी राथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकल दिल्ली के इस सफर पर अब मैं हूं आपके साथ कुसुम। साथियों, 4 अक्टूबर की सुहानी सुबह है, छुट्टी का दिन है। वैसे हर दिन कुछ कहता है, हर सुबह कुछ कहती है, शायद यही कि आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता।

0: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है मेरा कल दिल लगी। आज से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह चल रहा है साथियों। ये आज यानी 4 अक्टूबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 तक मनाया जाएगा। इस साल का विषय है रॉकेट रिवॉल्यूशन। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक में हो रहे तीव्र बदलाव, कम होती लागत, रीयूजेबल रॉकेट प्रणालियों और अंतरिक्ष तक बढ़ती पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये सप्ताह कक्षाओं और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पता लगाने के अवसर प्रदान करता है। इस दौरान छात्रों को अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियां करने और अंतरिक्ष के बारे में और अधिक रुचि बढ़ाने का अवसर मिलता है। तो हम इसका ध्यान रखें और अपने बच्चों को, छात्रों को इस ओर जरूर प्रेरित करें। और एक और जानकारी हम आपको दे दें, महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय पद्म भूषण गोपाल दास नीरज पर आधारित कार्यक्रम हिंदी दिवस कारवा गीतों का आज शाम 6:45 से रात 9 बजे तक मावलंकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। आप इसका हिस्सा बनकर पद्म भूषण गोपाल दास नीरज के सुरीले गीतों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल एक गीत हम आपको सुनवा देते हैं, नीरज का ही लिखा हुआ, फिल्म शर्मिली से।

जी हाँ, खिलते हैं गुल यहाँ और खिल के जब बिखरते हैं तो दिल मिलते हैं, और ये दिल मिले रहें, गुल खिलते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि सब मिलकर रहें, सब मिलकर काम करें। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन की। राष्ट्रीय पशुधन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन क्षेत्र का सतत विकास करना, किसानों की आजीविका सुधारना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें चारा और पशु आहार का विकास भी शामिल है। तो जो भी इस क्षेत्र से संबंधित है वह सरकार की ओर से राष्ट्रीय पशुधन मिशन की सहायता का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक बहुत प्यारा गीत है, बातों बातों में फिल्म का नाम है, आइए सुने।

विज्ञान ये सिद्ध करता है कि जानवर सोच सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। हमारे लिए इस ओर बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और अगर हम पहले की बात करें तो आदिकाल से हमेशा से ही पशुओं और मनुष्यों का साथ रहा है और पशुओं ने मनुष्यों के जीवन में सहयोग किया है, बहुत सहयोग किया है। चाहे वो हमने बैलगाड़ी बनाया है, चाहे उनका दूध लिया है, कुछ भी करने में इनका हमें इनका साथ मिला है, सहयोग की ज़रूरत हुई है हमारे जीवन में। और आज पशुओं की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उन्हें विलुप्त होने से बचाने और उनके संरक्षण के बारे में भी ये दिन जागरूक करता है। हालांकि हर एक दिन हमें इसके प्रति जागरूक करता है कि ये जो धरती है ये सभी की है, तो हम सभी के साथ मिलकर प्रेम भाव से रहें।

0: और अब साथियों म्यूजिकल दिल लगी यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 21 सितंबर। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रयागराज से बीनू प्रजापति और बुढ़ार मध्य प्रदेश से सविता सोनी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं

0: आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह भर नहीं है, इतिहास उन धड़कनों का नाम भी है जो समय के बीत जाने के बाद भी हमारे अंदर स्पंदित होती रहती हैं। कुछ नाम किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम किताबों के साथ साथ देश की स्मृति में अंकित हो जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है अमर शहीद बाजी राउत का, जिसे याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि उस साहस को प्रणाम करना है जो उम्र का मोहताज नहीं था। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, आंखों में सपनों और कल्पनाओं की दुनिया होती है, उस उम्र में उन्होंने अपने हाथों में देश की आन थाम ली थी। इतिहास के पन्नों में धड़कती एक ऐसी घटना जिसकी नमी कभी सूखी नहीं। एक नाव थी, एक नदी थी, एक रात थी, और उस रात से कहीं अधिक काला सत्ता का अंधकार था, और सामने 12 साल के एक छोटे से बच्चे का अडिग साहस। एक ऐसा क्षण जो इतिहास को उजालों से भर गया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में अत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। बाजी राउत भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर सन 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर नामक गांव में हुआ था, जो ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। बाजी राउत एक निर्धन मल्लाह परिवार से संबद्ध थे। उनके पिता का नाम हरि राउत और माताजी का नाम रानिया देवी था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार संकट में आ गया। इस कठिन परिस्थिति में उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया। वो आसपास के घरों में धान कूटने और मजदूरी का काम किया करती थीं। बाजी राउत के दो बड़े भाई भी थे। अत्यंत कठिनाई से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। आर्थिक कठिनाई के कारण उनकी माँ बाजी राउत की शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाती थीं। लेकिन जीवन की पाठशाला बड़ी थी। बाजी राउत ने बचपन से ही अन्याय और गरीबी को देखा था। नदी की धार संग बहते उनके जीवन ने मेहनत के पसीने को देखा था और उनके भीतर साहस, स्वाभिमान और निर्भीकता के संस्कार पड़े।

माझी। ओडिशा की ढेंकनाल रियासत अपने दमनकारी और क्रूर शासन के लिए कुख्यात थी। प्रजा पर करों का बोझ था बेगार और शासन की कठोरता ने एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। ये वो समय था जब देश में स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन जारी थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही देसी रियासतों और राज्य रजवाड़ों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रजामंडल आंदोलन भी आरंभ हुआ। ढेंकनाल में भी जनता का आक्रोश बढ़ा और वहां प्रजामंडल का गठन हुआ। वैष्णव चरण पटनायक ढेंकनाल प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जो वीर वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने ढेंकनाल के कोने कोने में घूमकर युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित किया। बालक बाजी राउत अपने गांव नीलकंठपुर में प्रजामंडल की बैठकों में शामिल होते, उनकी बातें सुनते। निर्दोष ग्रामीणों पर सिपाहियों के अत्याचारों ने उनके बाल हृदय को भीतर तक उद्वेलित कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही बाजी राउत ने स्वयं को प्रजामंडल आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया और अपना सामाजिक जीवन एक सजग बाल क्रांतिकारी के रूप में आरंभ किया। प्रजामंडल आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत करने और आंदोलनकारियों के बीच संवाद तंत्र को सुचारू बनाए रखने के लिए बच्चों और किशोरों की एक विशेष शाखा गठित की गई, जिसे वानर सेना कहा गया। बाजी राउत इसी वानर सेना में शामिल थे। वानर सेना के सदस्य ब्रिटिश पुलिस और राजा के सिपाहियों की गतिविधि पर नजर रखते, आंदोलनकारियों तक गुप्त सूचनाएं और संदेश पहुंचाते, गांव में ढोल बजाकर सभा के आयोजन की सूचना लोगों को देते थे। इसके साथ ही नदी, घाटों, जंगलों और गुप्त रास्तों की पहरेदारी भी वो किया करते थे, ताकि पुलिस या राजा के सिपाही अचानक हमला न कर सकें। बाजी राउत दिन रात इन कामों में सक्रिय रहा करते थे। चूंकि वो एक मल्लाह के पुत्र थे, इसलिए अंधेरे में नदी पार कर गुप्त संदेशों के आदान प्रदान में विशेष भूमिका निभाते। इस तरह वो और उनके बाल साथी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर आंदोलनकारियों को पुलिस की दबिश से बचाते थे। 1938 का साल आते आते ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन

अत्यंत तीव्र हो गया था। चारों ओर से विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। जनता अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों ने जनता और शासन के बीच तनाव को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य केंद्र था भुवन गांव। ब्रिटिश और रियासत की सेना आंदोलन से अत्यंत परेशान हो उठे और दमन चक्र तेज हो गया। उद्देश्य था किसी भी तरह प्रजामंडल आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना, लेकिन आंदोलनकारी तो जैसे स्वयं सैनिक बनकर निकल पड़े थे।

ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। राजा और ब्रिटिश हुकूमत आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए आक्रामक हो चुके थे। 10 अक्टूबर सन 1938 को ढेंकनाल राजा के सिपाही और ब्रिटिश पुलिस का संयुक्त दल भुवन गांव पहुंचा। पुलिस नेताओं को पकड़ना और ग्रामीणों पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका प्रतिरोध किया। इस तरह ये संघर्ष बढ़ने लगा। पुलिस ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चला दी। इसके बावजूद ग्रामीणों का उग्र विरोध जारी रहा। स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश पुलिस और सशस्त्र बलों ने गांव से लौटने की सोची। वो सुरक्षित ढेंकनाल शहर पहुंचना चाहते थे और वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता नीलकंठपुर घाट से होकर ब्राह्मणी नदी को पार करना था। 11 अक्टूबर सन 1938 को पुलिस बल नीलकंठ घाट पर पहुंचा। आधी रात बीत चुकी थी। नदी तट पर केवल एक नाव बंधी थी। उस रात पहरेदारी का जिम्मा 12 साल के बाजी राउत पर था। प्रजामंडल के शीर्ष नेताओं ने बाजी राउत को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पुलिस या राजा के सिपाहियों को नदी पार करने के लिए कोई नाव न दी जाए, क्योंकि वो ढेंकनाल से और सैन्य बल लाकर भुवन गांव और नीलकंठपुर में धावा बोल सकते थे। आधी रात को बाजी राउत के पास हथियारबंद पुलिस पहुंची। आदेश आया, नाव खोलो और नदी पार कराओ। सामने बंदूकें थीं और पीछे संगठन का आदेश और गांव की सुरक्षा का प्रश्न। बाजी राउत ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी आपे से बाहर हो गया। बाजी राउत को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। उन पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नाव की रस्सी को जोर से पकड़ रखा था। बाजी राउत को धक्का देकर जब पुलिस नाव में बैठने की कोशिश करने लगी, तब उन्होंने शोर मचाकर गांव को सचेत करना शुरू किया। बौखलाए अधिकारी ने राइफल की भारी बट से बाजी राउत के सिर पर प्रहार किया। उनके सिर से खून बहने लगा। बावजूद इसके उन्होंने नाव की रस्सी छोड़ी नहीं और गांव वालों को आवाज देते रहे। इस पर क्रोधित पुलिस अधिकारी ने उन्हें गोली मार दी। बाजी राउत वहीं ब्राह्मणी नदी के तट पर शहीद हो गए। शोर सुनकर गांव के लोग घाट की ओर दौड़े। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इस तरह बाजी राउत के कुछ अन्य साथी लक्ष्मण मलिक, फगु साहू आदि भी शहीद हो गए। बाजी राउत की शहादत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उनकी अंतिम यात्रा ने उड़ीसा में जनता को आक्रोश से भर दिया। ज्ञानपीठ सम्मान से अलंकृत उड़िया कवि सच्चिदानंद राउत राय ने बाजी राउत शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी और इस बाल शहीद की स्मृति को साहित्य में अमर कर दिया। उनका भावपूर्ण स्वर यही था कि ये चिता नहीं साथियों, अंधेरे देश में स्वतंत्रता की वो ज्योति है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि बाजी राउत का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, बाजी राउत का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: डाले।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनाव प्रचार आज का अंतिम दिन है। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई हैं।

0: मतदान 6 अक्टूबर को होगा। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय जनमानस में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में श्री कृष्ण वर्मा के अथक प्रयास देश की स्वाधीनता संग्राम का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, that is ICSI, in New Delhi today, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements. Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met United States Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. In a social media post, Dr. Jayashankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Delhi police has transferred complaints of alleged sexual harassment made by 3 female journalists against police personnel to the crime branch for a fair and impartial inquiry. The alleged incidents took place yesterday during a protest in the New Delhi area where police personnel were deployed to maintain law and order. According to Delhi police, the New Delhi district received the complaints and handed them over to the crime branch for further investigation. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Rajinagar assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephone conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family.
2: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery.
1: The Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. India has put up an impressive performance at the 20th Asian Games, securing fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 21 silver and 37 bronze. The closing ceremony of the Games will be held at Paloma Mizuho Stadium in Nagoya, Japan. The event is scheduled to begin at 2:30 p.m. Indian Standard Time. The Indian boxing contingent has returned to New Delhi following a triumphant campaign at the 2026 Asian Games. Speaking to the media upon her arrival, boxer Lavlina Borgohain, who clinched gold in the women's 75 kg category on her birthday, shared that the timing made the milestone particularly special. The IMD has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbha, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior Karnataka during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.

बजकर 11 मिनट और 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम मधुर तरानों का दिल ढूंढता है। वो गीत जिन्हें कल भी दिल अपने करीब समझता था आज भी है और कल भी रहेंगे, ऐसे ही गीतों को लेकर हाजिर हूं मैं आशीष, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हाथ की सफाई के गीत से, गायक कलाकार लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, संगीत कल्याण जी आनंद जी और गीतकार गुलशन बाबरा।

0: प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। यस्मिन् प्रभागे नानाविधवाक्यानि ऐक्यभावयुतासु हिन्दी संस्कृत कन्नड भाषासु प्रस्तूयते प्रियमित्रेण गणेशेन।
1: प्रथमं वाक्यम्, अहं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि। कन्नडा मे नानु प्रतिदिन शालेगे होगुत्तेने। द्वितीयं वाक्यम्, छात्राः श्रद्धया पठन्ति। कन्नडा मे विद्यार्थिगळु श्रद्धयिंद ओदुत्तारे। तृतीयं वाक्यम्, अस्माभिः सदा सत्यं वक्तव्यम्। कन्नडा मे नावु यावागलू सत्यवन्नु हेळबेकु।
0: प्रियाः श्रोतारः, आगता गमन वेला अधुना, किन्तु आगामी सप्ताहे पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियां अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल संकेतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। नायब सदर जम्हूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। सनती तरबियती इदारों की कायापलट के लिए शुरू की गई पीएम सेतु स्कीम को एक साल मुकम्मल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। यमन के हुक्काम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है। हौसियों ने रियाज में आराम को मरकज को निशाना बनाते हुए मिजाइल और ड्रोन हमला करने का दावा किया है। और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमुई तौर पर 85 तमगे जीत कर चौथे मुकाम पर रहा। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जम्हूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का सफर मुल्क के इदारों, छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों, निजी स्टार्टअप इदारों की कुव्वत पर आगे बढ़ेगा। वो आज नई दिल्ली में भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI के 58वें यौमे तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब राधा कृष्णन ने जोर देकर कहा कि मुल्क सरमायाकारों का भरोसा और एतमाद हासिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। नायब सदर जम्हूरिया ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है, साथ ही वो तेज रफ्तार तकनीकी पेशरफ्त और तरक्की के दौर में भी दाखिल हो रहा है। भारत के कंपनी सेक्रेटरियों के इंस्टीट्यूट ICSI का तस्करा करते हुए जनाब राधा कृष्णन ने मुल्क में अच्छे कारपोरेट इंतजामिया के फरोग में इंस्टीट्यूट के अहम रोल की सताइश की और इसे पायदार तरक्की के लिए आलमी पैमाना करार दिया।
3: Today, as a global benchmark for sustainable development, the ICSI ensures that the modern company secretary fosters robust corporate transparency and serves as the backbone of investor confidence in the Indian market.
2: उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि मजबूत आत्मनिर्भर भारत की तामीर में ICSI की इज्तिमाई कोशिशों की बदौलत मुल्क एक दिन दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। वहां मंगल के रोज वोटिंग होगी। इन दोनों हलकों में मरकजी फोर्सेज पहुंच रही हैं। इधर पुलिस और सेंट्रल फोर्स के अहलकारों ने पोलिंग से कबल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की खातिर मुख्तलिफ गांवों में रूट मार्च शुरू कर दिया है। अपग्रेड किए गए ITIs के जरिए प्रधानमंत्री हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करने वाली स्कीम पीएम सेतु का आज एक साल मुकम्मल हो गया है। हुनरमंदी की तरक्की और सनतकारी की वजारत की स्कीम पीएम सेतु का आगाज पिछले बरस 4 अक्टूबर को किया गया था। इस स्कीम का मकसद सनत पर मबनी हुक्मरानी को मजबूत करना

0: तरबियत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना और उभरती हुई अफरादी कुव्वत की मांग के मुताबिक कोर्सेज को फरोग देना शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम इनकलाब पसंद रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी श्याम जी कृष्ण वर्मा के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी थी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क के अवाम उनकी दिलेरी और मादर वतन के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के तई उनके पुख्ता अज़्म को हमेशा याद रखेंगे। दिल्ली पुलिस ने 3 खातून सहाफियों की जानिब से पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुबैना तौर पर जिंसी एतबार से हरासा किए जाने की शिकायतों का मामला मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंक्वायरी की खातिर क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया है। ये मुबैना वाकयात नई दिल्ली के इलाके में कल एहतजाज के दौरान पेश आए थे। उस वक्त पुलिस अहलकारों को अमन कानून बरकरार रखने के लिए तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात के लिए ये शिकायतें क्राइम ब्रांच को मुंतकिल कर दी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। इधर अगले 2 दिन के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के बकिया हिस्सों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ और हिस्सों, नीज शुमाली कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों से जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पीछे हटने का इम्कान है। यमन की फोर्सेज ने दावा किया है कि यमन में अहम महाजों पर हौसी लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर सऊदी अरब ने हौसियों के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि सऊदी शहर रियाज को मिसाइल और ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। मीडिया इतलात के मुताबिक यमन की बैन अलाक्वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरकार की मुसल्ला अफवाज ने 2 महाजों पर हौसी कुमक के खिलाफ 97 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। इतलात में कहा गया है कि इस कार्रवाई में 260 हौसी लड़ाकों को हलाक किया गया है और 44 फौजी मोटर गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट नीज सप्लाई साजो सामान तहस नहस हो गया। मालूम हुआ है कि फोर्सेज ने सना और सादा में हौसी ठिकानों को निशाना बनाया। टकराव वाले अहम महाजों पर लड़ाई में तेजी आ रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में ख्वातीन के 53 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर अंतिम पंघाल को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने चांदी का तमगा हासिल करने पर भारतीय ख्वातीन की गोल्फ टीम को भी मुबारकबाद पेश की है, जो आदिति अशोक, परनवी सार्थूर्स और दीक्षा डागर पर मुश्तमिल है। जापान में जारी एशियाई खेल आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इस तरह 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी खेल मुकाबलों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। भारत ने 20वें एशियाई खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इनमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। इन खेलों की इख्तितामी तकरीब जापान के नागोया शहर में पलोमो मिजू स्टेडियम में होगी। ये तकरीब अब से कुछ देर बाद भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगी। भारत की सरकर्दा निशानेबाज नीरू ढांडा इख्तितामी तकरीब में भारतीय दस्ते की परचमबरदार होंगी। भारतीय मुक्केबाजों का दस्ता एशियाई खेलों में अपनी शानदार मुहिम के बाद नई दिल्ली वापस आ गया है। अपनी आमद के बाद नामानिगारों से बात करते हुए मुक्केबाज लोलीना बोरगोहेन ने, जिन्होंने अपनी सालगिरह के दिन ख्वातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता था, इस बात को उजागर किया कि उनकी इस जीत ने इस संग मील को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में दूसरी बार मुकाबला करने से उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाते हुए सोने का तमगा जीतने का मौका मिला, जबकि सबका खेलों में उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया था।
1: हर एथलीट का सपना रहता है कि बड़े कंपटीशन में जाए, वहाँ गोल्ड मेडल लाए। एशियन गेम्स इतना बड़ा कंपटीशन है और ऊपर से मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और इसीलिए भी स्पेशल है कि मेरा सेकंड एशियन गेम्स है और लास्ट टाइम मेरा सिल्वर था, तो मेरा माइंड में पूरा था कि मुझे इस बार कलर चेंज करना था, तो इस वजह से भी ये बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल था।
0: भारतीय फिजाइया ने आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूसरी सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का एहतमाम किया। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय फिजाइया की जनूबी फिजाई कमान की जानिब से आज तिरुवनंतपुरम में वाके लूलू मॉल में सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन SIM 2026 का अहतमाम किया गया। ये तंदुरुस्ती और लोगों से राबते के सिलसिले में भारतीय फिजाइया की एक अहम पहल है। ये प्रोग्राम भारतीय फिजाइया के वाहिद परमवीर चक्र याफ्ता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की अजीम कुर्बानी और बहादुरी को याद करने और हुब्बुल वतनी, नज्म व ज़ब्त, जिस्मानी तंदुरुस्ती, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और मुल्क के तई खिदमत के जज्बे को फरोग देने के लिए मुनक़िद किया गया। खास खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा है कि मुल्क के इदारों, MSMEs और स्टार्टअप्स की कुव्वत पर विकसित भारत का सफर आगे बढ़ेगा। मगरबी बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। सनती तरबियती इदारों की कायापलट के लिए शुरू की गई PM सेतु स्कीम को एक साल मुकम्मल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। यमन के हुकाम ने सना और सादा में हौसियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमलों की तस्दीक की है और 2026 के एशियाई खेल आज जापान के नागोया में इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। भारत सोने के 21 तमगों समेत मजमूई तौर पर 85 तमगे जीतकर चौथे मुकाम पर रहा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President CP Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Reji Nagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And now the news in detail. Vice President CP Radhakrishnan today said that the journey of Viksit Bharat will be built on the strength of India's institutes, MSMEs and startups. Addressing the 58th Foundation Day of Institute of Company Secretaries of India, ICSI, in New Delhi, Mr. Radhakrishnan emphasized that the nation cannot progress without gaining the trust and confidence of the investors. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world, while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements.
3: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
2: Talking about ICSI, Mr. Radhakrishnan lauded the institute for contributing in the promotion of good corporate governance in the country and described it as the global benchmark for sustainable development. Today is the last day of campaigning for the Nandigram and Reji Nagar Assembly by-elections. The voting will take place on Tuesday, the 6th of October. Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and Central Force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs, PM Setu, has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on this day last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. More from our correspondent.
4: PM Setu aims to enhance the overall quality and relevance of vocational training by transforming Government India's industrial training institutes, IT,

0: मेमोरी ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो हु वेरी ब्रेवियसली फॉट अगेन इन द 1971 वॉर एंड शॉट डाउन द पाकिस्तानी सेबर्स. द ओकेजन इज ऑफ कोर्स द एयरफोर्स डे विच इज ऑन 8th ऑफ अक्टूबर एंड दिस इज वन ऑफ द इवेंट्स मेजर इवेंट्स विच वी आर कंडक्टिंग इन हिज मेमोरी.
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज. Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
2: Welcome back to the Midday News on Akashvani. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. The IMD said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from the remaining parts of Marathwada and Vidarbha, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior Karnataka during next 2 days. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met the commander of the United States Indo-Pacific Command, Admiral Samuel Pepero. In a social media post, Dr. Jaishankar said they discussed ways to further strengthen the security partnership and maritime cooperation between India and the United States in the Indo-Pacific region. Yemeni forces claim that Houthi fighters suffered heavy losses on key fronts in Yemen, while Saudi Arabia has rejected a Houthi claim that Riyadh was targeted in a missile and drone attack. As per the media reports, Yemeni armed forces of the internationally recognized government carried out 97 operations against Houthi reinforcements on the Tur al-Baha and Taiz fronts. We have more from our West Asia correspondent.
3: Saudi Arabia has rejected a Houthi claim that Riyadh was targeted in Houthi missile and drone attack. Spokesman for Saudi-led coalition called the claim misleading, saying the Houthis were trying to project an illusory victory and divert attention from losses suffered on key fronts in Yemen. The Houthi military claimed that they had launched missiles and drones at Aramco in Riyadh in response to Saudi attacks on Sana'a and other places in Yemen. They had claimed that they had hit targets and caused fire. Meanwhile, the armed forces of Yemen's internationally recognized government said they carried out 97 operations against Houthi reinforcements in Taiz and Tur al-Baha. They said 260 Houthi fighters were killed or neutralized and 44 military vehicles and supply assets were destroyed or disabled. Manish Shiva for Akashwani News from Dubai.
2: In sports, the curtain falls on the Aichi Nagoya Asian Games 2026 today, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. India finishes fourth in the overall medal standings. We have a report.
4: The closing ceremony of the 20th Asian Games will be held at Paloma Mizuho Stadium in Nagoya, Japan, beginning at 2:30 p.m. IST. It will feature the traditional closing proceedings, including the grand parade of athletes, the lowering of the Asian Games flag, and the formal handover to the next host city, Doha, Qatar, for the 2030 edition. Proudly carrying the Indian tricolor will be India's women's flag bearer and shooting star, Neeru Dhanda. The double gold medalist will lead India's delegation. India finishes fourth in the overall medal standings behind China, Japan and Korea with an impressive 85 medals including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. This is India's second largest medal haul in Asian Games history behind only the record performance at Hangzhou 2023. India's women's hockey team made history by winning gold for the first time since 1982, ending a 44-year wait, while the men's hockey team won back-to-back Asian Games titles for the first time. In archery, India's women's recurve team secured the country's first-ever Asian Games gold in the event, while Kumkum Mohod became the first Indian woman to win individual recurve gold. In golf, Pranavi Urs became India's first women golfer to win an Asian Games gold medal. India's boxing contingent scripted history with 3 gold medals, the nation's first ever triple gold haul in single Asian Games edition. In weightlifting, Mirabai Chanu's silver gave India its first medal in the sport since 1998. India proudly signs off from Aichi Nagoya 2026, etching another glorious chapter into its sporting history. Komati Parikh, Akashwani News, Delhi.
2: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today released two male great Indian bustards into the wild at Sum in the Desert National Park at Jaisalmer in Rajasthan. In a social media post, the Union Minister said that this landmark success has been made possible by the nearly decade-long unwavering dedication of India's scientists, researchers and ground staff. He added the release marks an important transition in India's Great Indian Bustards Conservation Programme. Mr. Yadav also thanked Prime Minister Narendra Modi for his support in enabling the scientific community to work towards the conservation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Journey of Viksit Bharat will be built on strength of India's institutes, MSMEs and startups, says Vice President C.P. Radhakrishnan. In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram Rejinagar Assembly by-elections. PM Setu scheme aiming to transform industrial training institutes completes 1 year. IMD forecasts heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Yemen confirms strikes against Houthi-controlled areas in Sana'a and Sada'a. Houthi claims missile and drone attack targeting Aramco facilities in Riyadh. And Asian Games 2026 to conclude today at Nagoya in Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And with that, we end the midday news.
5: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Mukesh Kumar. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
6: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
5: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत ITI में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी ITI की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 ITI को चुना गया है। इनमें 172 हब ITI और 678 स्पोक ITI शामिल है। योजना के तहत 200 ITI क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 ITI क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
8: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
9: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
8: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पैरो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
5: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
5: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सदा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
3: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अल बहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
5: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
11: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
5: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले दो दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में

समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मुक्ति धन। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री बी एस भटनागर। तो लीजिए सुनिए नाटक मुक्ति धन।

0: रहमान मियां है।
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं, और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी रहमान पकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
1: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है।
1: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
1: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए। अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियाँ थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
1: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
1: फिर इस गाय ही को?
4: बहू
2: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
1: तो फिर करोगे क्या?
3: कुछ तो करना ही होगा।
1: या अल्लाह।

0: तुम गेहूं बेचना ही नहीं चाहते, यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
1: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
2: अरे लाला छोड़ गया को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खटा क्या सोचा, ला
1: रस्सी गौ कुछ ही नहीं देती हो भाई,
2: पैसे दे रहे हैं।
1: अरे ये भी कुछ,
0: अरे मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है, मैं तुम चुप रहो, मेरे भगवान का दे रहा बात ही।
3: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
0: आइए आइए मुख्तार साहब, सलाम
2: सलाम
3: सलाम।
0: हुजूर ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
2: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
3: गाय तो तुम्हारी मोहिनी है।
2: हुजूर ये देखिए,
3: गर्दन
2: भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
3: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
2: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
3: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
2: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
3: दूध देती है?
2: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए, इतनी सीधी हुजूर कि बच्चा भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
3: क्या दाम मांगते हो?
2: 50 रुपए हुजूर।
3: हमें तो 35 का माल जचता है।
2: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
3: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
2: क्या कहे हुजूर, चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता हूँ। चलिए हुजूर।
3: रहमान एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं दी?
2: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
3: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
2: थी सरकार, बड़ी विपत्त में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
3: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
2: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
3: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है।
2: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
3: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
2: हुजूर एक अर्ज और है।
3: क्या?
2: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
3: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिकर मत करो। हाँ
2: जी सरकार।
3: बस यही सामने फाटक वाला दुकान हमारा है।
2: जी सरकार।
3: अरे
2: जी
3: ये कोठरी इस सामने वाली गौ का घर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
2: जी
3: बस यही बांधो खूंटे से, हाँ, और देखो इस खूंटे से बछड़े को।
2: जी बाबा जी। बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
3: ये लो रुपए, गिन लो।
2: जी 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35। ठीक है सरकार, ठीक है। अच्छा अब चलो, सलाम हुजूर।
3: अजी सुनती हो, कहाँ हो?
4: आई। हाँ कहो।
3: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
4: क्या?
3: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
4: सच?
3: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा

ये ना ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं ये

0: जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
1: वो कैसे?
0: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची।
1: ओ।
0: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
1: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
0: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
1: गौ गाय घर में बंधी है ना।
0: आओ
1: चलो
0: चलो दिखाते हैं।
1: चलो
0: अरे आओ,
1: चलो चल कर देखें।
0: बड़ा सजीदा और सुंदर है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: चलो।
2: सलाम हुजूर।
0: सलाम। तुम्ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना?
2: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
0: रहमान है ना तुम्हारा नाम?
2: बजा फरमाया हुजूर।
0: कैसे आना हुआ?
2: हुजूर बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर, पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार। आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
0: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो
2: जी हुजूर,
0: मैं वादे पर रुपए लेता हूं, अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
2: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
0: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
2: सरकार 2 साल की मियाद रख ले हुजूर।
0: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
2: ठीक है सरकार, ठीक है।
0: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा।
2: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
0: दस्तखत कर सकते हो?
2: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
0: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
2: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
0: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 हैं।
2: 180?
0: हाँ 180, कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली की, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
2: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम।
2: छोड़ो मुझे।
3: चल क्या बना आया? अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है? चल
2: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
3: अरे अच्छा अच्छा चल।
4: सरकार रहमान को ले आया हूँ।
2: सलाम हुजूर।
0: क्या सलाम हुजूर, 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो, क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
2: हुजूर
0: लाओ रुपए कहाँ हैं?
2: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
0: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
2: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर तभी से बीमार पड़ी हुई है, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
0: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
2: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हैं।
0: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि
2: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
0: 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
2: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
0: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
2: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
0: सलाम।

0: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
1: सख्त सुस्त नहीं कहा?
0: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
1: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
0: नहीं माँ, बिल्कुल नहीं।
1: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा,
1: बेटा,
2: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
1: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
0: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
1: हाँ, उठो उठो, थोड़ा सोने मेरी
3: सलाम हुजूर।
4: तुम क्या करने आए हो?
3: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
4: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
3: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
4: अरे सुनो
3: जी,
4: जाते कहां हो?
3: सरकार,
4: कैसे आए थे, क्या कुछ काम था?
3: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
4: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो।
3: हुजूर, अम्मा।
4: क्या, तुम्हारी अम्मा?
3: हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है।
4: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
3: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती हुजूर।
4: कहो क्या बात है।
3: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
4: ऐसा क्या करना चाहते हो
3: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
4: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
3: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर, जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
4: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
3: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
4: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
3: सरकार,
4: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
3: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी,
4: यहाँ दस्तखत करो।
3: आपकी बहुत मेहरबानी है।
4: ये लो कलम।
3: बहुत मेहरबानी है रहमान, बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
4: सलाम
3: सलाम।
0: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
2: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
0: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
2: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
3: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
2: सुनो।
3: हाँ बोलो।
2: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
3: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
2: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
3: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
2: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
3: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
2: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
3: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
2: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलिहान में आती
3: और
2: है।
3: खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
2: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
3: नहीं तो
2: फैसला।

0: रहमान ले एक दो दम तू भी लगा ले, लाओ काका लाओ।
1: वाह वाह रहमान, अब के तेरी ऊँख बड़ी घनी उठी है भैया।
0: बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया।
1: ये तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई।
0: तब देख ही लो कैसी जोरदार ऊँख है।
2: ये लो, तुम भी दो चार दम लगा लो भैया।
1: लाओ भैया लाओ।
0: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
1: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा। भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा,
0: पर मंडी में नया गुड़ पहुँचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
1: अरे कम से कम 700-750 तो कहीं नहीं गए।
0: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
0: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी? मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी। चिलन ताजा करने के काम भी आया है। तुम ठीक कहते हो काका।
3: अरे क्या कर रहा है रहमान? आपको
1: मच्छर। अरे अरे, हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम्बक्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी, तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास?
2: अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ने दे।
3: अरे सारे ऊख पर घर में तोड़ने वाले बाहर होगा। आग गरीब को मर रही है। चलो जल्दी करो, देख क्या रहे हो।
1: रहमान भैया सब्र करो, उसकी मर्जी के आगे किसकी चली है?
0: जो होना था सो हो गया। किस बुरी तरह रूप जल रही है।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां ना देने लगे। जा मेरे अल्लाह, कहाँ छुप जाओ, कहाँ छुप जाओ।
1: रुपए लेकर देना नहीं चाहते?
0: नहीं।
1: मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई।

0: उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
1: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना
0: भैया। अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
1: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है कि कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
0: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो सरकार बुला रहे हैं।
1: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
0: अरे चल,
1: मुझे मत
0: गए। अरे चल चल,
1: मैं खुद चल रहा
0: हूँ। चलता है या मैं? चल चल चल चल चल चल
1: यार। हुजूर मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पाँव मत पकड़ो, छोड़ो।
1: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावन बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब ऊख चल गई?
1: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार। गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
1: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा, अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
1: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
1: अरे हुजूर ये कैसे समझ लो, यहाँ न दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
1: सरकार?
3: हाँ रहमान हाँ।
1: नहीं नहीं सरकार नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
1: पर हुजूर मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
1: नहीं हुजूर नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
1: हुजूर
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
1: सरकार
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
1: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
1: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहली मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
1: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर।

मुक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

आकाशवाणी मुंबई केन्द्र की 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड चैनल पर आप सांभळी रह्या छो अपना मनपसंद कार्यक्रम गीत गुर्जरी अपना दोस्त आरजे सचिन वझाणी साथे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भरता भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान तथा उड़ीसा के और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान से पहले सुरक्षा के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गई है। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। यमन की सेना ने दावा किया है कि देश के कुछ अहम मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं सऊदी अरब ने हूतियों के इस दावे को खारिज किया है कि रियाद को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया था। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का आयोजन भी हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एकता का संदेश देना था। एशियाई खेलों 2026 का जापान के आइशी नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजावाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्मी नगमा, फिल्म है जब से तुम्हें देखा है, स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी का।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म दिल का नगमा, स्वर था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का, संगीत था आनंद मिलिंद का। अगला नगमा है फिल्म बात एक रात की से, और स्वर है हेमंत कुमार का।

0: Applications must be submitted through proper channel in two hard copies along with NOC, RPARs, ACR dossiers for the preceding 5 years. Integrity certificate, no penalty certificate, vigilance clearance, educational and experience certificates. The applications should be sent by post to the director and senior professor IIPS, Govindi Station Road, Deonar, Mumbai 40088. The last date for receipt of applications is 5th October 2026. For details, kindly look up the website at www.iipsindia.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलुरु में आवश्यकता है प्रोफेसर के 3 पदों की तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की। इन पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन और आवेदन करने की प्रक्रिया सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है www.isec.ac.in। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के पद के लिए भर्ती की जानी है। कुल 21 रिक्तियां उपलब्ध हैं, लेकिन ये रिक्तियां अभी अस्थाई हैं और बिना किसी सूचना के इनमें वृद्धि या कमी की जा सकती है। रिक्तियों की संख्या में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आपको ITBP की भर्ती वेबसाइट पर मिल जाएगी। पता है recruitment.itbppolice.nic.in। उपभोक्ता मामले विभाग कृषि भवन नई दिल्ली में आवश्यकता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के विशेषज्ञ एवं वृत्तिक Grade 2 के तौर पर इन विषयों में नियुक्ति की। विषय है विधि। पद उपलब्ध हैं 2। इन पदों के अलावा भविष्य में होने वाली किसी भी रिक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों का 4 लोगों का एक पैनल भी तैयार किया जाएगा, जो 6 महीने के लिए मान्य होगा। विस्तृत जानकारी उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है consumeraffairs.nic.in। योजना एवं अनुसंधान विभाग पुदुचेरी में संयुक्त निदेशक के 3 पदों को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने हेतु पात्र एवं योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट pandr.py.gov.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर सुन लीजिए pandr.py.gov.in। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में ये पद उपलब्ध हैं प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी, निदेशक के निजी सचिव तथा कॉरपोरेट आउटरीच ऑफिसर। पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन और अन्य विवरणों के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट rgipt.ac.in। विशेष जानकारी हासिल करने के लिए आप ईमेल पर अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। ईमेल है recruitment_nts@rgipt.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: शर्मा और हमारे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
1: हेलो मुनीश, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दोज ट्यून इनटू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट मुनीश शर्मा। Well, listeners, he is celebrated as one of the greatest artists in history because of his incredible ability to capture human life on canvas. He is still famous today simply because, firstly, he used a technique called chiaroscuro, which means mixing bright light with deep dark shadows. This made his paintings look highly dramatic and three-dimensional. Secondly, unlike many artists of his time who painted people looking perfect and stiff, he painted people with real feelings. You can see sadness, thought, worry or joy in the faces of his subjects. And lastly, his honest self-portraits of himself, where he honestly showed his own aging process, his wrinkles and his life's hardships, creating a unique visual diary of his life. Yes, he's none other than the greatest visual artist in the history of Western art, Rembrandt. And today we observe Rembrandt's death anniversary, and we shall talk about him later in the program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour.
0: जी हाँ, मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और नवाचार के बलबूते पर ही विकसित बनेगा।
1: In West Bengal, campaigning ends today for Nandigram, Rejinagar assembly by elections.
0: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक साल पूरा।
1: आईएमडी फोरकास्ट हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस ऑफ केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड कराईकल टिल टुमारो।
0: यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में आरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का किया है दावा।
1: And Asian Games 2026 concludes in Nagoya and Japan. India secures fourth place in overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Space Week. Well, listeners, look up at the sky, because this week the entire world is celebrating something truly extraordinary, World Space Week 2026.
0: बिल्कुल सही। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक दुनिया भर में लोग अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, और इस साल इसकी थीम खास तौर पर रोमांचक है, जो है रॉकेट रेवोल्यूशन।
1: But what exactly is this rocket revolution? Is it just about bigger and faster rockets?
0: बिल्कुल नहीं, ये कहीं ज्यादा बड़ी चीज के बारे में है, इंसान के अंतरिक्ष तक पहुंचने के तरीके में बदलाव के बारे में।
1: Yes, and today the picture is changing rapidly. Commercial companies, space startups, universities, reusable rockets and new space-faring nations are opening the doors to space for more people than ever before.
0: और इसका मतलब है ज्यादा लॉन्च, ज्यादा सैटेलाइट, ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग और शायद इंसानियत के लिए पृथ्वी से परे खोज करने के और भी कहीं ज्यादा मौके।
1: And there's a fascinating reason why World Space Week begins on October 4th. On October 4th, 1957, the Soviet Union launched Sputnik 1, the first human-made satellite to orbit the Earth.
0: और उसी छोटे से सैटेलाइट ने इतिहास को बदल कर रख दिया। उसके लॉन्च के साथ ही अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई, और दशकों तक चलने वाली खोज, वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी इनोवेशन का रास्ता खुल गया।
1: And there's another important date, October 10th, 1967. On that date, the Outer Space Treaty entered into force. It established fundamental principles for the exploration and peaceful use of outer space.
0: तो वर्ल्ड स्पेस वीक दो अहम पड़ावों को जोड़ता है, अंतरिक्ष में इंसानों के पहले कदम और ये पक्का करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश कि अंतरिक्ष की खोज का फायदा पूरी इंसानियत को मिले।
1: Space technology today isn't just about astronauts and rockets. Satellite technology helps with weather forecasting, disaster management, agriculture, communications, navigation, environmental monitoring and sustainable development.
0: दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष भले ही हमसे सैकड़ों या हजारों किलोमीटर ऊपर हो, लेकिन इसके फायदे यहीं धरती पर मिलते हैं। और जब हम रॉकेट क्रांति की बात करते हैं, तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

0: Absolutely, Munish. And India has transformed itself from a country that once had to rely heavily on foreign launch capabilities into one of the world's important space powers.
1: गौरतलब है अभिषेक कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संधान संगठन के माध्यम से भारत ने PSLV, GSLV और LVM3 सहित लॉन्च वाहन विकसित किए हैं और साथ ही उपग्रह प्रौद्योगिकी, ग्रह अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष उड़ान में क्षमताओं का निर्माण भी किया है.
0: एंड इंडियास रीसेंट मिशंस शो जस्ट हाउ रैपिडली द कंट्री स्पेस प्रोग्राम इज इवॉल्विंग. लेट्स स्टार्ट विद स्पेस डेक्स. The space docking experiment demonstrated autonomous docking and undocking between two satellites along with power transfer. That achievement placed India among the select nations capable of demonstrating space docking technology. So why is docking so important?
1: क्योंकि भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन, चालक दल के मिशन, उपग्रह सर्विसिंग और अन्य जटिल अंतरिक्ष संचालन काफी हद तक अंतरिक्ष यान की कक्षा में मिलने और जुड़ने की क्षमता पर निर्भर होंगे. इसके बाद निसार आता है जो नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है. निसार को भारत के GSLV F-16 का उपयोग करके 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया. मिशन पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए नासा और इसरो रडार प्रौद्योगिकियों को आपस में जोड़ता है.
0: And India's human space flight ambitions also took a major step forward. In 2025, Indian astronaut group captain Shubhanshu Shukla traveled to the International Space Station as part of the XM-4 mission. And during his stay, he conducted 7 microgravity experiments.
1: और ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारत अपने स्वयं के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की तैयारी कर रहा है. लेकिन शायद इस साल की रॉकेट क्रांति थीम का सबसे अच्छा उदाहरण यही भारत में हो रहा है और हम निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं.
0: On July 18, 2026, Skyroot Aerospace's Vikram 1 became the first privately developed Indian rocket to undertake an orbital launch from Indian soil. And it launched from none other than Satish Dhawan Space Center at Sriharikota.
1: बिल्कुल, मिशन ने सरकारी एजेंसियों, स्टार्टअप और निजी उद्योग को शामिल करते हुए अधिक विविध अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की ओर भारत के संक्रमण में एक प्रमुख मील का पत्थर चिन्हित कर दिया है.
0: And that is the rocket revolution in action. Space is no longer only about government rockets. It is increasingly about partnerships between governments, scientists, universities and private companies.
1: और एक और महत्वपूर्ण विकास है. भारत के प्रयास सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के बारे में नहीं है, वे अंतरिक्ष गतिविधियों को और अधिक टिकाऊ बनाने के बारे में भी हैं.
0: So World Space Week is not simply a celebration for astronauts or scientists. It is a celebration for all of us and especially for young people who may become the scientists, engineers, entrepreneurs and astronauts of tomorrow.
1: पहला अंतरिक्ष युग स्पुतनिक नाम के एक छोटे से सैटेलाइट के साथ शुरू हुआ और आज हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट, प्राइवेट लॉन्च कंपनियां, सैटेलाइट के समूह, चंद्रमा की खोज, इंसानों का अंतरिक्ष में जाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े लक्ष्य वाली साझेदारियां शामिल हैं.
0: एंड इंडिया इज डिटरमिंड टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट फ्यूचर. फ्रॉम चंद्रयान एंड आदित्य L1 टू निसार, स्पेस डेक्स, गगनयान प्रेपरेशंस एंड इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट लॉन्च कंपनीज, इंडिया स्पेस स्टोरी इज मूविंग फ्रॉम एक्सप्लोरेशन टू अ मच ब्रॉडर स्पेस इकोसिस्टम.
1: तो दोस्तों, इस वर्ल्ड स्पेस वीक में आइए हम ये याद रखें कि रॉकेट क्रांति का मकसद सिर्फ अंतरिक्ष में और दूर तक पहुंचना नहीं है. इसका मकसद अंतरिक्ष के फायदों को इंसानियत के और करीब लाना है. ये इनोवेशन के बारे में है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में है.
0: एंड इट्स अबाउट इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज अबाउट आस्किंग वन इनॉर्मस क्वेश्चन, वेयर डू वी गो नेक्स्ट. द आंसर मे बी रिटन इन द स्टार्स.
1: लेकिन सफर यहीं से शुरू होता है, धरती से. और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ है आज उनके पास खास.
0: प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on this day last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. We have more from a correspondent.
2: PM Setu aims to enhance the overall quality and relevance of vocational training by transforming Government India's Industrial Training Institutes, ITIs, into modern industry-aligned training institutions. The scheme has a total outlay of over 60,000 crore rupees, comprising 30,000 crore rupees from the centre, 20,000 crore rupees from states and 10,000 crore rupees from industry. ITIs provide vocational training to equip youth with practical skills for employment and industry. Under the Craftsman Training Scheme, CTS, training is offered through government and private industrial training institutes in engineering and non-engineering trades. Its course duration varies from 6 months to 2 years, depending on the trade. The Directorate General of Training is the apex organization responsible for the development and coordination of vocational training at the national level. The total number of ITIs, including government and private, in the country has increased to over 13,000 in 2026 from over 9,000 in 2014, indicating an increase of 42%. Further, enrollment in ITIs across the country has also increased to 14.70 lakh in academic session 2025-26 from 9.51 lakh in academic session 2014-15, indicating an increase of 54%. At the national level, the ministry has constituted a national steering committee to provide overall direction for the scheme. With Anand and Rishu, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी काशी भारतीय वायुसेना के शौर्य साहस और सामर्थ्य की साक्षी बनने जा रही है दोस्तों वाराणसी के नमो घाट पर आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक एक भव्य एयर शो आयोजित होने जा रहा है और पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में होने जा रहा है और इसकी ये पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री खुद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहें।
3: गंगा की अविरल धारा के किनारे बसी काशी में जब आसमान भारतीय वायुसेना के विमानों की गर्जना से गूंजेगा तो ये दृश्य देश के सामरिक सामर्थ्य और काशी की सनातन सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर आगामी 24 से 26 अक्टूबर तक भव्य एयर शो की तैयारियां जोरों पर है। 25 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति भी संभावित है। पिछले दिनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आयोजन स्थल पर दर्शक दीर्घाओं ग्रैंड स्टैंड विशिष्ट एवं अति विशिष्ट अतिथियों के लिए निर्धारित क्षेत्र मीडिया एरिना प्रवेश एवं निकास मार्ग सुरक्षा जांच केंद्र और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। नमो घाट के साथ ही गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों को जोन और सेक्टर में विभाजित कर व्यवस्थित प्रबंधन की कार्य योजना बनाई गई है। इस एयर शो को लेकर आम नागरिकों में भी बेहद उत्सुकता है। बड़ी संख्या में लोग भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्साहित हैं। इसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट सुगम यातायात पार्किंग और जोनवार स्थल चिन्हांकन की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आयोजन के दौरान नमो घाट के साथ ही काशी के प्रमुख घाटों और आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा रहने और पहुंचने की है। ऐसे में घाटों पर भीड़ प्रबंधन यातायात संचालन पार्किंग तथा जल और थल मार्ग से आवागमन की व्यवस्थाओं को एकीकृत कार्य योजना के साथ संचालित किया जाए। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: In a major boost to agricultural diversification and local livelihoods, the Union Territory of Ladakh has embarked on a pioneering experiment to cultivate saffron, expanding its success in high altitude farming. We have a report.
4: Building on the recent success of establishing the world's highest flower garden with high-altitude lilium flowers, the administration of UT Ladakh, under the guidance of the Honorable Lieutenant Governor, has launched a large-scale saffron cultivation project aimed at transforming the region's agricultural landscape. Under the ambitious project Him Sarovar, the administration has sown 800 kilograms comprising 90,000 premium high-quality Iranian saffron combs specially suited to Ladakh's high-altitude agroclimatic conditions. The cultivation covers 4,000 square meters of previously barren land at Spiti Farka in Leh, which has been successfully rejuvenated into fertile cultivable land. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's visions for agricultural diversification, the initiative aims to build economic self-reliance for local communities. The Associate Professor of National Institute of Sowarikpa, Dr. Tashi Stopge, stated, "The saffron has very high medicinal and spiritual values, and this pioneering project holds immense potential to boost the local economy and will create lucrative and sustainable new livelihood opportunities for the farmers, youth and self-help groups of Ladakh."
5: यूटीब गवर्नमेंट ने एक कमल का काम किया है। कश्मीर में पाया जाता है एक जड़ी बूटी जो सेफ्रॉन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं खाची कुरकुम। ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो लद्दाख में जो अमची के नाम से जाना जाता है और सोवारिकपा जो एक चिकित्सा है उसमें सदियों से दवाई बनते आ रहा है और ये बहुत महंगा भी है और मिलने में भी मुश्किल है। आज ये लद्दाख में जो यूटीब गवर्नमेंट ने यहाँ पर बड़ा स्केल में एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट में ये कल्टिवेट कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा। इसका जो सोवारिकपा के सिस्टम में ज्यादातर जो हमारे बॉडी में जो ब्लड का प्रॉब्लम होगा या लीवर का प्रॉब्लम होगा या ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ब्लड रिफ्यूजन करना होगा, ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
4: विद दिस प्रोजेक्ट लद्दाख इज नॉट जस्ट एडिंग कलर्स टू इट्स लैंडस्केप बट ऑल्सो एडिंग वैल्यूज टू इट्स इकोनॉमी फ्रॉम फ्लावर्स टू द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। फॉर परिक्रमा दिस इज सेतन टशी फ्रॉम ले लद्दाख।
1: पश्चिम बंगाल में पर्यटन और पूर्वाधार विकास को एक नई गति प्रदान करने का काम राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कर रहे हैं और इसी कड़ी में सप्ताह उत्तर बंगाल के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मूर्त रूप दे दिया गया है जिससे राज्य के पर्यटन और उद्योग को वहां एक नया बंगाल ट्री टूरिज्म ब्रांड प्रदान किया जाएगा।
6: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पर्यटन उद्योग तथा पूर्वाधार को नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में इस सप्ताह केंद्र व राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल के तीव्र विकास हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया है। इनमें तिस्ता नदी पर 1947 में बने ऐतिहासिक कोरोनेशन पुल को 6 लेन का एक वैकल्पिक पुल प्राप्त होगा। इसके लिए 2 दिन पहले ही केंद्रीय परिवहन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनके मंत्रालय द्वारा 1,175.59 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान करने की घोषणा की है। इस पुल के निर्माण से सिक्किम तथा असम के बीच संपर्क और मजबूत होगा। इसी सप्ताह श्री गडकरी ने एक और महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा की जिसमें सिलीगुड़ी गुवाहाटी शिलोंग व सिलचर को जोड़ने के लिए एक 630 किलोमीटर लंबे राजमार्ग कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा करते हुए श्री गडकरी ने कहा,
7: मैं एक ही रोड बना रहा हूँ, सिलीगुड़ी गुवाहाटी, गुवाहाटी शिलोंग और शिलोंग टू सिलचर लाइफ लाइन। टोटल लेंथ 630 किलोमीटर एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 61,500 करोड़। एक ही प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी से गुवाहाटी हाई स्पीड कॉरिडोर है 400 किलोमीटर, 30,000 करोड़। ये अलाइनमेंट अप्रूवल स्टेज पर है, अभी हो जाएगी।
6: इसी हफ्ते पर्यटन के विकास हेतु केंद्रीय पर्यावरण तथा वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अलीपुर द्वार के बक्सा अभयारण्य में एक 3 वर्षीय बाघिन को छोड़ा। इसी शनिवार को राज्य के पर्यटन मंत्री डॉक्टर शंकर घोष ने भूटान सीमा के निकट कालिम्पोंग जिले के चालसा में पर्यटन उद्योग से जुड़े कुछ उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें उत्तर बंगाल के पर्यटन विकास के लिए 4,976 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया गया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
1: तो अभिषेक, आइए अब चलते हैं लेकर अपने श्रोताओं को खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। एशियन गेम्स 2026 ऑफिशियली नागोया के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में संपन्न हो गए हैं, जिससे 43 डिसिप्लिन में दो हफ्ते से ज्यादा समय तक चले एक्शन से भरपूर कंपटीशन अब खत्म हो चुके हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली गेम्स के खत्म होने का ऐलान किया, जिससे कॉन्टिनेंटल स्पोर्टिंग इवेंट का एक यादगार एडिशन भी खत्म हो गया। पहले एशियन गेम्स की सेरेमोनियल टॉर्च और झंडा कतर के रिप्रेजेंटेटिव को सौंप दिए गए, जो 2030 में दोहा में अगला एडिशन होस्ट करेगा। और हमारे पास इस बारे में एक रिपोर्ट।
8: India finishes fourth in the overall medal standings behind China, Japan and Korea with an impressive 85 medals including 21 gold, 27 silver and 37 bronze.

और दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की अभिनेत्री और नृत्यांगना संध्या शांताराम के बारे में। संध्या शांताराम, जिनका असल नाम था दरअसल विजया देशमुख, और वो प्रसिद्ध फिल्मकार वी शांताराम की पत्नी थी। उनकी आज पुण्यतिथि है और उनके निर्देशन में बनी कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय और नृत्य से अपनी एक अलग पहचान बनाई। संध्या को खास तौर पर झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, जन्र बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और मराठी फिल्म पिंजरा के लिए याद किया जाता है। फिल्म पिंजरा में उनके अभिनय और नृत्य को बहुत सराहा गया और वहीं नवरंग का जो संगीत था वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ। संध्या शांताराम की सबसे खास चर्चित फिल्मों में झनक झनक पायल बाजे को एक खास जगह मिली है और इस फिल्म में उन्होंने शास्त्रीय नृत्य पर आधारित भूमिका निभाई थी और फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी मिली थी। और इसके अलावा उन्हें कई मराठी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर

पुरस्कार भी मिला था। तो आइए सुनते हैं झनक झनक पायल बाजे और नवरंग से उनके ये ऐसे दो यादगार गीत जिन्हें उनके चाहने वाले आज भी याद करते हैं।

0: Yes, and like we are mentioning the beginning of our program, Rembrandt passed on this day in 1669. He was a Dutch Golden Age painter, printmaker and draftsman. He is generally considered one of the greatest visual artists in the history of Western art. It is estimated that Rembrandt's surviving works amount to about 300 paintings, 300 etchings and several hundred drawings. And unlike most Dutch painters of the 17th century, Rembrandt's works depict a wide range of styles and subject matter, from portraits and self-portraits to landscapes, genre scenes, allegorical and historical scenes, biblical and mythological subjects, and animal studies. And his contributions to art came in a period that historians call the Dutch Golden Age.
1: तो दोस्तों हमने जिक्र किया था अभी संध्या शांताराम का, जिनकी आज पुण्यतिथि थी, और बंगाली संगीत की दुनिया में अपनी सुरीली और भावपूर्ण आवाज से अपनी पहचान बनाने वाली संध्या मुखर्जी, उनका आज उनकी जयंती है, जिन्हें प्यार से गीताश्री भी कहा जाता था, और उनका जन्म आज ही के दिन 1931 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बांग्ला के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया और अपने लंबे करियर में उन्होंने 10,000 से ज्यादा गीत गाए। उन्होंने एसडी बर्मन, मदन मोहन, नौशाद, अनिल विश्वास और सलील चौधरी जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उनका पहला हिंदी फिल्मी गीत 1950 में आई फिल्म तराना के लिए था। बांग्ला संगीत में संध्या मुखर्जी की पहचान इतनी बड़ी थी कि उनकी आवाज कई दशकों तक श्रोताओं की पसंद बनी रही। और श्रोताओं, आज ही जयंती है हिंदी साहित्य को समझने के लिए जिन नामों का हम उल्लेख सबसे पहले करते हैं, उनमें प्रमुख हस्ती आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आज ही के दिन 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आलोचक और निबंधकार थे।
0: सो विद दैट इज टाइम टू वाइंड अप दिस एडिशन ऑफ परिक्रमा। So thank you so much for being with us. So from Munish Sharma and me, Abhishek Mukhopadhyay, till the next time, bye and
1: Namaskar. Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as

0: One of the fastest growing economies of the world, while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान तथा ओडिशा और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। सरकार की इस पहल से भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पीएम सेतु योजना का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। इन 6 सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा, जबकि मतगणना शुक्रवार को की जाएगी। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थत्तन चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। विधानसभा सीटें मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं, जबकि कांग्रेस नेता प्रद्युत बरदोलोई के इस्तीफे के बाद नौगांव लोकसभा सीट रिक्त हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सिटीजन पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ टकराव का कोई सैन्य या प्रतिबंधों पर आधारित समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि तनाव खत्म करने का एकमात्र तरीका कूटनीति है। आज तेहरान में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूतों और प्रतिनिधियों से बातचीत में श्री अराक्ची ने उम्मीद प्रकट की है कि अमरीका समझदारी और तर्कसंगत ढंग से काम लेगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आशा प्रकट की है कि टकराव खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। यमन की सेना ने दावा किया है कि देश के कुछ अहम मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सऊदी अरब ने हूतियों के इस दावे को खारिज किया है कि रियाद को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया था। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमलों की पुष्टि की है। एशियाई खेल 2026 का जापान के नगोया में आधिकारिक समापन हो गया। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज वर्ष 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू डांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are important agendas for emerging and middle powers, EMPs. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today, the External Affairs Minister said emerging and middle powers are from Global South and Global North who are united in their goal of being more relevant. He pointed out that the world is changing, its agenda and landscape is changing, and there is a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. Dr. Jaishankar drove home the point that the changing landscape which drives the emerging and middle powers debate is of a repositioning US, rise of China and greater independence. Later, in conversation with President of Munich Security Conference Wolfgang Ischinger and State Secretary Germany Federal Foreign Office Bernard Kosch, Dr. Jaishankar said India has decades of high growth ahead and a demography which will sustain that level of growth. Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that corporate governance is the invisible infrastructure of a modern economy. Addressing the 58th Foundation Day of the Institute of Company Secretaries of India in New Delhi today, the Vice President said that strong institutions and sound governance will be as important as physical and digital infrastructure in building a Viksit Bharat. Mr. Radhakrishnan also said that investor confidence is essential for sustained economic progress. The Vice President noted that India is one of the fastest growing economies in the world while simultaneously entering into an era of rapid technological advancements.
0: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
2: Campaigning for by-elections to five assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and one Lok Sabha constituency in Assam ends today. Polling for the six seats will be on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, polling will be held for Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Bordoloi. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITI Scheme completed 1 year today. The scheme of the Ministry of Skill and Development and Entrepreneurship was launched on this day last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh will chair the 17th Pension Adalat in New Delhi tomorrow. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions informed that 897 long pending grievances of super senior pensioners and family pensioners to be taken up for redressal. The ministry said Dr. Singh will release flyers highlighting the success stories of the 16th Pension Adalat, which was held on 13th May of this year. The Asian Games 2026 have officially concluded at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Nagoya, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. The president of the Olympic Council of Asia officially declared the games closed, marking the conclusion of a memorable edition of the continental sporting event. The ceremonial torch and flag from inaugural Asian Games were handed over to representatives of Qatar, which will host the next edition in Doha in 2030. Indian shooter Neeru Dhanda, who won two gold medals and a silver during the games, carried the Indian flag as the country's flag bearer at the closing ceremony. India finished fourth in the overall medal standings with an impressive 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. And that is the end of this news bulletin.

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते सफर चलता रहे और हम आपसे फिर से मुखातिब हो गए हैं। इस सफर में आपसे बात करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए वो नगमे जो आपको पसंद हैं। आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और आज के इस सफर में आपके साथ मैं हूं शिव प्रकाश। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मौसम बदल रहा है, मौसम में न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडक है, बड़ा ही अच्छा मौसम है। और इस मौसम में एफएम गोल्ड के साथ, इन प्यारे प्यारे नगमों के साथ शाम का वक्त हो रहा है, चाय की चुस्की भी हो और कहने ही क्या है। एक बहुत ही प्यारा सा नगमा हमने लिया है, फिल्म है अर्पण। और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं निभाई थी वो जितेंद्र ने निभाई थी और इनके साथ रीना रॉय, परवीन बाबी और राज बब्बर भी दिखाई दे रहे हैं। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और जे ओम प्रकाश इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे। बॉक्स ऑफिस पर एक सफल फिल्म थी। इसी फिल्म का ये नगमा सुरेश वाडकर और लता जी की आवाज में आप सबके लिए।

जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते एक बार फिर से हम मुखातिब हैं और अगला जो नगमा हमारे साथ है वो फिल्म है जख्म। ये जो फिल्म है बहुत ही शानदार फिल्म थी और ये फिल्म आई थी 25 दिसंबर 1998 को। फिल्म के निर्माता और निर्देशक, निर्माता थे मुकेश भट्ट और पूजा भट्ट और निर्देशक थे महेश भट्ट। एक अच्छी फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी और फिल्म को काफी पसंद भी किया गया। फिल्म में कलाकार थे अजय देवगन, नागार्जुन, पूजा भट्ट, सोनाली बेंद्रे, कुणाल खेमू, आशुतोष राणा और अक्षय आनंद। फिल्म का जो संगीत था वो तैयार किया था एमएम करीम ने। आमतौर पे ये दक्षिण भारत की फिल्मों में इनका संगीत आपको सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ इस फिल्म में बहुत ही प्यारा संगीत इन्होंने दिया। और इसी फिल्म का जो नगमा हम आप तक पहुंचाएंगे अलका जी की आवाज में, अलका याग्निक की आवाज में। और इस फिल्म के लिए अजय देवगन को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए इसी फिल्म का एक प्यारा सा नगमा सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे चलने का वक्त हो गया और चलते चलते एक और नगमा फिल्म ताल से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में आप सबके लिए। और आप अपना खूब ख्याल रखें, बने रहें FM गोल्ड के साथ।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर डायरी का नया संस्करण। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी विकास की नई पहल, बदलती तस्वीर, संस्कृति, परंपरा और उन लोगों की कहानियाँ जो अपने काम और जज्बे से समाज में बदलाव ला रहे हैं, इन्हीं पहलुओं को सामने लाता है हमारा आज का कार्यक्रम
0: पूर्वोत्तर डायरी।
1: आज की यात्रा में सबसे पहले चलेंगे पूर्वोत्तर के

खान पान और संस्कृति की एक विशेष यात्रा पर। इसके बाद जानेंगे रेशम उत्पादन के क्षेत्र में हुई नई पहल, नागालैंड में हिंदी व स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के प्रयास और सिक्किम के नाद बैंड की संगीतमय उपलब्धि और असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की स्वर्णिम सफलता की प्रेरणादायी कहानी भी आपके सामने होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत की पहचान यहाँ की विविध संस्कृतियों, परंपराओं और

0: लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 29 सितंबर को नई दिल्ली में इस प्रेरणादायक सीरीज के ट्रेलर का अनावरण किया। आठों पूर्वोत्तर राज्यों के इस अनूठे सफर में केवल स्थानीय स्वादों और व्यंजनों को ही नहीं समेटा गया है, बल्कि इसके माध्यम से क्षेत्र के मेहनती किसानों, खाद्य उत्पादकों, विभिन्न समुदायों और उनसे जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं की कहानियों को भी प्रमुखता से सामने लाया गया है। आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर के स्वाद और समृद्ध संस्कृति को बेहद करीब से दर्शाती इस खास डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर निशा साहू की ये रिपोर्ट।
1: पूर्वोत्तर भारत की पहचान उसकी विविध संस्कृतियों, अलग अलग समुदायों और समृद्ध परंपराओं से जुड़ी है। यहाँ का खान पान भी इसी विविधता को अपने साथ समेटे हुए है। अब पूर्वोत्तर के इन खास स्वादों, परंपराओं और लोगों की कहानियों को देश के बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू की गई है। 29 सितंबर को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने द एंचेंटिंग एट, एक क्यूलिनरी जर्नी थ्रू द नॉर्थ ईस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज का ट्रेलर लॉन्च किया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, वरिष्ठ अधिकारी और सीरीज निर्माण टीम के सदस्य भी मौजूद थे। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की खाद्य परंपराओं को सामने लाती है। इसमें अलग अलग राज्यों के व्यंजनों के साथ उन लोगों और समुदायों की कहानियां भी दिखाई जाएंगी जिनसे ये परंपराएं जुड़ी हैं। इसमें पूर्वोत्तर की कहानी बाहर से देखने के बजाय वहां के लोगों, किसानों, उत्पादकों और स्थानीय समुदायों की आवाज के जरिए सामने लाई गई है। सीरीज के लिए टीम ने स्थानीय समुदायों और भोजन से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की। स्थानीय सामग्री कहाँ पैदा होती है, रसोई तक कैसे पहुँचती है और फिर खाने की मेज पर उसका सफर कैसे पूरा होता है, इन सभी पहलुओं को डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया है। इस दौरान सिर्फ खाने को कैमरे में कैद नहीं किया गया, बल्कि उससे जुड़ी परंपराओं, स्थानीय ज्ञान और लोगों के अनुभवों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। पूर्वोत्तर के खानपान की खासियत यह है कि यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और उपलब्ध सामग्री से गहराई से जुड़ा हुआ है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों और समुदायों के कारण प्रत्येक राज्य की अपनी अलग खाद्य परंपरा विकसित हुई है। डॉक्यूमेंट्री पूर्वोत्तर को किसी एक तरह के खानपान या एक ही पहचान तक सीमित नहीं करती। इसके बजाय 8 राज्यों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों, समुदायों और स्थानीय सामग्रियों से विकसित हुई खाद्य परंपराओं को सामने लाया गया है। इन परंपराओं के पीछे मौजूद पारंपरिक ज्ञान और रोजमर्रा के तौर तरीकों को भी इस सीरीज में जगह दी गई है। स्थानीय आवाजें इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भोजन इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का केंद्र है, लेकिन कहानी केवल रसोई तक सीमित नहीं है। इसके जरिए पूर्वोत्तर की कला, संस्कृति और प्राकृतिक दृश्यों को भी दर्शकों के सामने लाया जाता है। इस तरह भोजन को उस व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल से जोड़कर दिखाया गया है जिसमें ये परंपराएं पीढ़ियों से विकसित होती रही हैं। इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू पूर्वोत्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था और समुदायों की क्षमता को सामने लाना भी है। किसानों, खाद्य उत्पादकों और स्थानीय समुदायों की भूमिका को कहानी के केंद्र में रखकर ये सीरीज उनके अनुभव और पारंपरिक ज्ञान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सहयोग से तैयार की गई है। इसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी के माध्यम से लागू किया गया है और अर्बन मीडिया प्रोडक्शंस ने फ्लेंडरिंग फोरकर मीडिया के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। सीरीज के जरिए पूर्वोत्तर के स्थानीय स्वादों के साथ वहाँ की लोगों की जिंदगी, उनकी परंपराओं और उनके ज्ञान को भी देश के सामने लाने की कोशिश की गई है। ट्रेलर लॉन्च के साथ अब इस डॉक्यूमेंट्री यात्रा की शुरुआत हो गई है। द एंचेंटिंग एट भोजन के जरिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जानने का एक अलग नजरिया सामने रखती है, जहां हर स्वाद के पीछे एक समुदाय, हर सामग्री के पीछे एक परंपरा और हर व्यंजन के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार।

श्रोताओं, अब बात करते हैं पूर्वोत्तर में रेशम उत्पादन और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण तथा सुदृढ़ बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड ने क्षेत्र में रेशम उद्योग के समग्र विकास और आपसी सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऐतिहासिक समझौता 20 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस समारोह के गरिमामय अवसर पर सम्पन्न हुआ। इस साझेदारी के अंतर्गत शोध और अनुसंधान, नई तकनीकों के हस्तांतरण, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उत्पाद विकास, आधुनिक डिजाइनिंग, बाजार के साथ जुड़ाव और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोनों प्रमुख संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर के पारंपरिक रेशम क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करने वाली इस विशेष पहल पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट।

0: पूर्वोत्तर भारत में रेशम उत्पादन की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ रेशम केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति, ग्रामीण आजीविका और पारंपरिक हुनर से भी जुड़ा हुआ है। इसी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम यानी NEHHDC और केंद्रीय रेशम बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। 20 सितंबर को बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान दोनों संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में रेशम और रेशम उत्पादन के क्षेत्र में मिलकर काम करना है। इस सहयोग के तहत रेशम उत्पादन से जुड़ी तकनीक, शोध, प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोनों संस्थान रेशम के क्षेत्र में हुए शोध और उससे जुड़े परिणामों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। समझौते में रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसमें रेशम तैयार होने से पहले की गतिविधियों से लेकर तैयार रेशम और उससे बनने वाले उत्पादों तक अलग अलग स्तरों पर सहयोग शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त और कम लागत वाली रेशम उत्पादन तकनीक विकसित करने और उन्हें अपनाने की संभावनाएं भी तलाश की जाएंगी। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीक को बढ़ावा देना है जिसका इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर रेशम उत्पादन से जुड़े किसान और दूसरे लोग आसानी से कर सके। इसके साथ ही प्रशिक्षण और कौशल विकास को भी इस साझेदारी में महत्वपूर्ण जगह दी गई है। तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से रेशम क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई तकनीकों और बेहतर तरीकों की जानकारी मिल सकेगी। समझौते का एक अहम हिस्सा उत्पाद विकास और डिजाइन में नए प्रयोग करना भी है। दोनों संस्थान ऐसे रेशम उत्पाद विकसित करने पर सहयोग करेंगे जिनकी बाजार में ज्यादा मांग और बेहतर मूल्य हो। इससे पारंपरिक रेशम उत्पादों को नए डिजाइन और तकनीक के साथ बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में मदद मिल सकती है। बाजार से जोड़ना और निर्यात को बढ़ावा देना भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों संस्थान रेशम उत्पादों के लिए बाजार संपर्क मजबूत करने और उन्हें बड़े बाजारों तक पहुँचाने की संभावनाओं पर मिलकर काम करेंगे। पूर्वोत्तर के रेशम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहले भी कई पहल की गई हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चे रेशम का उत्पादन 2013-14 के करीब 4,600 टन से बढ़कर 2024-25 में 8,300 टन से अधिक हो गया है। इसी अवधि में देश के कुल कच्चे रेशम उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। असम का मूगा रेशम इस क्षेत्र की खास पहचान है। जून 2026 में आकाशवाणी ने भी असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेह जोरी की शुरुआत की जानकारी दी थी। इस पहल में मूगा रेशम की पूरी वैल्यू चेन, रेशम कीट पालन से लेकर बुनाई, ब्रांडिंग, निर्यात और पर्यटन तक को मजबूत करने पर जोर दिया गया। नए MOU के तहत जरूरत के अनुसार संयुक्त परियोजनाएं भी शुरू की जा सकेंगी। किसी खास परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अलग समझौते तैयार किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दूसरे सरकारी या निजी संस्थानों को भी इन पहलों से जोड़ा जा सकेगा। समझौते में तकनीकी जानकारी साझा करने, बौद्धिक संपदा और गोपनीयता से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। ये MOU 5 साल तक लागू रहेगा और दोनों संस्थानों की आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर इस साझेदारी का उद्देश्य पूर्वोत्तर के रेशम क्षेत्र में शोध, तकनीक, कौशल, उत्पाद विकास और बाजार को एक साथ जोड़ना है। इससे पारंपरिक रेशम उत्पादन को आधुनिक तकनीक और नए बाजारों से जोड़ने की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है और ग्रामीण स्तर पर इससे जुड़े लोगों के लिए नए अवसरों की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशाल शर्मा।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को भी पूरी सजगता के साथ संरक्षित किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण संदेश नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने आकाशवाणी कोहिमा द्वारा आयोजित हिंदी फिल्म गीत प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिया। ये गरिमामय कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत 24 सितंबर को कोहिमा में आयोजित किया गया था। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भारत की बहुभाषी भाषी विविधता को देश की वास्तविक सांस्कृतिक ताकत बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि हिंदी जहां देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ने वाले एक सशक्त संवाद माध्यम के रूप में कार्य करती है, वहीं स्थानीय भाषाएं विभिन्न समुदायों की मौलिक पहचान, लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी कोहिमा के इस विशेष आयोजन पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट।
2: भाषा, संगीत और सांस्कृतिक विविधता का संगम आकाशवाणी कोहिमा में देखने को मिला, जहां विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी फिल्म गीत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने भारत की भाषाई विविधता को देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ताकतों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी अलग अलग भाषाई क्षेत्रों के लोगों के बीच संवाद का माध्यम बन सकती है, वहीं स्थानीय भाषाएं समुदायों के इतिहास, पारंपरिक ज्ञान और पहचान को सुरक्षित रखती हैं।
3: हिंदी को बढ़ावा देना, हमारे स्थानीय भाषाओं का संरक्षण एक साथ हो सकता है और होना भी चाहिए। वास्तव में यह भारत की अनूठी शक्तियों में से एक, हमें भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता में किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है। हमारी विविधता स्वयं बेहतर समझ और एकता के लिए एक सेतु बन सकती है। नागालैंड में हम इसे विशेष रूप से अच्छी तरह समझते हैं। हमारा राज्य विभिन्न जनजातियों, भाषाओं, बोलियों, परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का घर है, जहां भाषा किसी समुदाय की स्मृतियां, उसके इतिहास, पारंपरिक ज्ञान, मूल्यों, गीतों और लोक कथाओं को अपने भीतर संजोए रखती है। इसलिए
4: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: और दोस्ती जैसी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है।
3: संगीत में भाषाई सीमाओं से परे जाने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। हम भले ही किसी गीत का हर शब्द न समझें, लेकिन हम उसकी भावना को समझ सकते हैं। बोल समझने से पहले हम संगीत के माध्यम से खुशी, प्यार, पुरानी यादें, आशा, देशभक्ति और दोस्ती महसूस कर सकते हैं। यह संगीत की सुंदरता है।
2: उन्होंने आकाशवाणी कोहिमा की भी सराहना की और कहा कि आकाशवाणी लंबे समय से समाचार, सूचना, शिक्षा, संगीत और संस्कृति के साथ स्थानीय आवाजों, भाषाओं और परंपराओं को मंच देने का काम कर रही है।
3: आकाशवाणी कोहिमा ने स्थानीय आवाजों, भाषाओं, संगीत, परंपराओं और जनहित के मुद्दों को एक मंच प्रदान किया। इसने राज्य के भीतर समुदाय को जोड़ने में मदद की है और नागालैंड को बाकी भारत से भी जोड़ा है। मेरा मानना है कि वर्तमान युग में यह भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हम तेज तकनीकी बदलाव के युग में जी रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने लोगों के संवाद करने और सूचना प्राप्त करने के तरीकों को बदल दिया है। फिर भी सार्वजनिक प्रसारण का मूल उद्देश्य आज लोगों को सूचित करना, शिक्षित करना और आपस में जोड़ना। माइक्रोफोन समुदायों के बीच एक सेतु बन सकता है और वह सेतु तब और मजबूत होता है जब उसमें कई तरह की आवाजें शामिल होती हैं। इसलिए मैं आकाशवाणी कोहिमा को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि वह नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को उचित स्थान देना जारी रखें और साथ ही उन कार्यक्रमों को भी मजबूत करें जो हमारे लोगों को व्यापक रूप में राष्ट्र से जोड़ते हैं।
2: आकाशवाणी कोहिमा की हेड ऑफ प्रोग्राम्स एला काइना ने कहा कि हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रसारण के माध्यम से

0: विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को एक साथ लाने में आकाशवाणी की भूमिका पर भी बल दिया।
1: आकाशवाणी केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने वाला एक शब्द सेतु भी है। भारत की विशेषता ही इसकी उन अनेक भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों में निहित है। इसी विविधता के बीच हिंदी ने देश के विभिन्न भागों के लोगों को आपस में संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: हिंदी पखवाड़े का संदेश केवल दो सप्ताह तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ अंग्रेजी और देश की अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करना तथा नागालैंड की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना भी है। असूनियों की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रशांत कुमार।
2: श्रोताओं, सिक्किम की समृद्ध लोक एवं वाद्य संगीत प्रतिभा ने पूर्वोत्तर के एक बड़े और प्रतिष्ठित मंच पर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी है। गैंगटॉक के प्रसिद्ध नाद बैंड ने गुवाहाटी में आयोजित एनी स्टार 2026 के भव्य ग्रैंड फिनाले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया है। 27 सितंबर को आयोजित इस फिनाले में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से चुनकर आए प्रतिभाशाली प्रतिभागियों ने भाग लिया था। नाद बैंड ने अपनी पारंपरिक लोक धुनों और आधुनिक फ्यूजन संगीत के अद्भुत संगम से निर्णायकों तथा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और सिक्किम की समृद्ध संगीतमय परंपरा को क्षेत्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। आइए सुनते हैं सिक्किम के नाद बैंड की इस संगीतमय यात्रा और शानदार उपलब्धि पर आधारित ये खास रिपोर्ट।
3: 27 सितंबर को हुए फिनाले में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से चुने गए 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नाद बैंड ने अपनी लोक और फ्यूजन संगीत प्रस्तुति से निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान खींचा और सिक्किम के संगीत को क्षेत्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई। सिक्किम में संगीत प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन 6 सितंबर को आदमपुल गंगटोक में हुआ था। यहां अलग अलग कलाकारों और बैंड की प्रस्तुतियों के बाद सिक्किम से नाद ग्रुप फोक इंस्ट्रूमेंटल बैंड और सुमित गजमेर को ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया था।

गुवाहाटी में हुए फाइनल में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से चुने गए 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नाद बैंड ने अपनी लोक और फ्यूजन संगीत प्रस्तुति से निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और दूसरे रनर अप का स्थान हासिल किया। नागालैंड की स्टूडियो ग्रुप ने प्रतियोगिता का खिताब जीता, जबकि मेघालय की पतेंग बैंड पहले रनर अप रही।

0: नाद बैंड में प्रीतम राज छेत्री, विनोद दर्जी सारंगी, निमेश वर्मा गिटार और डंबर घतानी पर्कशन पर हैं। बैंड के मेंटर नरेन बरदेवा हैं। इस उपलब्धि के बाद सिक्किम के लोक और वाद्य संगीत को पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। प्रतियोगिता का उद्देश्य पूर्वोत्तर के उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराना था। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में 8 पूर्वोत्तर राज्यों से 300 से ज्यादा पंजीकरण और ऑडिशन हुए, जिसके बाद हर राज्य से 2 फाइनलिस्ट चुने गए। ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत में राज्य समन्वयक श्याम प्रधान ने कहा कि नाद फ्यूजन की यह उपलब्धि सिक्किम की लोक और वाद्य संगीत प्रतिभा के लिए महत्वपूर्ण पहचान है।
1: तो नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं कि बैंड, स्पेशली वेस्टर्न बैंड या फिर सिंगिंग, इन सब के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में वहाँ पर ऐसे बैंड हैं, ऐसे कलाकार हैं और जो मंच में अपने परफॉर्म करते रहते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड मैं कहना चाहूंगा। और सिक्किम से ये जो नाद ग्रुप बनकर गया, तो आप शायद ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि नाद की उपलब्धि क्या है और इनका भविष्य क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने भी कलाकार हैं, प्रीतम हो, नरेन हो या फिर घतानी हो या फिर विनोद हो, निमेश हो, घर में तो ये बजा रहे थे, स्टूडियो में बजा रहे थे, लेकिन गुवाहाटी में जाकर ग्रैंड फिनाले

0: में बजाना और सेकंड रनर या टॉप थ्री में अपनी जगह बनाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ये घर से निकले हैं, घर से बाहर निकलकर इन्होंने अपनी भूख को जगाया है। कुछ पाने की ललक, कुछ पाने की भूख, कुछ पा लेने की, जीत लेने की जिद को जगाया है और टॉप थ्री में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और जब मैंने फोन आया और बधाइयां दी तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो अब इंडियाज गॉट टैलेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये होता है किसी भूख का जगना। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ के कलाकारों का, नाद के कलाकारों का, नाद फ्यूजन बैंड का थर्ड प्लेस में आना एनी स्टार अल्टीमेट म्यूजिक टैलेंट हंट में और इंडियाज गॉट टैलेंट की तैयारी करना या वहां जाने की इच्छा उनमें जागना, इसका मतलब है कि इन्होंने अपने पंखों को खोल लिया है और पंखों में इन्होंने हवा को भर लिया है। क्योंकि देखते हैं जब बड़े पंख वाले जो पंछी होते हैं, पहले वो पंखों को फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाकर फड़फड़ाते हुए बहुत सारी हवा वो पंखों में भर लेते हैं, उसके बाद वो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। तो मेरे ख्याल से नाद फ्यूजन बैंड के कलाकारों का गुवाहाटी के ग्रैंड फिनाले में जाना, टॉप थ्री में अपनी जगह बनाना, शायद इन्होंने अपने पंखों को फैलाकर हवा को भर लिया है, अब तो शायद ऊंची उड़ान है और सामने आसमान है। तो बहुत कुछ ये कर सकते हैं और भविष्य इनका उज्जवल है।
1: उन्होंने कहा कि इस तरह के क्षेत्रीय मंच राज्य के उभरते संगीतकारों को अपनी रचनात्मकता दिखाने और सिक्किम की विशिष्ट संगीत परंपराओं को पूर्वोत्तर और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का अवसर देते हैं। एनी स्टार 2026 में गायकों, वाद्य कलाकारों, बैंड समूहों और अन्य संगीत प्रतिभाओं को शामिल किया गया था। प्रतियोगिता 28 अगस्त से शुरू होकर 27 सितंबर को गुवाहाटी में ग्रैंड फिनाले के साथ सम्पन्न हुई। मैनक चटर्जी के साथ दिल्ली रामदुलाल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।

0: श्रोताओं, असम की होनहार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। लवलीना ने एशियाई खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बेहद खास बात ये रही कि 2 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के ही अवसर पर लवलीना ने फाइनल मुकाबले में चीन की बाओ जी को 5-0 से एक तरफा शिकस्त देकर ये ऐतिहासिक सफलता अर्जित की। ओलंपिक खेलों में कांस्य और पिछले एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के बाद लवलीना ने इस बार कड़े संकल्प से पदक का रंग बदलकर स्वर्णिम कर दिया। एक छोटे से गांव से निकलकर इस विश्व स्तरीय मुकाम तक पहुंचने के पीछे उनका कठिन संघर्ष, परिवार का अटूट सहयोग और वर्षों का कड़ा अभ्यास शामिल रहा है। आइए सुनते हैं लवलीना बोरगोहेन के शुरुआती संघर्ष से लेकर एशियाई खेलों में स्वर्णिम सफलता हासिल करने की पूरी प्रेरक कहानी।
1: लवलीना बोरगोहेन का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट जिले के बरुमुखिया गांव में हुआ। उनके पिता टीकेन बोरगोहेन छोटे स्तर पर कारोबार करते थे। लवलीना की जुड़वा बहनें लीचा और लीमा किकबॉक्सिंग करती थीं। बहनों को देखकर लवलीना ने भी मार्शल आर्ट की शुरुआत की और बाद में बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया। साल 2012 में उनकी मुलाकात कोच पुदुम बोरो से हुई। भारतीय खेल प्राधिकरण के ट्रायल के दौरान बोरो ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसके बाद लवलीना ने धीरे धीरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। लवलीना के शुरुआती सफर में आर्थिक परेशानियों के साथ सामाजिक चुनौतियां भी थीं। उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। 2018 में उन्होंने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य हासिल किया। 2020 में लवलीना टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम की पहली महिला मुक्केबाज बनी। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। यह उनका पहला ओलंपिक था। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में उन्हें असम के प्रतिष्ठित असम सौरभ सम्मान के लिए भी चुना गया। 2025 में उन्हें भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में असम की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टोक्यो ओलंपिक के बाद भी लवलीना का सफर जारी रहा। असम सरकार ने टोक्यो कांस्य पदक

के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी और प्रशिक्षण के लिए भी आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया। 2022 के एशियाई खेलों में लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। इसके बाद 2026 एशियाई खेलों में उन्होंने इसी वर्ग में फिर चुनौती पेश की। 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने दक्षिण कोरिया की सियोंग सो यून को 5-0 से हराया। 30 सितंबर को सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान की विश्व चैंपियन नतल्या वोगदानोवा को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाई। और फिर आया 2 अक्टूबर का दिन। अपने जन्मदिन पर लवलीना का सामना चीन की बाओ जी यई से हुआ। उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत दर्ज की और एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

0: इस तरह उन्होंने 2022 में रजत पदक का रंग बदलते हुए अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी। छोटे से गांव से शुरू हुआ लवलीना का सफर अब ओलंपिक कान से एशियाई खेलों के रजत और स्वर्ण तथा कई राष्ट्रीय सम्मानों तक पहुंच चुका है। उनकी कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और लगातार वापसी की मिसाल बन गई है। पूर्व उत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू, आकाशवाणी समाचार।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की पूर्वोत्तर डायरी। आज के कार्यक्रम में हमने पूर्वोत्तर के खान पान और संस्कृति पर आधारित नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में जाना, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की नई पहल को समझा, नागालैंड में हिंदी व स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के संदेश को सुना और सिक्किम के नाद बैंड की संगीत में सफलता और असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के स्वर्णिम पंच के बारे में बात। पूर्वोत्तर की पहचान उसकी विविधता में है और यहाँ की बदलती तस्वीर विकास के साथ साथ लोगों की मेहनत, परंपरा और प्रतिभा की भी कहानी है। इसी के साथ आज की पूर्वोत्तर डायरी में इतना ही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे यानी प्राची प्रिया को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और

तीव्र गति से तकनीकी विकास में के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन के लिए उन्नत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी पीएम सेतु योजना को 4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था। आज इस योजना का एक वर्ष पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। 60,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली पीएम सेतु योजना में केंद्र सरकार का योगदान 30,000 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों का 20,000 करोड़ रुपए और उद्योग जगत का 10,000 करोड़ रुपए है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि पीएम सेतु योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, किस तरह देश के सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल के जरिए आधुनिक बनाया जा रहा है, इसमें उद्योगों की क्या भूमिका है, युवाओं के लिए नए दौर के कौन कौन से पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं और योजना के एक वर्ष में अब तक कितनी प्रगति हुई है। श्रोताओं, भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन इस युवा शक्ति को रोजगार और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई लंबे समय से युवाओं को व्यवहारिक और रोजगार परक प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आईटीआई में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। अलग अलग ट्रेड के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक होती है। देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय की जिम्मेदारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGT की है। आईटीआई के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के पास होती है। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की कुल संख्या वर्ष 2014 में 9,776 थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 13,888 हो गई है, यानी इसमें लगभग 42% की वृद्धि हुई है। इसी तरह आईटीआई में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी शैक्षणिक सत्र 2014-15 के 9,51,000 से बढ़कर 2025-26 में 14,70,000 हो गई है, यानी इसमें 54% की वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ते हुए इस नेटवर्क को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए पीएम सेतु एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि पीएम सेतु किस तरह आईटीआई में बदलाव ला रही है।
1: पीएम सेतु योजना के तहत देश के 1000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। इन संस्थानों को हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। औसतन प्रत्येक हब आईटीआई से 4 स्पोक आईटीआई जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत हब आईटीआई में आधुनिक और उन्नत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिनका लाभ संबंधित स्पोक आईटीआई को भी मिलेगा। हब आईटीआई में इनोवेशन सेंटर, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की सुविधाएं, प्रोडक्शन यूनिट और प्लेसमेंट सेवाएं विकसित की जाएंगी। वहीं स्पोक आईटीआई के माध्यम से अधिक विद्यार्थियों तक आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और संस्थानों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। पीएम सेतु के तहत स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल कंटेंट और उद्योग आधारित पाठ्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक देश के 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी NSTI की क्षमता बढ़ाना है। ये NSTI भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित है। इन संस्थानों में क्षेत्र विशेष के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से प्रशिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस तरह पीएम सेतु का उद्देश्य केवल आईटीआई की इमारत और मशीनरी को आधुनिक बनाना नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों की क्षमता और रोजगार के अवसरों को उद्योग की जरूरतों से जोड़ना भी है। श्रोताओं, पीएम सेतु की एक खास विशेषता इसमें उद्योग की भागीदारी है। योजना के तहत संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उद्योग जगत से परामर्श करके आईटीआई का चयन कर रहे हैं। उद्योगों की जरूरत, क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता और भविष्य में रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए आईटीआई को अपग्रेड करने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसके लिए उद्योग भागीदारों को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP प्रस्तुत करना होता है। योजना के तहत उन्नत आईटीआई क्लस्टर के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV के जरिए उद्योग के नेतृत्व वाली व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इस पूरी व्यवस्था के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव करते हैं। यह समिति योजना को व्यापक दिशा देने, संचालन संबंधी दिशा निर्देश तय करने, प्रगति की जानकारी करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने का काम करता है।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं पीएम सेतु के जरिए आईटीआई को आधुनिक बनाने, उद्योग की भागीदारी बढ़ाने और युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
2: श्रोताओं, पीएम सेतु के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर योजना की प्रगति के आंकड़े भी महत्वपूर्ण है। एक वर्ष के भीतर 850 आईटीआई की पहचान की जा चुकी है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्कोप आईटीआई शामिल हैं। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्लस्टर की पहचान कर ली है और इसके लिए अलग राज्य बजट मद भी बनाई गई है। वहीं 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अपनी स्टेट स्टीयरिंग कमेटियां गठित कर ली हैं। इसके अलावा 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उद्योगों की भागीदारी आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने पीएम सेतु को पायलट चरण से आगे बढ़ाकर देश भर में सभी 200 चिन्हित आईटीआई क्लस्टरों में लागू करने को भी मंजूरी दे दी है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उद्योग की तैयारी और अपनी कार्यान्वयन क्षमता के आधार पर योजना को आगे बढ़ाने का अवसर देता है। अब तक 14 आईटीआई क्लस्टरों के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मंजूरी दी जा चुकी है। इन योजनाओं में कुल 3,446 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इन 14 क्लस्टरों में

0: आंध्र प्रदेश का कंचरा पालेम, उड़ीसा का क्योंझर बड़बिल, गुजरात का सूरत, तेलंगाना के ओल्ड सिटी संगारेड्डी, पाटनचेरू और मेदचल, राजस्थान का भिवाड़ी, उत्तर प्रदेश का मेरठ, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और पुणे तथा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू शामिल हैं। इन क्लस्टरों में स्टील और मेटल, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल तथा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े उद्योग भागीदार शामिल हैं। श्रोताओं, पीएम सेतु के माध्यम से केवल मौजूदा प्रशिक्षण को बेहतर बनाने पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि युवाओं को भविष्य की तकनीकों और नए रोजगार क्षेत्रों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत 32 नए दौर के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, सोलर एनर्जी, 5G और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। राज्य अपनी जरूरत और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार इन नए पाठ्यक्रमों को अपने ITI में अपना सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को उन क्षेत्रों में कौशल प्रदान करना है जहां आने वाले वर्षों में रोजगार और उद्योग की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है। श्रोताओं, पीएम सेतु के तहत वैश्विक स्तर पर भी साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत के कौशल प्रशिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। NSTI चेन्नई के लिए सिंगापुर, NSTI कानपुर के लिए फ्रांस और NSTI भुवनेश्वर के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते किए गए हैं। वहीं NSTI हैदराबाद के लिए जर्मनी के साथ संयुक्त घोषणा पत्र यानी ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान किया गया है। इन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की क्षमता बढ़ाने और उन्नत कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
1: श्रोताओं, पीएम सेतु का एक वर्ष पूरा होना केवल एक योजना की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि भारत के कौशल विकास तंत्र को बदलने की दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा का अवसर भी है। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में युवाओं को सही समय पर सही कौशल देना रोजगार और आर्थिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम सेतु इसी दिशा में कौशल से रोजगार, रोजगार से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत की यात्रा को मजबूत करने की पहल है। ITI के माध्यम से देश का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि आधुनिक उद्योग की जरूरतों को पूरा करने वाला कुशल कार्यबल और भविष्य का उद्यमी भी बन सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण के आज के अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। नमस्कार।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I'm Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।

0: में 9600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया।
1: And may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. Brent crude December futures rose 4.9% to settle at $102.25 per barrel. West Texas intermediate crude November futures dropped 1.4% to end at $91.11 per barrel over the week. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for updates on latest developments in West Asia.
2: Hi. The first thing in West Asia is that today the seven OPEC plus countries have decided to keep November production unchanged. That means we might not see any additional plant supply increase. Secondly, we've seen some kind of escalation on the Saudi-Yemen Houthi front. Houthis had yesterday claimed that they attacked Riyadh, specifically the Aramco facility. While Saudi Arabia has rejected these claims, any potential danger to Saudi Arabia's oil infrastructure may put pressure on oil prices in the future. Hormuz continues to remain a big oil market risk. Even today, there was report of an unidentified projectile hitting an oil tanker. Now, these geopolitical tension is being counterbalanced by G7's decision to coordinate the release of 100 million barrels of oil and refined products, which may help ease the pressure. But I think the volatility will remain for some days.
0: धन्यवाद मनीष शिवा। ये थे हमारे संवाददाता मनीष शिवा, और जैसा कि उन्होंने अभी बताया, ओपेक प्लस के सात देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने नवंबर में भी सितंबर 2026 वाले उत्पादन कोटे को जारी रखने का फैसला किया है। ये फैसला 4 अक्टूबर को हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा की। संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति JMMC की 68वीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। समिति ने चेतावनी दी कि हमला होने या आपूर्ति में रुकावट से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तो ये बहुत सारी खबरें हैं दुनिया में अस्थिरता की, और देखते हैं कि अब कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं हमारे। मेरठ से हरीश लाइन पर है। हरीश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मैं ये कह रहा था मेरी म्यूचुअल फंड में 70,000 to 80,000 की सिप चल रही है और मेरा टाइम होराइजन 10 to 12 इयर्स है सर, तो क्या सही है सर मेरा म्यूचुअल फंड में? मैंने स्मॉल कैप में और मिड कैप में और फ्लेक्सी कैप में कर रखा है, एक SBI कॉन्ट्रा फंड ले रखा है सर।
4: जी हरीश जी, आपके टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग और आपकी जो कैटेगरी सिलेक्शन है ये एकदम अलाइंड है। फोकस आपका इस पूरे समय में इस पे रहना चाहिए कि जो आपने मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन रखी हुई है वो एलोकेशन एक सीमे तरीके से आपके कोर पोर्टफोलियो के अराउंड बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें अपना जो परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का, उसको 30% से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि लंबे समय में बहुत बेहतर रिटर्न देने की ये आपको गारंटी मतलब संभावना देते हैं, बट होता क्या है कि इनमें जो एक रिस्क लेवल है वो भी काफ़ी हाई रहता है। तो हमें अपना एक कोर पोर्टफोलियो रखना चाहिए, जैसे आपने बताया फ्लेक्सी कैप कॉन्ट्रा टाइप की कैटेगरी से, और मिड और स्मॉल कैप जो एक अग्रेसिव ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता है वो एक एक लिमिटेड तरीके से रहे तो ये काफ़ी सही रहता है। आप एक चीज़ का ध्यान ये रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा पोर्शन डेट एलोकेशन में रख सकते हैं ताकि आपकी एक एसेट एलोकेशन इस तरीके से बनी रहे। आप जब मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो और आपको डर की संभावना लगती हो, तब जो आपकी डेट एलोकेशन होती है वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका आप ध्यान दीजिए, अपनी SIPs को

0: कंटिन्यू रखिए. कोई भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर होती है तो उससे अपने SIPs को स्टॉप या पॉज ना करें.
1: जी, आपने जैसा भी बताया वो स्मॉल कैप की हालत, ये कई जगह देखा है, क्योंकि लोग अक्सर एजेंट्स के पास या एडवाइजर्स के थ्रू करते हैं, या कई बार लोग ऐसे सलाह दे रहे होते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे होते हैं कि आप इसमें डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, और कई बार पोर्टफोलियो देखते हैं कि आप 60-70% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं. थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है, जैसे अभी पिछले कुछ महीने से शायद अच्छा लग रहा हो, किसी ने अभी एक आध साल में किया होगा तो उसको बढ़त भी कुछ दिख रही होगी, लेकिन आगे के लिए क्या करें?
0: बिल्कुल, आगे के लिए बस ध्यान ये देना चाहिए, ये जो इतना अग्रेशन जब बिल्ड हो जाता है पोर्टफोलियो में, तो मार्केट जब, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट जब हरी दिख रही होती है तब ये वाले फंड्स आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं. इसे हम एक तरीके से परफॉर्मेंस चेजिंग कह देते हैं. वो ना करते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका टेम्परमेंट है वैसा कि आप ये स्मॉल कैप मिड कैप की इतनी ज़्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो आप बिल्कुल वो करिए, पर ध्यान इस बात का रखना चाहिए कितना रिस्क उठा सकते हैं. और रिस्क एक ही बार आपको दस्तक देती है अपने पोर्टफोलियो में, और जब देती है तब आपको रियलाइज होता है कि उतना ज्यादा सही नहीं था. इसीलिए जैसे अभी मैं हरीश जी को बता रही थी कि आप डेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखिए और अपना रिस्क आपको जानना चाहिए, उससे पहले, इन्वेस्ट करने से पहले जो अपने एक पर्सनल सर्कमस्टेंसेज होते हैं. अगर आपका गोल ही आपके 3 साल का गोल है तो आप मिड स्मॉल कैप छोड़िए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास ही सूटेबल नहीं है. जैसे हरीश जी ने बोला उनका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, इस होराइजन के लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप एलोकेशन चाहे तो 30-40 रख सकते हैं,
1: बस 30-40, उससे ज्यादा नहीं.
0: मतलब फॉर स्टार्टर्स आपको 20-25 तक ही उसको
1: 20-25 ही रखना चाहिए जी, नए निवेशकों के लिए. जी,
2: वेल लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर व्हाट हिज क्वेश्चन इज. योगेश जी, सवाल पूछें.
3: जी नमस्कार आप सभी को. मेरा एक सवाल है और एक क्लैरिफिकेशन है. जो मैंने पिछली बार सवाल पूछा था कि सारा कुछ हमारा डिजिटल एसेट में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसका रीजन ये था कि रियल एस्टेट अपने आप में एक फिजिकल एसेट क्लास होता था, बट उसको रीट की वजह से डिजिटाइज कर दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है. दूसरा जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को ऐड करने का सही तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा पोर्टफोलियो ही 1 करोड़ से कम का है, अगर हम उसमें रियल एस्टेट ऐड करते हैं तो जैसे ही हम ऐड करेंगे वो एक मेजर पोर्शन खा जाएगा पोर्टफोलियो का अपने आप में, जबकि हमारा गोल है कि 20% से ज्यादा रियल एस्टेट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. तो क्या अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक SIP करें एक मिड या लार्ज मिड कैप फंड में और उसको एक रियल एस्टेट का लेवल कर दें, फिलहाल के लिए मेंटल लेवल दे दें रियल एस्टेट, और जब वो अपने आप में एक अच्छा अमाउंट हो जाए तो फिर उसको हम रियल एस्टेट के लिए यूज करें.
0: योगेश जी, मुझे आपका वो सवाल याद है जिसपे अभी आपने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा. मैं एक्चुअली आपसे, मैं आपको एक थॉट देना चाहूंगी कि जो रियल एस्टेट का जो एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल रियल एस्टेट आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर आपके दिमाग में इस तरीके से है, तो एज एन एसेट अगर आपको वो चाहिए तो आपको कोई भी कुछ भी कहे वो आपको लगेगा नहीं कि उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए. बट मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में आजकल इनडायरेक्ट, मतलब नॉट फिजिकल तरीके से जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिलता है वो इतना इजी हो चुका है, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. आप कह रहे हैं अगर वो कैपिटल रिक्वायरमेंट बन भी जाती है तो आप फिर उसको फिजिकली खरीदें, बट बियॉन्ड दैट जैसे और दो प्रॉब्लम्स रहती हैं फिजिकल रियल एस्टेट में, विच इज इलिक्विडिटी, या फिर जो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जैसे आपने बोला कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो इमीडिएटली काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो ये कुछ रिस्क रहेंगे ही जो फिजिकल रियल एस्टेट की जहां तक बात है. फिर भी रियल एस्टेट का एक्सपोजर जो रीट्स के माध्यम से आजकल मिलता है, म्यूचुअल फंड्स में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपको एक रीट्स की एक एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्योंकि वो एलोकेशन लिमिटेड रहती है, हाल फिलहाल में 2-3 नए फंड्स आए हैं विच आर फोकस्ड ऑन दिस, वो रीट्स ओरिएंटेड इंडेक्स फंड हो जाते हैं, तो क्योंकि वो पैसिव फंड्स हैं आपको इतना पता होता है कि वो कौन से रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी लिस्टेड रियल एस्टेट हैं जिसका आपको एक्सपोजर मिल जाएगा. तो मेरी नज़र में आप उसको एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको सहानुभूति देता है कि ये मुझे एक रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल रहा है. लिमिटेड रीट्स अवेलेबल हैं आज की तारीख में हमारी लिस्टेड मार्केट में, बट क्योंकि ये इंडेक्स है तो ये रियल एस्टेट कंपनीज का भी

0: एक्सपोजर देगा और रीट्स का भी जो आप चाह रहे हैं वो एक्सपोजर आपको मिल जाएगा।
1: जी, रियल एस्टेट के लिए अब तक भारतीय निवेशकों में काफी प्यार बना हुआ है,
0: बिल्कुल
1: ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर हम इतिहास में जाएं, अगर इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं, तो कई बार हम देखते हैं जो काफी जानकार एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं, विद्वान हैं, इवन मुझे नील फर्ग्यूसन की किताब पुरानी याद आ रही है, उसमें भी उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था, कैसे बाजार गिरा था और सब कुछ बर्बाद हुआ था, कई शहर खाली हो गए थे। तो रियल एस्टेट में रिस्क जब आता है और जब गिरावट होती है तो बुरी तरह से वो बर्बाद करके जाता है।
0: वो बात भी है, और जहां तक मतलब मैं योगेश जी की बात समझ पा रही हूँ, रियल एस्टेट के लिए आपका एक आपका एक फेवरेटिज्म आ जाता है, क्योंकि वो जो फिजिकैलिटी अटैच होती है कि ये
1: है हमारे पास, हमारे पास, मेरे हाथ
2: समथिंग पैल्पेबल,
0: एग्जैक्टली। तो कभी कभी वो एक मेरे नजरिए में नुकसानदेह बात हो जाती है, क्योंकि आजकल के टाइम्स में जहाँ पे बिल्डर्स आपको बेच देते हैं पर उसका जो उसको जो बनाना है, जो ग्रोथ है, कितना समय लग जाता है, आप समय इन्वेस्ट कर सकते हैं तो और भी बढ़िया बात है, वो आपको कंस्ट्रक्ट मिल जाता है, उसके बाद टेनेंट ढूंढना, मेंटेनेंस, ये सब काफी सारे एस्पेक्ट्स अटैच होते हैं, तो काफी सूझबूझ से ये मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। इन द मीन टाइम, क्योंकि डिजिटल एनवायरनमेंट में भी अब ये रीट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स आ गए हैं, तो एक माध्यम वहां से भी खुल जाता है।
1: जी, और वैसे भी जब आप फिजिकल अगर प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसको बेचना इतना आसान नहीं होता है। आज आप बेचना शुरू करें, हाँ, तो आपको शायद पूरा साल लग जाए उसे बेचने की कोशिश में। और चलिए देखते हैं सोने और चांदी का क्या हाल रहा। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड में बढ़त से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया। एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 1.9% की गिरावट के साथ 150,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 3.8% की कमी आई और ये 2,25,877 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 3.7% गिरकर $4,162.30 प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 6.8% लुढ़क कर $60.41 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई।
2: एंड जय कुमार जॉइंस अस फ्रॉम गाजियाबाद।
3: मार्केट बंदर टीम को नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
3: मैम मेरा सवाल है कि कई सारे इंडेक्स फंड हैं और मुझे कौन से इंडेक्स फंड में बेटर रिटर्न मिल सकता है?
0: जी कुमार जी, जो आपका सवाल है कि पैसिव फंड्स में आपको बेहतर रिटर्न कैसे मिल सकता है, तो ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि जो पैसिव फंड्स होते हैं वो अपने जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स का वो जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे होते हैं, मतलब कि जो वो इंडेक्स जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है वो उन्हीं में ही इन्वेस्ट करेगा। तो वो आपको बस एक प्रॉमिस कर रहा होता है कि जो ये इंडेक्स रिटर्न देगा अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से वही आपको मिलेगा। तो बेहतर रिटर्न का जो एक फंडा है वो पैसिव्स में उस तरीके से नहीं चलता है। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमें इस तरीके से देखनी चाहिए कि हम एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं चाह रहे हैं, मतलब कि हम एक फंड मैनेजर को ये अपने पैसे इस तरीके से नहीं देना चाह रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लें और आप उनकी सूझबूझ यूज करने के लिए उनको एक एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से कुछ कॉस्ट देते हैं जो आपके प्राइस में से कट हो जाता है। पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने का तरीका आप ये देख सकते हैं कि आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पैसिव फंड्स होते हैं, उनसे मोस्ट इन्वेस्टर्स का काम हो जाता है, बस वो आपको एक लार्ज कैप एक्सपोजर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब ये वो वाली कंपनीज हो जाती हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके ग्रोथ पोटेंशियल बिल्कुल स्टेबल हैं। तो मेरे हिसाब से पैसिव्स का यूज केस, इंडेक्स फंड्स का यूज केस वहां बनता है जहां पर लार्ज कैप एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ढूंढ रहे हैं।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश कुमार, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी
4: मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में हर वीक इन्वेस्ट करता हूँ एक लमसम करके, और मेजर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो निफ्टी में और हाइब्रिड में है करीब 25-25%, और बाकी का 4-5 म्यूचुअल फंड में है।

0: अभी मेरा पोर्टफोलियो स्लाइटली नेगेटिव में आ गया है, लेकिन निफ्टी वाला जो फंड है वो हैविली नेगेटिव में आ गया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे अभी मैं हल्की कैवरेज तो करूंगा तो वो निफ्टी में ही करना चाहिए या हाइब्रिड या लार्ज एंड मिड कैप बाकी फंड्स में करना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव हो? थैंक यू वेरी मच
1: जी। दिनेश जी, जो आपने तरीका बताया आपके इन्वेस्ट करने का, अगर वो तरीका आपको सूटेबल रहता है और आप जैसे कह रहे हैं कि आप हर वीक करते हैं और आप एवरेज आउट भी करते हैं, ये जो तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, ये काफ़ी डिपेंडेंट होता है अपॉन यू नो जो पर्सन इसको कर पा रहा है। जैसे मैं एज एन इन्वेस्टर अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मैं जो एक ये टाइमिंग वाला एलिमेंट होता है वो इतना कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगी। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो रहा है, बट निफ्टी जो कि एक पैसिव फंड है वो ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का ही रुख कुछ ऐसा है कि आपको उतना ज़्यादा रिटर्न या उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस मार्केट में दिख नहीं रही है टुवर्ड्स द अपसाइड। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप अपना जो निवेश कर रहे हैं आप उसको जारी रखिए। इम्पॉर्टेंट बस यही रहेगा कि आगे जब आपको ये अमाउंट कि ज़रूरत होती है और आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसे दिख रहा है तभी आप कुछ चेंज करें, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो लार्जली जो मैं समझ पा रही हूँ निफ्टी 50 और हाइब्रिड फंड से बना हुआ है, तो ये एक काफ़ी ऑलरेडी सूझबूझ से बनाया गया पोर्टफोलियो है
2: जी। और देखें अब क्या हाल रहा FPIs का। सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाले, जबकि जुलाई और अगस्त में उनका रुख सकारात्मक था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FPIs ने पिछले महीने 35,861 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। वैश्विक अनिश्चितता, US बॉन्ड्स यील्ड में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाए रखी। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से 45,537 करोड़ रुपए उन्होंने निकाले, लेकिन प्राथमिक बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले महीने भी पैसे डाले। सितंबर में उन्होंने प्राथमिक बाजार में 9,676 करोड़ रुपए का निवेश किया। ऋण बाजार पर भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली का दबाव बनाए रखा। सितंबर में उन्होंने FAR के जरिए 10,431 करोड़ रुपए निकाले, जनरल लिमिट रूट से 5,247 करोड़ और VRR से 5,049 करोड़ रुपए निकाले।
3: Sneha, we just heard these figures about the foreign portfolio investors. We'd like to have your view on this. What does this mean in terms of the mutual fund industry?
1: Right. So, as we've always been discussing that, it is very good to know, to be on top of this kind of development that is happening, because you get to know what kind of perspective exists for the home country outside Correct. The home country. But for specifically for mutual fund investors or any retail investor, my view is that these developments should never be taken as a personal cue to pause or stop your SIP.
3: Correct.
1: Because we take it so close to our hearts that we immediately start taking investment decisions. And right. like we have been discussing, your personal circumstances is or are what defines, your investing habits or your investment decisions. So if everything at your personal level is doing fine, your risk appetite is very much where your funds are, and your asset allocation is as you had started out with, then it's good to know, but continue with your SIPs and be disciplined about it.
3: Right. Meanwhile, Atanu Saha joins us from Kolkata. Atanu ji, sawal puche.
4: Yes. Good evening to everybody. Sir, ma'am, my question is related with how do we invest? Investment a habit which you inside. The investment habit is also important. How do we maintain it? One point. And another one, ma'am, arbitrage fund, ma'am, in its performance. Thank you.
1: Right. So, Mr. Atanu, if I have been able to understand your question, you are saying what kind of investment habits needs to be imbibed while, let's say, building your portfolio or to continue with the kind of portfolio you've built. So, my two cents on that would be, as we have been discussing, you judge your risk appetite, you judge your investment horizon for a time horizon greater than 5 years. You can look at

0: yield movements and currency fluctuations during the week ahead. Globally, investors will closely monitor developments surrounding the West Asia conflict. In the United States, minutes from the Federal Open Market Committee's September meeting will be released on Wednesday, possibly offering Wall Street cues about the Fed's rate outlook. Additionally, focus will be on the bond yields. Last week, the benchmark U.S. 10-year Treasury yield hit 5.34%, its highest level in 24 years. Higher yields can create more investment competition for equities and pressure stock valuations.
1: जी, और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। वे आज नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे। बाद में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष वोल्फगैंग इशिंजर और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सचिव बर्नहार्ड कॉच के साथ बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाले दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि तेज रहेगी और जनांकिकी वृद्धि दर का स्तर बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। आज वक्त इतना ही है। स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
0: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट। ब्रेंट क्रूड राइजेस नियरली 5%, WTI क्रूड ड्रॉप्स अराउंड 1.5%। इन बुलियन मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस डिक्लाइन लास्ट वीक एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट सेलर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज इन सितंबर, इन्फ्यूज ओवर 9,600 crore rupees through primary market. And that's all in today's edition of Market Mantra. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को, पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are important agendas for emerging and middle powers. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today, the External Affairs Minister said emerging and middle powers are from Global South and Global North who are united in the goal of being more relevant. He pointed out that the world is changing, its agenda and landscape is changing, and there is a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate.
1: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
3: Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan has said the centre will support Andhra Pradesh in providing pakka houses to poor families in the state. The minister, along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu, launched a pilot project for constructing houses using 3D concrete printing technology at Buripalayam village in Guntur district today. Speaking on the occasion, Mr. Chauhan said the centre has sanctioned 3 lakh houses for Andhra Pradesh and would sanction another 3 lakh houses before the completion of the ongoing construction. He added that further allocations would be considered based on the requirement. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that truly developed India must be built on trust among citizens, strong family values, character among the youth and compassion in society. Mr. Radhakrishnan was addressing the Mahaparv Samapna ceremony in 2026 organized by the Bhagwan Mahavir Memorial Committee and the Jain Mahasabham in New Delhi today. He described the occasion as a celebration of the universal values of forgiveness, friendship, non-violence and inner purification. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday while counting of votes will take place on Friday. The Bharatiya Janata Party BJP has declared 3 candidates for the Maharashtra Legislative Council elections scheduled on the 23rd of this month. The polls will cover 5 seats from the graduates and teachers constituencies. The BJP's nominees are Smita Jadhav for the Pune Division Graduates Constituency, Sudhakar Kole for the Nagpur Division Graduates Constituency and Kostav Gowde for the Pune Division Teachers Constituency. The biennial elections have been conducted for 5 seats whose current members will retire on 6 December this year. Secretary in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Saurav Garg, today said India's economic resilience, supported by strong corporate performance and sustained investment activity, has now been reflected in upward revisions to the country's growth estimates by various international agencies. Talking to the media on the sidelines of the Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mr. Garg said the Indian economy has maintained its momentum after recording 7.8% growth in the first quarter of the financial year 2026-27. The 7 OPEC plus countries, Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman, have decided to maintain the September 2026 production quotas unchanged for November. The decision was taken during a virtual meeting today where the countries reviewed global oil market conditions and outlook. The group will continue to meet monthly with the next meeting scheduled for the 1st of next month. The curtain has come down on the Asian Games with a dazzling closing ceremony in Aichi, Nagoya, Japan, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. The ceremony featured the traditional parade of athletes, the lowering of the Asian Games flag, and the formal handover to Doha, Qatar, the host city for the 2030 edition. Proudly carrying the Indian tricolour for the closing ceremony was India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda. The double gold medalist led the Indian contingent in a proud moment for the nation. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक समय था जब भारत में एक नया कारखाना शुरू करने के लिए 50 से ज्यादा दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, महीनों की फाइलें, अनगिनत हस्ताक्षर और दबी हुई लाल फीताशाही। दुनिया भारत को एक विशाल बाजार तो मानती थी, लेकिन यहाँ कारोबार करने से कतराती थी। फिर आया अक्टूबर 2001। गुजरात की धरती पर जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली, तो उन्होंने व्यवस्था से एक तीखा सवाल पूछा, व्यापारी पर अविश्वास क्यों, फाइलें दफ्तरों में महीनों क्यों रुके। और उसके बाद जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने भारत के आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। गुजरात के वाइब्रेंट सम्मेलनों और सिंगल विंडो की पहली डिजिटल क्रांति से शुरू हुआ वो साहसिक प्रयोग आज 140 करोड़ से अधिक लोगों के देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। फाइलों की धूल से निकलकर वन क्लिक नेशनल सिंगल विंडो तक, बिचौलियों के मायाजाल को तोड़कर जेम पोर्टल के डिजिटल लोकतंत्र तक, और लंदन दुबई को सीधी चुनौती देते गुजरात के गिफ्ट सिटी के आसमान छूते टावरों तक। ये सिर्फ सुधारों की कहानी नहीं है, ये भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रोमांचक पटकथा है। लोक कल्याण से राष्ट्र निर्माण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सुशासन के 25 ऐतिहासिक वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति जनसेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है कारोबार आसान, निवेश व्यापक। इस अभूतपूर्व बदलाव को आज हम डेटा, तथ्यों और दूर दृष्टि के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक मौजूद हैं, प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय जी और वरिष्ठ अर्थशास्त्री संतोष तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: संतोष जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो इसकी नींव गुजरात से मानी जाती है। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सिंगल विंडो सिस्टम और इन्वेस्टर्स समिट का मॉडल पेश किया। आपसे समझना चाहते हैं कि उस सिंगल विंडो और प्रो बिजनेस गवर्नेंस मॉडल ने भारत के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के गठन में क्या भूमिका निभाई और उससे कितना बड़ा

0: बदलाव पिछले एक दशक या गुजरात से देखें तो 25 वर्षों में आप देखते हैं?
1: आनंद, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे लिए काफी रोमांचक भी है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उस वक्त मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो गुजरात के समुद्र तट पर लग रहा था, दहेज और हजीरा में एलएनजी टर्मिनल, और मैं उस वक्त इसलिए कि मैं उसमें पत्रकार था और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने दोनों के इनॉग्रेशन को कवर किया। और दोनों में जो एक बात निकल के आई जो आपने अभी कहा, वो उस वक्त लगता नहीं था कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी भूमिका अदा करेगी, और वो था सिंगल विंडो सिस्टम और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो जब इनॉग्रेशन के बाद जो बड़े बड़े व्यवसायी जो वहां इकट्ठा हुए थे, उनसे प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सीधी बातचीत की, और कोई लब्बोलुभाव नहीं, वो सीधी बातचीत की। तो मैंने एक बड़ी कंपनी के सीएमडी से बाहर निकलने के बाद एक चीज पूछा, मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भाई ये क्या बात है कि इतने सारे व्यवसायी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के पीछे इतना आकर्षण है। उस वक्त ये कहानी लगती थी, लेकिन उस व्यवसायी ने मुझे उस वक्त बताया था कि संतोष, गुजरात में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि ये वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो रियल में वन विंडो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। आपको एक बार अगर राज्य सरकार ने, यानी गुजरात की राज्य सरकार ने अगर क्लियरेंस दिया और आपसे कहा कि लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरह के क्लियरेंसेस जो है वो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है,
0: जी,
1: तो आप आंख मूंद कर ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जब भी कभी आपको उस जो चीज अवेलेबल कराया गया है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत, उस चीज की आवश्यकता है, आपको किसी और दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा और वही सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो काम आएगा। और आपने सही कहा कि इसी सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर गुजरात में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर में आप देख लीजिए, या मैं नाम ले सकता हूं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो बाकी जगहों पर अलग अलग राज्यों को छोड़कर गुजरात में जाकर लगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारी कर रहा है, वहां भी धौलेरा अगर है या सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट का सेंटर अगर कोई राज्य बनना चाह रहा है तो वो गुजरात ही बन रहा है। ये सब ऐसे एक दिन में नहीं होता, एक सोच होता है। तो अगर व्यवसायी के लिए, इन्वेस्टर के लिए अगर सिंगल विंडो सिस्टम कोई चीफ मिनिस्टर अगर अवेलेबल करा सकता है, तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो उसे बिल्कुल पता है कि ये सिंगल विंडो सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये इंश्योर होता है। और बाकी राज्यों में भी कोशिश बहुत की गई है, की जा रही है, और जहां जहां इसमें सफलता मिली है वहां भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो उसी लिहाज से बढ़ा है। लेकिन गुजरात एक एक्सेप्शनल स्टेट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने में रहा है, और उसमें सिंगल विंडो सिस्टम की भूमिका बहुत अहम रही।
0: निवेश की बात कर रहे हैं संतोष जी, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दिलीप जी, तो भारत अब केवल एक घरेलू बाजार नहीं रहा बल्कि वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। और जब भी बात हम निवेश की करते हैं और राज्यों में निवेश की करते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात हमें याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाइब्रेंट गुजरात की पहल की तो उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर वो भी गुजरात जैसे राज्य में निवेश करेंगी। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के समिट्स होने लगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होने लगी और कई कंपनियां न सिर्फ भारत आई बल्कि उससे रोजगार की स्थिति भी बदली। तो उस शुरुआत को और आज के सफर तक कैसे देखते हैं आप?
2: ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे संतोष जी ने आपको पहले बताया कि जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस किया था, और उसमें एक खास तौर है कि जो गुजरात का सिंगल विंडो सिस्टम है वो हालांकि 2017 में अनाउंस किया गया था, लेकिन उससे पहले 100 करोड़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे वो खुद चीफ मिनिस्टर एक तरीके से उनको ओवरसी करते थे और वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर किया जाता था। और अगर आप देखें तो वाइब्रेंट गुजरात जो 2003 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ था, उसको आप लिखे तो जब तक कोई स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ नहीं करता था। इंडिया में नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट समिट्स भी नहीं हुआ करते थे, तो एक स्टेट गुजरात जो ये 2003 में जो इन्वेस्टमेंट समिट किया था, उस टाइम भी अगर आप देखें तो निवेशों को इंडिया से बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और इसमें एक खास बात थी, तो अगर आप देखें, संतोष जी ने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था, तो अगर आप देखें कि वेस्ट बंगाल में एक कंपनी का एक प्रॉब्लम था, तो वो अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे जहां पे अपर लैंड है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में उन्होंने अनाउंस किया और वहां पे जो उनको बोला गया था कि आपको हम ना हम आपको लैंड एक्वायर करना है ना कुछ करना है, लैंड एक्वायर्ड है, हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आप एमओयू साइन करिएगा और

0: आप कल से वहां पे अपना जो प्लांट है शुरू करें। आज की डेट में वो एक हब बन गया है। 2005 में वाइब्रेंट गुजरात में मैं खुद शामिल था, उसमें ऑटो सेक्टर के बारे में काफी चर्चा हुई थी। उस टाइम अमित शाह जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे वहां के, एक पूरा ऑटो सेक्टर पे सेक्शन किया गया था। उन्होंने उस टाइम कहा था कि भी हमें थ्री व्हीलर देखना चाहिए। जब उनको बताया गया कि भाई अहमदाबाद में भारत का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर, उन्होंने दिशा बदला और उन्होंने अलग काम किए। तो अगर आप देखें तो आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, आप इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो अगर आप देखें 2019 से आज तक लगभग 3.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में कमिट किया गया है। अक्टूबर यानी कि 2019 से मार्च 2025 तक इस साल का जो वाइब्रेंट गुजरात का समिट है वो अभी होने वाला है। और दूसरा जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में जो किया था वो खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स के नहीं था, वो देश में जाकर के अलग अलग जगह में इन्वेस्टर्स मीटिंग्स करते थे, वो भी एक नया ट्रेंड था। और अब सारे जो स्टेट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं, और एक तरीके से जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आप देख रहे हैं, स्टेट्स कम्पीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम डाल दिए, उसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात से हुई थी, गुजरात में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: जी हाँ, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहां से वाइब्रेंट गुजरात की पहल हुई और उसके बाद दुनिया भर की कई कंपनियों ने भारत में निवेश किया। चर्चा को आगे बढ़ाते संतोष जी, भारत ने पिछले दशक में ऐतिहासिक FDI प्राप्त किया है। अगर थोड़ी चर्चा FDI की करें, फीमा सुधारों और 100% ऑटोमेटिक रूट के विस्तार से विदेशी निवेशकों का भारत ने भरोसा जीता है। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव किए गए, चूंकि एक अविश्वास का केंद्र भारत माना जाता था, वहां से विश्वास को जीतना, FDI की पहल और उसमें भी बहुत रिकॉर्ड बने।
2: आनंद जी, निवेशक कोई भी जो विदेशी निवेशक होता है या जो कंपनियां होते हैं वो दो तीन चीजें किसी भी देश में जाने के पहले देखती हैं। अगर आप विश्व परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो या वैसे देश जहां के निवेश ज्यादा हुए हैं या होते रहे हैं, वहां पर जैसा मैंने कहा दो या तीन चीजें होते हैं जिसको देखते हैं। एक, जो आपकी पॉलिसी है उसमें सर्टेनिटी कितनी है, चाहे वो राज्य हो या देश हो। निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह होता है कि कहीं हम ऐसी जगह में निवेश तो नहीं कर रहे कि यहाँ पॉलिसीज जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता है, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसी चेंज होता है। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में पिछले एक दशक से ज्यादा जिस तरह से निवेशकों को जो चाहिए वैसी पॉलिसीज जिस तरह से चेंज करके लाई गई है फॉर देयर बेनिफिट, यानी उनकी सहूलियत के लिए, वो एक दूसरी चीज है जो कि निवेशक देखता है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को दिक्कत में ला सकता है, वैसी पॉलिसीज अगर हम चाहें तो सरकार उस दिशा में सोच रही है या नहीं सोच रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है और जो कि पिछले डेढ़ दशक में जिसने सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा की है भारत के इंडस्ट्रियल सिनेरियो को चेंज करने में, मैं चेंज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आंकड़े देखोगे तो भी चेंज है, सेंटिमेंट देखोगे तो भी चेंज है, अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो भी चेंज है, और जो एक्सपेंस होता है यानी कौन कौन सी कंपनियां आपकी देश में आ रही हैं उसमें भी चेंज है। ये चेंज जो है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, कोई भी उसको देख सकता है। ये तीनों जो मैंने बात बताई आपको उसके चलते ये चेंज है। पहली बात, पॉलिसीज में सर्टेनिटी आई। जो भी पॉलिसी आज से डेढ़ दशक पहले जो भारत में चल रही थी उन पॉलिसीज में कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया जो कि निवेशक जो आते थे उनको ये लगे कि नहीं, नई सरकार आई है या सरकारें दूसरी आएंगी तो हमारी पॉलिसी कंटिन्यूटी इन पॉलिसी रही। दूसरा, जब भी आप किसी देश में जाते हैं अगर नियम कानून को पालन करने में इतनी जहमत हो कि आपको ये लगे कि ऐसी जगह में हम निवेश करें क्यों, इस सरकार ने, आप चाहे फेमा ले लें या जो इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं उसको ले लें या जो सेंट्रल लेवल में जो भी एक्ट्स जितने बने हैं, कन्विक्शंस ले लीजिए, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए जो निवेशक होता था या कंपनियां होती थी उनको कन्विक्ट कर दिया जाता था, इन सारी चीजों में जो मैंने एक दो तीन चीजें बताई कि कन्विक्शन हो या निवेश की सहूलियत हो या फिर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना हो, चाहे वो विदेशी फंड से रिलेटेड हो या देश में पैसा लगा रहे हो उससे हो, इन सब चीजों में एक बार में नहीं, धीरे धीरे धीरे करके साल दर साल जो है वो चेंजेस हुए। अगर आप देखोगे FDI लिमिट ऑटोमेटिक अप्रूवल या 100% FDI जो है जहां जहां बचा हुआ था वहां वहां, मैं सेक्टर्स का नाम नहीं ले रहा, जहां जहां बचा हुआ था ऑलमोस्ट जितने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं सब में वो 100% लिमिट हो गया है। एक दिन में सब कुछ बदल देना बहुत मुश्किल है, बट जो डेढ़ दशक में बदलाव हुआ है वो निवेशकों का भरोसा हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्शन हो, वो क्वेश्चन हो, या फिर ये सर्टेनिटी हो कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अगर लेके आ रहे हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए कि हमारा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमें दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। इन तीनों लिहाज से पिछले डेढ़ दशक के सरकार के नियमों और कार्यक्रम को आप अगर

0: देखेंगे तो डेटा जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने कहा कि एफडीआई जो है हमारा बहुत बड़ा है, वो सिर्फ इंटेंट है जो आया है। जिस तरह से अभी काम चल रहा है, चाहे वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए आप, चाहे आप सेमीकंडक्टर देख लीजिए, चाहे आप डेटा सेंटर्स देख लीजिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लग रहे हैं आज इंडिया में, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग देख लीजिए जो सबसे नया विधा है जो अभी आ रहा है, किसी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी देख लीजिए आप, हर जगह एक इंडिया टेक प्लेबुक तैयार हो रहा है। और उसके जो दो बड़े पहलू हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस इंडिया टेक प्लेबुक में, एक सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज एंड टू द गवर्नमेंट इज रेडी, सरकार तैयार है। जो चीज आपको चाहिए आप मेरे से बात करिए, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं, बात करिए और हम ये कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी सहूलियत बढ़ा सके वो हम बढ़ाएंगे। एक इकोसिस्टम और सेंटिमेंट, ये दोनों तैयार हुआ है, कोशिश सिर्फ यही करनी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इसको आगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर बढ़ाए।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा गिफ्ट सिटी और IFSCA की भी कर लेते हैं। IFSCA, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है। इन दोनों की कोशिशों के तहत भारत को लंदन, सिंगापुर या दुबई की तर्ज पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश की गई है। कितने सफल हुए हैं हम और गिफ्ट सिटी के माध्यम से होने वाले बैंकिंग और फंड मैनेजमेंट के ताजा आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं?
2: तो अगर आप देखें तो गिफ्ट सिटी जो है, वो गिफ्ट सिटी के पहले इंडिया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के द्वारा बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। गिफ्ट सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे विश्व को इंडिया से कैसे दे जाए। इसका दो पहलू है, एक हम इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया से कैसे दें और दूसरा जो है इंडिया में जो फैमिली ऑफिसेज हैं, जो दूसरे एंटिटीज हैं वो जाके विश्व में सेटअप करते हैं, उनको क्या गिफ्ट सिटी एक अल्टरनेटिव सिस्टम दे कि वो विश्व भर दूसरे जाए, सिंगापुर जैसे आपने कहा, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, लंदन जाए, वो गिफ्ट सिटी से कर सके। अगर आप देखें तो उनका जो ढांचा है गिफ्ट सिटी का, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स का जो है, फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, अगर आप देखें गोल्ड का एक खास तौर से है। सबसे बड़ी बात जो इंडिया में जो हमारे जो एयरलाइंस की एक्सपेंशन हुई थी, हम एयरक्राफ्ट लीजिंग बाहर से करते थे, वो एयरक्राफ्ट लीजिंग अभी गिफ्ट सिटी से हो सकता है। दूसरा शिपिंग, हम करीब $70 बिलियन जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है वो शिप के लीजिंग में खर्च करते हैं, तो उसको कैसे भी ऑनशोर करें और गिफ्ट सिटी में उसको पोजीशन करें, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे है। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के है और ग्लोबल इनहाउस, तो ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कैपिटल अट्रैक्ट करने का एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसे हम पहले FDI के बात कर रहे थे। ये है इंडिया से हम फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट करें और इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो पूरे विश्व पे कैसे छाए और अपना एक नाम करें। गिफ्ट सिटी जो है आज की डेट में ये एक नया इंटरफेस बन सकता है इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। अभी भी अगर आप आगे जाके देखें तो इस टाइम ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में टोकनाइजेशन और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पे काफी चर्चा हुई थी, उसका जो पायलट हुआ था वो गिफ्ट सिटी में हुआ था और गिफ्ट सिटी एक बड़ा एक पैनामे पे एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर रहा है टोकनाइजेशन। अगर आप देखें उसी वैल्यू का, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का, तो आगे जाकर के वो $16 ट्रिलियन का एक मार्केट बन सकता है। और अगर हम उसको एंकर करें गिफ्ट सिटी में, तो अगर आप उसका 20% या कुछ भी ले ले, फिर भी वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक हब हो सकता है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो राजा रामन है उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में यह कहा था कि अलग अलग नए प्रोडक्ट्स भी अभी आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं टोकनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, टोकनाइजेशन ऑफ जो स्टॉक्स वगैरह, उसको हम कैसे करके एक ग्लोबल सर्विस इंडिया से दें और या कि नहीं कि इंडियन कंपनीज जो है दुबई, हांगकांग, सिंगापुर या लंदन जा करके वहां पे अपना काम करें।
1: जी, कारोबार आसान, निवेश व्यापक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास अर्थशास्त्री मौजूद हैं, दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी जी। संतोष जी, व्यापार का आधार स्तंभ हमारे सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग माने जाते हैं और जब से MSME की संशोधित परिभाषा आई है, ऐसे में क्या हुआ है कि छोटे उद्योग बिना अपना प्रारूप चेंज किए हुए स्केल अप हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस बदलाव को और विकसित भारत की दिशा में इन कोशिशों को?
0: आनंद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये रिवॉल्यूशन है, और ये रिवॉल्यूशन ऑलरेडी इंडिया में आपको दिख रहा है। अगर आप निचले स्तर पर गांव के स्तर से लेके आप जिला के स्तर पर जाएं या देश के कोने कोने में अगर जाएं, तो युवा जो है वो आज पहले जैसा नहीं रहा। आज उसको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसको एक इंडस्ट्री चाहिए। आप कितने ही अपने फैमिली में देख लीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी यंग यूथ जो आ रहा है उसको अपनी कंपनी चाहिए, उसको अपना बिजनेस चाहिए, उसका अपना आइडिया है, वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया है, ये बदलाव इसलिए आया है कि एक समय था जब ये कहा जाता था, और आज भी दिक्कतें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जो है वो दिक्कत नहीं, आपको बिजनेस चलाना हो दिक्कतें हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि सरकार ने जिस तरह से, आपने कहा एमएसएमई के लेवल होते हैं उसमें डेफिनेशन में चेंज किया गया, और जो करोड़ में जो पैसा है जिस तरह से आप डिफाइन होते हैं एमएसएमई, वो बड़ा कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया। वो सिर्फ इसलिए है कि जो एमएसएमई से रिलेटेड सहूलियतें हैं वो आपको मिल जाएं, और जो भी सरकार कर सकती थी वो सरकार ने किया है, और दिशा उसमें यही है कि अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है आपको वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करेंगी इंडिया में। अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में होने वाला है वो स्काई रूट करेगा। जो एक छोटी सी कंपनी मानी जाती थी वो आज स्पेस में अपने जो है प्रोडक्ट्स वो भेज रहा है। इसी तरह से आप अगर स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप में जिस जिस तरह की कंपनियां आ रही हैं, मैं बिल्कुल रूबरू हूं स्टार्टअप वर्ल्ड से, जिस तरह से आ रही हैं वो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आइडिया है और उनको बड़ा बिजनेस बनाना है। तो जिस तरह के एमएसएमई के डेफिनेशन में चेंजेस हैं या फिर जो भी इंसेंटिव्स जो दिया जाता है, अलग अलग विभाग और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंसेंटिव्स हैं जो सरकार ने लाए हैं। अगर आप स्पेस सेक्टर में आपको काम करना है तो आज भारत में स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक कंपनी है जो आपको सहूलियत देती है, आपको फंड तैयार करती है, फंड देती है। दूसरी है जो कि एक संस्था है जो कि आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प कोई चाहिए वो देती है। तीसरी है जो सरकार से आप चले आइए और आप बोलिए कि देखिए हमको ग्लोबल कोई अट्रैक्शन चाहिए, ग्लोबल कोई हमें चाहिए, सीखना है हमें, बाहर जाना है और सीखना है, उसमें मदद करती है। और मैंने सिर्फ स्पेस सेक्टर को कहा, हर सेक्टर में सेमीकंडक्टर चले जाइए, और हर अगले दिन जो है सरकार सेमिकॉन 2 में कुछ नई चीजें आई हैं, जो कि सेमिकॉन 1 जो था जिसमें इतने इन्वेस्टमेंट जो आए गुजरात में उसके आगे की चीज है, उसमें भी फिर जो है छोटे मझोले उद्योग जो है उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सारी चीजें आ रही है, हम लिस्ट नहीं कर रहे यहां पर। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने ना सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को बल्कि लोअर लेवल पे माइक्रो स्मॉल और स्टार्टअप्स को जिस तरह से सपोर्ट करना और हैंड होल्डिंग करना शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के छोटे और मझोले उद्योग जो है आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े उद्योगों में हेल्प करने वाला एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, और ये हो रहा है।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा जेम की कर लेते हैं। पहले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई केवल बड़ी कंपनियों या रसूखदार बिचौलियों तक सीमित रहते थे, लेकिन जेम ने इस बिचौलिए तंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिकरण किया है। और आंकड़े बताते हैं कि जेम पोर्टल की शुरुआत होने से लेकर अब तक 18.4 लाख करोड़ से अधिक का सरकारी व्यापार दर्ज हुआ है। जो जेम के आंकड़े हैं उसमें एमएसएमई कारोबारी, महिलाओं और छोटे उद्यमियों का जो योगदान है उसको आप कैसे देखते हैं?
2: जेम पोर्टल जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और ये इसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है, और वो जैसे आपने आंकड़े बताए गवर्नमेंट की काफी प्रोक्योरमेंट होते हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली उस पोर्टल पे लिस्ट करने होता है, और देश में चाहे आप स्टार्टअप हो जैसे संतोष जी ने कहा, चाहे मध्यम उद्योग हो चाहे लार्ज उद्योग हो, आप उस पे अगर बिड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। इसका एक काफी अच्छा फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसमें जो छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री है उनकी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पेमेंट की प्रॉब्लम है। अब जेम पोर्टल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से लिंक करके उसमें बिल डिस्काउंटिंग का एक जो प्रावधान है वो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज और छोटे जो स्टार्टअप्स है, और स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट किया गया है क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क में, तो उसमें ये एक नेशनल काइंड ऑफ मार्केट प्लेस किया गया है, और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अभी उन्होंने सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी बोला है कि आप इसी से आगे जाकर के करिएगा। एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस भी क्रिएट किया गया है, ईनैम। उसमें जो है आप कहीं पे भी एक कृषि उत्पादक हो, आप अपना प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और अगर आप देखें तो टोकनाइजेशन में भी अभी जो कर रहे हैं, वेयर हाउस रिसीट टोकनाइजेशन का एक काफी सिलसिला चल रहा है। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो पहले हम DGSND उसको कह करते थे, वो एक फिजिकल सिस्टम था, अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। दिल्ली में अगर आप देखें तो छोटे छोटे कॉलेजेस भी उससे प्रोक्योर करते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स

0: भी होता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर अपने अब तक के सफर में इस पर भी बहुत ज्यादा काम किया है। जन विश्वास अधिनियम ने लगभग 40,000 से अधिक शिकायतों को खत्म किया, कई मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। सवाल यह है कि इसका भारतीय उद्योगपतियों के मनोविज्ञान और आर्थिक कार्य प्रणाली पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है।
1: मैं इसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता हूं आनंद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग जो स्टेप्स हैं उनको लेकर ये सूत्र जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि ये सारी चीजें, जैसा आपने कहा कि जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने इन सब चीजों को ग्राउंड लेवल पर ठीक किया था
0: जी।
1: उसमें से भी ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन उसको बोलते हैं, बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए, मैंने पहले उल्लेख किया था इस बात का, छोटे छोटे नियमों के उल्लंघन के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। आप व्यवसायी हो, जाहिर तौर पर तरह तरह की दिक्कतें हैं, नियमों का उल्लंघन अगर हुआ और आपको जेल में डाल दिया जाए कोई छोटे से उल्लंघन के लिए, बड़ी बात थी और वो एक सिग्नल गलत देता था। तो जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो आया था, उसमें 183 ऐसे माइनर ऑफेंसेस को, करीब 42 सेंट्रल लॉज में, जहां पर कि इन सब के चलते आपको इम्प्रिजनमेंट या जेल में डाल दिया जाता था फॉर टेक्निकल और माइनर लैप्सेस, उनको मॉनेटरी जो है वो पेमेंट करके आपको छूट जाएंगे आप। बहुत बड़ी सहूलियत है ये। 2025-26 के बजट में जो जन विश्वास 2 बिल आया, उसमें ऐसे 355 प्रावधान जो है अक्रॉस 16 मोर सेंट्रल एक्ट जो है उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देखने में बहुत आसान सी चीज लगती है, लेकिन आप सोच के देखिए उस व्यवसाय के लिए या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि किसी एक छोटे नियम के उल्लंघन के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए, तो भारत जैसे देश में तो आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। आर्थिक जगत में फिक्की जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है भारत के, वहां पर एक बार हम ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ बड़े बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को और सबको देती है। तो निकल कर ये आया कि ये जो लॉज हैं जो रिडंडेंट हैं, यानी वैसे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जिनकी कोई जरूरत नहीं है और उनको पालन करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा कंपनियों का समय जाता है। ये बात यहां लिखा हम नहीं चर्चा कर रहे, पर मैं आपको परिप्रेक्ष्य के लिए बता रहा हूं। तो हमने जाकर केंद्र सरकार में, जहां बताना चाहिए वहां पर ये बताया। पहली दफा फिक्की ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो इकोनॉमिक सर्वे में आया कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको बेकार में जो पड़े हुए हैं इतने सारे और हजारों की संख्या में, जिनकी जरूरत कोई नहीं है, अगले साल के बजट में इन रूल रेगुलेशंस को सरकार ने हटा दिया। ऐसी चीजें भी हुई हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन जो है, जो जनविश्वास बिल है, वो तो है बहुत बड़ी बात, लेकिन सहूलियत बढ़ाने के लिए भी जो रिडंडेंट लॉज थे उनको भी हटा दिया गया। तो चेंज करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी में मत जाओ कि एक सरकार, एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय, उससे घूमते घूमते 15 साल लग गए और ये चेंज हुआ। नहीं, आप आइए लाइन मिनिस्ट्री को बताइए, यानी जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आप हैंडल होते हैं, ऊपर के तौर पर सबसे टॉप में प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लेवल पर उसको समझा जाएगा और अगर जायज है उसको ठीक कर दिया जाता है।
0: दिलीप जी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि जब भी हम व्यापार को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो एक चीज जो परेशान करती है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी माल ढुलाई की लागत। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने देश में लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट की ओर लाने में जो भूमिका निभाई है, इसका असर आप कैसे देखते हैं?
2: ये भी एक तरीके से गुजरात से ही शुरू हुआ था, क्योंकि गुजरात में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम था, ठीक है, क्योंकि पहला जो गति शक्ति का जो पहला था वो एक प्रगति नाम का एक सिस्टम था, और वो जो PM गति शक्ति बनाया, जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बनाया। प्रगति में क्या होता था कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद रिव्यू लिया करते थे, जिसमें जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो कहीं नहीं जा रहे, उनका क्या कारण है, और उसमें काफी अकाउंटेबिलिटी होता था, क्योंकि जिसके पास वो एक तरीके से एक्शन पेंडिंग था, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उसको क्लियर करना पड़ता था। फिर प्रगति में क्या हुआ कि एक बहुत अच्छी चीजें हुए, एक तो डिजिटल डेटा आ गया हर प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरा फिजिकल मीटिंग्स नहीं होते थे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होते थे, तीसरा ये GIS और जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन आ गया, चौथा सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मिनिस्ट्रीज और जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटीज वो इकट्ठा आ गया, और पांचवी जो किसी का अगर ग्रीवियंस होता था वो रिजोल्व हो जाता था। अगर आप देखें 2026 का जो डेटा है तो 382 प्रोजेक्ट्स प्रगति में रिव्यू हुए थे, करीब 85 लाख करोड़ के भी थे, और करीब 3,000 इश्यूज एकदम रिजोल्व हो गए। इसको एक नई सोच आई, ये प्रोजेक्ट्स को एक तरह से सैंक्शन नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यूली मॉनिटर करना चाहिए था। फिर 13 अक्टूबर 2021 में ये PM गति शक्ति, उन्हें एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट खड़ा किया और एक सेक्रेटरी था लॉजिस्टिक्स के लिए। तो उसमें क्या किया था,

0: कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में देखें तो अगर आपके पास एक किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में शहर में आपका एक फैक्ट्री है तो आपको लोकल इंडस्ट्रियल एस्टेट से हाईवे तक ले जाना या एयरपोर्ट तक ले जाना या पोर्ट तक ले जाना वो एक ज्यूरिसडिक्शन आता है, पोर्ट में दूसरा ज्यूरिसडिक्शन आता है, अगर आप हाईवे में ले गए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी आ जाती है, फिर पोर्ट आ जाता है, फिर एयरपोर्ट आ जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सारे जो बॉडीज है इसमें इंटीग्रेट करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीमलेस कनेक्टिविटी और उसको कैसे करें, और हम उसको इतना ध्यान नहीं देते कि नहीं, जो फास्ट टैग सिस्टम भी आया है टोल हाईवेज में वो भी इसी का, क्योंकि टोल में वेटिंग होता था और टाइम करता था। एक कोई नया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे संतोष जी ने पहले धोलेरा का सेमीकंडक्टर्स का बोला था, अब सेमीकंडक्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए क्योंकि वो क्विक टर्न अराउंड है। तो एक तो आपने कॉस्ट की बात की थी, कॉस्ट तो एक चीज है जो हम 16% या 17% से हम उसको एक सिंगल डिजिट 8 या 9% में ले आए हैं। दूसरा जो पोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, एयरपोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, अगर आप देखें तो आज आप दिल्ली से मुंबई 17 या 18 घंटे में कर सकते थे, जैसे आपको 3 दिन या 4 दिन लगते थे। और ये जो फैक्ट्री से, रोड से, रेलवे से, लॉजिस्टिक पार्क से, पोर्ट और शिपिंग और एयरपोर्ट, ये पूरा जो चेन पीएम गति शक्ति में आ गया है, अब आप उसको बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जो सेक्टर एसोसिएशन है, उनसे फीडबैक लिया जाता है भी कहां प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। गति शक्ति जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बिल्डिंग कनेक्टिविटी एज ए नेटवर्क का एक तरीका है। और सारा स्कीम आप देखें तो इसमें पीएम गति शक्ति के द्वारा उन्होंने एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अनाउंस किया था और ये पूरा इंडिया एक मॉडल हो सकता है।
1: विषय बहुत व्यापक है, समय बहुत कम है संतोष जी, हम कार्यक्रम के अपने समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 वर्षों का सफर हमने बहुत छोटे छोटे तरीकों से चर्चा करने की कोशिश की, इस सफर का जो लक्ष्य है वो है 2047 का विकसित भारत। कैसे देखते हैं आने वाले समय में इस आधार पर किस तरह की इमारतें बनते हुए, संक्षेप में?
2: जिस समय में मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, और उस समय चुनाव का वक्त था, तो मैंने एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे जो मेरे दोस्त थे, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, चल रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनको गुजरात का एक्सपीरियंस था। तो मैंने पूछा कि एक विजनरी या इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश को विजन के तौर पर देखता है, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो कि यहां आएंगे वो जीत जाएंगे तो आएंगे, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था और वो इस पूरे 25 साल के सफर को समअप करता है और आगे की बात जो आपने 2047 की उसको भी इंगित करता है। उन्होंने ये कहा, संतोष देखिए, पॉलिसी बनाना ये भी जरूरी है, लेकिन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना ये आज देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाया है। भारत को आज बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देश की तरक्की जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में दिखेगी। 1.5 दशक की जो उनकी सरकार का जो एक्सपीरियंस है, आपको प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगे। यही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अभी तक जो आप ओल्ड एज इकोनॉमी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे थे, आज आपको न्यू एज इकोनॉमी में ले जाना है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2047 में भारत में जो ग्रोथ होगा और जहां भारत पहुंचेगा वो टेक लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी होगा। अभी हाल में वित्त मंत्री ने कहा बेंगलुरु में कि सेमीकंडक्टर, एआई, ये सारी चीजें जो हैं देश के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं अब वो ये बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री तो पहले से करते हैं, एआई हो, सेमीकंडक्टर हो, आगे का भारत जो 2047 का आप देखेंगे, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा क्या ग्रोथ रेट होगा क्या होगा, पर टेक लेड ग्रोथ होगा और 2047 में हम सिर्फ विकसित भारत नहीं होंगे, हम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब होंगे जो बनाता भी है, टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करता है और विश्व में सप्लाई भी करता है।
1: दिलीप जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स।
0: देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री का एक जर्नी देखें तो गुजरात से भारत तक जो ये एक यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की एक कहानी है। यह सरकार की ये बदलती भूमिका है, क्योंकि जहाँ पे पहले वो एक गेटकीपर थी, आके आपको सबके चीज के लिए एक परमिशन चाहिए होता था, अब सरकार की अनुमति चाहिए थी, फिर सुविधाएं देने के लिए और सब चीजें प्राप्त करने के लिए मल्टीपल विंडोज हुआ करते थे, आपको कहीं कहीं जाने से। अगर अब जो सरकार देखे, अब कोशिश है कि ये सरकार कारोबार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बनाने की काम कर रही है, और जैसे जो आज की इकोनॉमी है वो 2000 47 में इकोनॉमी में काफी अंतर होगा। और इस सरकार का ये प्रयास है कि सबको साथ लेके, सबका विकास लेकर के आगे करके एक विकसित भारत बनाए।
1: यदि हम देखें तो पिछले 25 वर्षों में सुशासन से समृद्धि की यात्रा केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों युवाओं के सपने को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ने की कहानी है। गुजरात की सिंगल विंडो से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल इंडिया और विश्व स्तरीय वित्तीय केंद्रों तक पहुंच गया है। दिलीप जी आपका और संतोष जी आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद आनंद जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया। अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में चौथी राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शामिल हुए। कहा, दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज राहगीरी डे और संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज राजधानी के विभिन्न स्थानों पर सभी मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर जंगपुरा, नई दिल्ली, रोहतास नगर, आदर्श नगर, नजफगढ़, मादीपुर, बदरपुर, बादली, शाहदरा, संगम विहार, चांदनी चौक, ग्रेटर कैलाश, अम्बेडकर नगर, कस्तूरबा नगर, कालकाजी, घोंडा और कोंडली में लगाए गए। अगला विशेष शिविर कैंप 11 अक्टूबर को लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया गया है। जल बोर्ड ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। साथ ही बोर्ड ने उपभोक्ताओं को सतर्क करते हुए अपील की है कि EKYC के लिए आने वाले किसी व्यक्ति को पैसे या उपहार न दें। ऐसी मांग होने पर तुरंत 1916 हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही OTP, आधार या अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी किसी के भी साथ साझा न करें और जानकारी सिर्फ अधिकृत अधिकारी को ही दें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली में सड़कों पर धूल और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में 35 किलोमीटर लंबे 25 सड़क मार्गों की जांच की गई है। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों पर जांच के दौरान 17 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इनमें निर्माण और तोड़फोड़ से निकले मलबे का जमाव और सड़कों पर अधिक धूल शामिल है। आयोग ने लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को धूल पर नियंत्रण के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि वायु प्रदूषण रोकने के उपायों के क्रियान्वयन की जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन एयर के अंतर्गत निरीक्षण जारी रहेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
4: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy, and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों के कारण अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति को बरकरार रखा है।
5: I think this growth rate, if you look at the last 3 years,
6: मुझे लगता है कि यह विकास दर काफी उत्साहजनक है। पिछले 3 वर्षों पर नजर डालें तो हम लगातार 7% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहे हैं। पहली तिमाही के आंकड़ों में भी यह देखा जा सकता है जिसमें 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के भेष में व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 6,00,000 रुपए ट्रांसफर कराए। मामले की जांच के बाद पुलिस ने यह पाया कि एक आरोपी के खाते में लगभग 50,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। साथ ही अलग अलग राज्यों की 10 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP शिकायतों से जुड़े होने का भी पता चला। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी को पालमगांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 1 एयर गन बरामद की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों की ओर से पुलिस कर्मियों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध नियंत्रण शाखा को सौंप दी है। आरोप है कि ये घटनाएं कल नई दिल्ली इलाके में एक प्रदर्शन के दौरान हुई जब पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में दिल्ली की विभिन्न रामलीला समितियों के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान रामलीला समितियों ने मुख्यमंत्री को अपने अपने आयोजनों में शामिल होने का निमंत्रण दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि रामलीला दिल्ली की आस्था, संस्कृति और भगवान श्री राम के संस्कारों की जीवंत परंपरा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल रामलीला आयोजनों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, समयबद्ध NOC और विभागों के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई थी। इस साल इन व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि रामलीला समितियों को आयोजन में सुविधा हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज हरेवली गौशाला के नवनिर्मित भवन और 45 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सौर संयंत्र गौशाला को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक पहल है। गौ माता को सनातन संस्कृति की चेतना बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेवा और गौ संरक्षण की चिरंतन परंपरा को आगे बढ़ाना सांस्कृतिक दायित्व है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: यह आकाशवाणी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा सेतु शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर का उद्देश्य सीतापुरी क्षेत्र में नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं और सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार जन सेवा को सरल, सुलभ और जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सीतापुरी में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित चौथी दिल्ली राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शामिल हुए। उन्होंने पैरा खिलाड़ियों के जज्बे, उनकी प्रतिभा और खेल भावना की सराहना की। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और मजबूत मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वो अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों ने देश भर में दिल्ली में खेलों को लेकर लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया है।
7: दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के द्वारा आयोजित इस स्विमिंग कंपटीशन के लिए मैं एसोसिएशन के पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं। और दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है, ये अपने आप में हौसलों को टेस्ट करने का मौका है। दिल्ली सरकार इस एसोसिएशन को यथासंभव जो मदद कर सकती है जरूर करेंगे।
1: कनॉट प्लेस में आज राहगीरी डे और संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी और दिल्ली पुलिस के विशेष यातायात आयुक्त अजय चौधरी ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिलिंग कार्यक्रम के लिए श्री सूद के साथ एशियाई खेल 2026 के पदक विजेता नवरेम रोशिबिना देवी, जय मीना और सुचिका तरियाल हुड्डा भी शामिल हुए।
8: इस दौरान कनॉट प्लेस का इनर सर्किल वाहन मुक्त रहा और दिल्ली वासियों ने साइकिलिंग, योग, जुम्बा, बैडमिंटन, क्रिकेट, लोक नृत्य और अन्य गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन तथा सार्वजनिक स्थलों में जनभागीदारी को बढ़ावा देना था। श्री सूद ने कहा कि राहगीरी केवल व्यक्तिगत फिटनेस की पहल नहीं बल्कि यह समग्र रूप से दिल्ली के स्वास्थ्य और कल्याण का उत्सव है। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त माध्यम है क्योंकि यह न केवल वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान देती है बल्कि शारीरिक फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार शहर भर में समर्पित साइकिल ट्रैक विकसित करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुराग नामदेव।
1: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं के लिए EKYC अभियान शुरू किया। अभियान के अंतर्गत अधिकृत कर्मी घर घर जाकर उपभोक्ताओं की जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में जम्मू कश्मीर और राजस्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद आज तालकटोरा स्टेडियम में चौथी राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शामिल हुए। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज राहगीरी डे और संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों के कारण अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रही है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर तथा नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल है। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are important agendas for emerging and middle powers. Speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today, the External Affairs Minister said emerging and middle powers are from Global South and Global North who are united in their goal of being more relevant.
3: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
2: Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment for 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0. The event was organized in Guntur district in the presence of Chief Minister N. Chandrababu Naidu. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, under which 177 houses will be constructed at a cost of 14 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said the centre and the Andhra Pradesh government are working together to accelerate development across the state and make it the number one state in the country. Mr. Chauhan said the initial allocation proposed by officials was 76,000 houses. However, following Chief Minister Chandrababu Naidu's request to ensure that every poor family in the state gets a permanent home, the allocation was increased to 3 lakh houses. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday while counting of votes will take place on Friday. Principal Secretary too to the Prime Minister, Shaktikant Das has said that restoration of the health of the financial sector has been the defining feature of India's resilience in recent years. He said India's financial sector has emerged as a strong pillar of economic growth, supported by reforms such as the Insolvency and Bankruptcy Code, bank recapitalization and constructive regulatory oversight. He was speaking at the Kautilya Economic Conclave 2026 in New Delhi today. Mr. Das highlighted that the gross non-performing assets have fallen sharply to 1.68% in June this year, while bank profitability has improved significantly. The 7 OPEC Plus countries, Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman, have decided to maintain their September 20.

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 8:11 हो गए हैं और ये समय है एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम मधुरिमा का। मधुरिमा में आज की शाम मैं हूँ आपके साथ रेशमा, और कार्यक्रम का ये जो पहला गीत मैं सुनवा रही हूँ, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने जब लिखा फिल्म चिराग के लिए, तो उससे पहले फैज अहमद फैज से बाकायदे इजाजत ली कि उनकी गजल से ये लाइन तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है उठा सकें, और फिर धुन बनाने का जिम्मा दिया संगीतकार मदन मोहन को। मदन मोहन ने इस गीत के लिए राग झिंझोटी को चुना, और राग झिंझोटी पर ही आधारित या इसकी झलक लिए हुए गीत सुनवा रही हूँ मैं आज आपको मधुरिमा में। तो ये पहला गीत फिल्म चिराग से।

0: क्या है।
1: तो श्रोताओं, राग झिंझोटी का जादू ही कुछ ऐसा है कि 50, 60 और 70 के दशकों में संगीतकारों ने अपनी धुनों में इसका खूब प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के लोक गीतों का जो असर होता है, वैसा ही कुछ असर इस राग में भी है। तीसरी कसम फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत सुनिए और महसूस कीजिए वही असर।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी हाँ, FM गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और कार्यक्रम है ये मधुरिमा। मैं हूँ रेशमा और बात कर रही हूँ आज राग झिंझोटी की मधुरिमा में। तो श्रोताओं, राग झिंझोटी चंचल प्रकृति का राग है और इसमें ठुमरी और भजन भी खूब गाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों पर बेहद खूबसूरत लगने वाले इस राग से SD बर्मन ने फिल्म गाइड के लिए राग की लय थोड़ी और धीमी करके और दूसरी बार रफ्तार थोड़ी बढ़ा के दो गीत बना लिए थे। एक था मोहम्मद रफी की आवाज में क्या से क्या हो गया, और दूसरा ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, राग झिंझोटी के विस्तार के लिए मंद्र और मध्य सप्तक को उपयुक्त माना जाता है। रात के दूसरे पहर में गाए बजाए जाने वाले इस राग का वादी स्वर है गंधार और समवादी है निषाद। खमाज थाट से उत्पन्न इस राग में आरोह में निषाद वर्जित है, लेकिन अवरोह में कोमल निषाद लगता है। शेष सभी स्वर कोमल लगते हैं। और श्रोताओं, बात राग झिंझोटी की हो तो कार्यक्रम के आखिर में आइए वो गीत सुनते हैं जिसे गाकर मोहम्मद रफी अक्सर अपने स्टेज शोज का समापन करते थे। राग झिंझोटी में बंधा ही गीत मोहम्मद रफी ने फिल्म पगला कहीं का के लिए गाया था, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, और बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। और इसी गीत के साथ आज रेशमा को दीजिए अनुमति।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार फिर मौजूद हूं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे जापान एशियाई खेलों की, जिनका भव्य समापन समारोह के साथ आज हो गया है समापन। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा ने किया भारतीय दल का नेतृत्व। भारत ने 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए हासिल किया है चौथा स्थान। और कार्यक्रम में बात की जाएगी भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल खेले गए तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच की, जहां भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। और घरेलू क्रिकेट में रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को हराकर ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब कर लिया है अपने नाम। तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात एशियाई खेलों 2026 की, जो जापान के नगोया में आज आधिकारिक रूप से संपन्न हो गए। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपी गई। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत के लिए ये मौका कई मायनों में खास रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत न सिर्फ पदक तालिका में देश का मान बढ़ाया, बल्कि कई खेलों में वर्षों से चले आ रहे पदकों का सूखा समाप्त किया। ट्रैक एंड फील्ड से लेकर अपने सटीक निशानों तक कई रिकॉर्डों को ध्वस्त किया। साथ ही कबड्डी, क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों में जहां भारत की रीढ़ कही जाती थी, भारत और महिला और पुरुष टीमों ने कई नए कीर्तिमानों को स्थापित किया।
1: इंडिया विल विन गोल्ड, इंडिया हैज वन गोल्ड इन द वुमेन्स टीम रिकर्व इवेंट, अ फीट नेवर डन बिफोर, सेलिब्रेट दिस विन, ब्रीद इन दिस मोमेंट, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, फर्स्ट टाइम चैंपियंस, टू यंगस्टर्स in Kirti and Kumkum along with Ankita Bhagat are stepping onto the prime podium with gold.
2: Out ho gaye hain aur ye match Bharat ne jeet liya aur isi ke saath yahan aa gaya ek aur gold medal. Bharat ne ye muqabla jeet ke ek aur swarna padak hasil kar liya hai yahan.
3: Hits the target. So we've got gold with a gold in the women's individual trap event. This is absolutely fantastic.
4: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day. 15 under. She finishes overall India's first gold medal winner in golf.
5: Asian Games mein gold medal aa gaya hai Prabhu. Pehli baar hua hai ki men aur women dono hockey teams ne ek saath gold medal jeete ho. Los Angeles walo, swagat ki taiyari kar lo.
6: Now she comes down the track but misses a straight ball. That'll see.

0: किया है। बिग न्यूज कमिंग आउट ऑफ द 10K, गुलवीर सिंह हैज रेप्लिकेटेड हिज CWG फॉर्म, हैज वन अ सिल्वर इन द एशियन गेम्स फॉर इंडिया।
1: सुजीत कलकल, गुलवीर सिंह, वो तमाम खिलाड़ी और वो तमाम पल जो 19 तारीख से शुरू हुए इस पूरे आयोजन में लगातार सुर्खियों में रहे और एक के बाद एक अपने पदक से, अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया। 2 हफ्ते से अधिक चले इस आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों ने हर मैदान पर अपना दमखम दिखाया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया।
2: The Indian contingent. Let's talk about the Indian contingent. There was fantastic performances in boxing. 3 gold medals in boxing at this edition of the Asian Games.
3: Yeah, carrying forward their form from the Commonwealth Games. Lovlina, Ankush, Parveen Huda are 3 gold medal winners.
4: तीरंदाजी, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन तथा क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में 2-2 स्वर्ण पदक जीतने की बदौलत भारत ने जापान एशियाई खेलों का अभियान पदक तालिका में 4th स्थान के साथ समाप्त किया। ये पदकों की दृष्टि से भारत का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2023 चीन के हांगझाउ में भारत ने 106 पदक जीते थे। एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रैक एंड फील्ड पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 24 पदक जीते। निशानेबाज और तीरंदाजों ने भारत के लिए कई अहम पदकों पर निशाने साधे। निशानेबाजी में 3 स्वर्ण समेत 15 पदक और तीरंदाजी 5 स्वर्ण सहित 9 पदक जीते भारतीय खिलाड़ियों ने। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। कुश्ती में अमन शहरावत और सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही टीम खेलों में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। जापान में कई भारतीय खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड और ऐतिहासिक उपलब्धियां भी दर्ज की। 17 वर्षीय कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कुमकुम ने अंकिता और कीर्ति शर्मा के साथ महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में इन खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया, साथ ही नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में 56 साल और सीमा कुमारी ने महिलाओं की 10,000 मीटर में 16 साल के पदक के सूखे को समाप्त किया। बारानिका एंग्लागोवन ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पोल वॉल्ट खिलाड़ी बनी। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। भारत ने 1998 के बाद पहली बार भारोत्तोलन में पदक जीता। रोशिबीना देवी ने वुशु में लगातार 3रा महाद्वीपीय पदक जीता। वहीं 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने एशियाई खेलों के स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर नया इतिहास रचा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो वो तमाम खिलाड़ी जो पहले दिन से लेकर आज तक इस खेल की सुर्खियां रहे, हर मैदान को जीतने के साहस के साथ मैदान पे उतरे और अब इस पूरे खेल आयोजन पे और अधिक अपडेट के साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष मौजूद हैं स्टूडियो में। विशेष, खेल के मैदान में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है? तो भारत की ये तादाद, हालांकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, लेकिन कितना भारी पड़ा ये खिलाड़ियों का शानदार खेल।
5: शक्ति, अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें तो बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है, लेकिन अगर हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 से अगर तुलना करें तो भारत ने इस बार 85 पदक जीते हैं और तब 106 पदक अपने नाम किए थे। लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा कि 2023 में भारत की ओर से 650 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 499 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में हिस्सा लिया। तो अगर औसतन प्रदर्शन देखें तो इस बार का प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन कुछ मायनों में पिछले बार से भी बेहतर रहा है। लेकिन उससे खास फैक्टर जो इस बार एशियन गेम्स में भारत के लिए निकल के आए, सबसे सरप्राइज

0: अमेजिंग फैक्टर क्या कहे जाएं और किस तरह से नए खेलों ने भारत को नई उम्मीद दी है।
1: शक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि नए खेलों में भारत अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाए और उसी को ध्यान में रखते हुए कुराश, एमएमए, रोइंग, सेलिंग, वुशु और सेपक टकरा जैसे खेलों में पदक जीतकर भारत ने इन खेलों में अपनी एक नई पहचान बनाई है।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम जो अपने परंपरागत खेल जिसमें भारत की रीढ़ मानी जाती है, वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वहाँ तो बेहतर कर ही रही है, लेकिन साथ ही अपने बेहतर प्रदर्शन से नए दरवाजे खोल रही है पदक तालिका में ऊपर की ओर छलांग लगाने के लिए। आपने नए खेलों की बात की, इसी में एक खेल स्क्वाश रहा भारत के लिए काफ़ी युवा खिलाड़ी अनाहत। इसके पहले जब चीन में एशियाई खेल हुए थे तो महज 14 वर्ष की आयु में वो भारत के लिए सबसे युवा पदक विजेता बनी थी। इस बार उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
1: बिल्कुल शक्ति, स्क्वाश में अनाहत सिंह का ये जो इवेंट रहा, ये पहला सीनियर इवेंट था उनका और उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बेहतरीन प्रदर्शन किया वहां अभय सिंह ने, जिन्होंने मेन सिंगल्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और इसके साथ साथ मेन, वुमेन और मिक्स टीम ने भी भारत ने कांस्य पदक जीता। तो स्क्वाश में कुल मिला के भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।
0: जी बिल्कुल, काफ़ी कम उम्र की ये जूनियर विश्व चैंपियन खिलाड़ी जो बीते कुछ वर्षों से लगातार मिस्र की स्थापित चुनौती को ध्वस्त करने का काम करते आ रही है, ऐसा ही यहाँ पर किया। लेकिन अगर इस कैंपेन की बात होगी तो सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे मजबूत फैक्टर रहा एथलेटिक्स। भारतीय खिलाड़ियों ने कई वर्षों से कॉलम्स खाली थे, 50-50 साल से हमने उन इवेंट्स में पदक नहीं देखे थे, इस बार हमने ऐसे कई कीर्तिमानों को ध्वस्त होते हुए देखा।
1: बिल्कुल शक्ति, अगर हम चाइना, जापान और कोरिया की बात करें तो उनके सबसे ज्यादा मेडल आए हैं स्विमिंग में, लेकिन अगर हम भारत की दृष्टिकोण से देखें तो एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा कुल 24 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज शामिल है। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर, 10000 मीटर और 1500 मीटर में पदक जीते। वहीं नीरज की गैर हाजिरी में यशवीर सिंह और रोहित यादव ने जो पदक दिलाए हैं भारत को, उससे काफी नई उम्मीदें मिली हैं भारत को कि जेवलिन थ्रो सिर्फ नीरज चोपड़ा पर टिका हुआ नहीं है। और खिलाड़ियों की बात करें शक्ति, तो सर्वेश कुशारे, मुरली श्रीशंकर, तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट में, तेजस्विन श्रीशंकर, विद्या रामराज जैसे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है।
0: जी बिल्कुल, आपने तेजस्विन श्रीशंकर की बात की, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी स्पर्धा खेलते हैं जो कह सकते हैं कि अगर एथलेटिक्स को सभी खेलों का क्वीन माना जाता है तो वो इस एथलेटिक्स की क्वीन है। सभी स्पर्धाओं को मिलाते हैं और जब भी मैदान पे उतरते हैं, नई उम्मीद, नया जोश और नया जज्बा, यही है नए भारत की उम्मीदें। और ये तमाम खिलाड़ी जो आगे चल के और बड़े प्लेटफॉर्म पे और बड़े मंचों पे भारत के लिए पदक की और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की नई उम्मीदों को खोलेंगे। और एशियाई खेलों के बाद अब बात क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबले में कल भारत को वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने नाबाद 162 रन की पारी खेलते हुए टीम के लिए जीत के दरवाजे खेले और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि भारत ने यह श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारत ने श्रृंखला की शुरुआत के दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे, शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो विशेष भारत के लिए हालांकि आखिरी मैच थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन यहां से भारत की नजर हर मैच बढ़ रहा है 2027 विश्व कप जो एकमात्र लक्ष्य है। कितना अपनी तैयारियों का आकलन करने में टीम सफल रही होगी इन 3 मुकाबलों में।
1: शक्ति, अगर इन 3 मुकाबलों में देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजी ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। हर मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, दूसरे मुकाबले में रिकॉर्ड रन चेज भी करी भारत ने और तीसरे मुकाबले में भी शुरुआत में 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार साझेदारी करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उसके बाद केएल राहुल ने 129 रन की धमाकेदार पारी खेली और शानदार प्रदर्शन किया। यह वनडे क्रिकेट में 8वीं बार है शक्ति जब दोनों विकेटकीपर बल्लेबाजों ने एक दिवसीय मुकाबले में शतक लगाया हो। नमन धीर ने आखिरी में कुछ रन बनाकर भारत को और मजबूत स्थिति दी, लेकिन गेंदबाजी के दृष्टिकोण से देखें तो यह सीरीज हमारे लिए काफी निराशाजनक है, क्योंकि हर मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन जो है खराब रहा है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि काफ़ी औसत प्रदर्शन और काफ़ी महंगे साबित होते हुए नज़र आए भारतीय खिलाड़ी। और क्या है, दूसरे मैच में 400 का स्कोर पार होना हो या फिर यहाँ पर 350 के ऊपर के लक्ष्य को डिफेंड ना कर पाना, भारतीय टीम जब वापस आकलन करेगी उन तमाम खेमों का जहाँ पर टीम को काम करने की ज़रूरत है, तो कह सकते हैं कि इन पर नज़र होगी। लेकिन दो खिलाड़ी जब भी भारतीय टीम एक दिवसीय मैच खेलती है तो सबकी नज़र होती है रोको की जोड़ी पर, रोहित शर्मा और विराट कोहली कितना साबित करते हुए अपने आप को नज़र आए।
1: शक्ति, रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर रहे हैं और

0: इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अभी भी अच्छी फॉर्म में बरकरार हैं। रोहित शर्मा ने एक शतक लगाया, 92 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने भी एक मुकाबले में शतक जमाकर सबको ये बताया है कि वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं।
1: जी बिल्कुल, और वो दूसरे मुकाबले में शतक के बाद रोहित शर्मा का वो शानदार फिटनेस का संदेश देता हुआ सेलिब्रेशन, जो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि उनकी तैयारियों को बताता है। और अब घरेलू क्रिकेट की बात कर ली जाए, जहां मुकेश कुमार के 6 और आकाशदीप के 3 विकेट की बदौलत रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। आज फाइनल और मुकाबले के 4थे और अंतिम दिन रेस्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को 167 रन से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ 4थे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
3: There are countries who are emerging.
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: Really is a point of convergence.
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
4: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
5: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
2: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि एक क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणि मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
7: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत जीरो FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले एफआईआर करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो एफआईआर को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
0: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
2: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
0: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरु मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
3: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी

0: of discipline, resilience, and the courage to dream. And perhaps that is the greatest lesson the games leave with us. Mr. Rajaraman, thank you very much for sparing your valuable time and sharing such insightful thoughts with us.
1: Thank you very much. You were listening to a discussion on Asian Games 2026, India's rise on the continental stage. The participants were G. Rajaraman, senior sports journalist, and Sarabjit Kaur, anchor. This program is produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
2: Spotlight.
3: यह आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक मन के मौसम उम्र के साथ।
4: सूरज हर सुबह लगभग एक ही जगह से उगता है, लेकिन हर उम्र में उसकी रोशनी एक जैसी नहीं लगती। कभी वही सुबह एक नई शुरुआत लगती है, तो कभी वही सुबह एक बहुत लंबा दिन।
5: उम्र बढ़ती है तो शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं। बालों में सफेदी, चाल में धीमापन, चश्मे का नंबर, दवाइयों की संख्या, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक्सरे नहीं पकड़ता।
4: काम से रिटायर होने के बाद खाली हुआ समय, बच्चों के घर से चले जाने के बाद खाली हुआ कमरा, जीवन साथी के जाने के बाद खाली हुई कुर्सी, और धीरे धीरे कम होती बातचीत के बीच मन में पैदा हुई एक खामोशी।
5: हम अक्सर पूछते हैं उम्र कितनी हो गई, लेकिन शायद एक और सवाल पूछा जाना चाहिए, उम्र के इस पड़ाव पर मन कैसा है? क्योंकि उम्र बढ़ना केवल शरीर की कहानी नहीं है,
4: ये रिश्तों की कहानी है, भूमिकाओं की कहानी है, पहचान की कहानी है, और साथ ही बिछोह की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये सुने जाने की कहानी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हम इसी अनकहे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
5: दिल्ली स्थित एक प्राइवेट ओल्ड एज होम से कुछ आवाजें और कुछ आवाजें सुदूर बिहार से।
6: मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी, इलाहाबाद से आए हैं। हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। म्यूजिक इज माय हॉबी, बोंगो कोंगो। हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा था वहाँ। इलाहाबाद में अब कोई है ही नहीं मेरा। हमारे दो डॉटर्स हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। लड़कियों की शादी हो गई, वाइफ की डेथ हो गई।
7: माय नेम इज कृष्णा मिश्र। आई यूज्ड टू लिव विद माय डॉटर, बट शी हैज एक्सपायर्ड। आई केम हियर, आई फील वेरी लोनली। जनरली आई लाइक टू वॉच टीवी एंड लाइक टू स्टोरी बुक।
8: मेरा नाम है विजेंद्र सिंह शेखावत, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ चौदह से, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उनकी देख रेख जैसे रात बिरात हारी बीमारी होती है, 10 का मेरे स्टाफ है। नहीं ऐसे को नहीं, सभी आते हैं, एक दो दिन तो उनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ पर माहौल में डल जाते, सब खुश रहते, एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर टीवी देखते हैं, न्यूज पेपर देखते हैं, यहाँ कीर्तन भाव होते हैं हफ्ता में एक दिन। कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट आते हैं, वहाँ डांस करते हैं, तमल्ला खिलाते हैं, अंताक्षरी करते हैं, गाने सुनाते हैं, तो उनका अच्छा टाइम पास हो जाता।
9: मेरा नाम बेबी सिन्हा है, मैं खगड़िया चित्रकूट नगर डीएवी रोड से हूँ।
2: मैं यहाँ पर इतने

0: लड़का के नाम से स्कूल खोली हुई हूँ। मैं अकेले अपने घर में रहती हूँ, तो स्कूल खोलने का मकसद मेरा यही था कि बच्चे के बीच में रहूंगी, मैं खुश रहूंगी।
1: मेरा नाम श्यामा कांति सिन्हा है, मेरी उम्र 69 बरस है। मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ अपने पति के साथ अकेले। मैं पहले सर्विस करती थी, अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अकेले तो नहीं रहती हूँ। कभी कभी बहुत मुश्किल होती है, गिर जाती हूँ मैं भी, मेरा पति भी, पूरे दिन

0: कर गई मैं भुलावे कौ बटन हिमल तारा कौन से रास्ते जान किस मोड़ पर कब बिछड़ कर मेरा बागपन रह गया पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ बस गई उम्र का आकलन रह गया पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ पत्ते झरने लगे बूढ़ा बरगद हुआ।
1: भारत को लंबे समय तक युवा देश के रूप में देखा गया, लेकिन अब भारत की जनसंख्या की तस्वीर बदल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी का हिस्सा 2021 में लगभग 10.1% अनुमानित था और 2031 में 13.1% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था।
2: और इससे आगे की तस्वीर देखें तो UNFPA की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 2022 के 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8% होने का अनुमान है। यानी आने वाले दशकों में भारत में हर 5 लोगों में लगभग एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो सकता है।
1: ये सिर्फ जनसंख्या का बदलाव नहीं है, ये परिवार की संरचना बदलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बदलेगा, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बदलेगा और मानसिक स्वास्थ्य की हमारी समझ को भी बदलना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि हम कितने लोगों को लंबी जिंदगी दे पाएंगे, सवाल ये भी है कि क्या हम उस लंबी जिंदगी को अर्थपूर्ण, सम्मानजनक और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ बना पाएंगे। कई वर्षों तक भारत में और वर्तमान में दोहा कतर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
3: केयर सिस्टम है ना इंडिया में चेंज हो रहा है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, वो अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में तब्दील हो रहा है। केयर टेकर्स थे पहले के कंपैरिजन में कम हो रहे हैं एक्चुअली। दूसरा है कि जो चीजें उनके अंदर होती है, एंजाइटी है, जो लोनलीनेस है, जो फॉरगेटफुलनेस है, डिमेंशिया से रिलेटेड चीजें होती है, जो उनका लॉस है, जिसमें लॉस ऑफ पार्टनर है, इस चीजों के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है तो उनका गुस्सा खुद की तरफ होने लगता है, लेकिन जब गुस्सा बाहर की तरफ होता है तो फिर वो फाइट की स्पिरिट में दिखता है कि अपने राइट्स के लिए लड़ना, स्पेस के लिए लड़ना, अपने इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए लड़ना, मतलब आई एम समथिंग, ये सेल्फ हो जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसको फैमिली वाले अलग वे में ले लेते हैं कि अच्छा इस उम्र में इतना ईगो दिखा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअली में, जिसको फैमिली वाले को समझना ये चाहिए कि नहीं, स्टिल ही इज हैविंग फाइटिंग स्पिरिट, द लाइफ इज देयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने साल तक जीते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि इन सालों में जिंदगी कितनी थी, उस जिंदगी को भरने की जरूरत होती है एक्चुअली में।
2: पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति की पहचान कई भूमिकाओं से बनती है। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापारी, गृहिणी, माता पिता, फिर एक दिन नौकरी या सेवा समाप्त होती है और उसके साथ सिर्फ वेतन या खुद की भूमिका ही नहीं ठहरती, कभी कभी दिनचर्या भी रुक जाती है। सहकर्मियों से रोज का मिलना रुकता है, निर्णय लेने की आदत बदलती है और व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, अब मैं कौन हूँ?
1: ये प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य, सामाजिक संबंध और अपनी भूमिका का एहसास भी चाहिए।
2: अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति परिवार के बीच भी रहकर भीतर से बहुत अकेला महसूस कर सकता है और कोई व्यक्ति अकेला रहकर भी अपने जीवन से संतुष्ट हो सकता है।
4: मेरा नाम

0: हसरत भगत है। मैं प्लस टू विद्यालय स्थानीय खगड़िया स्टेशन रोड से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अभी अकेले घर में रहता हूँ। मेरी पत्नी शिक्षिका थी, 2013 में एक्सपायर कर गई। तीन बच्ची है, तीनों बच्ची की शादी हो गई है। एक लड़का है, वह बीटेक करके बीपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन घर में मैं अकेला रहता हूँ। अकेलापन तो अनुभव होता है, लेकिन साथी लोग हैं, इसलिए हम लोग का समय बड़ी आसानी से कट जाता है। थोड़ा अध्यात्मिक होने के कारण और विभिन्न संस्था से जुड़े रहने के कारण मेरा पर्सनल लाइफ ठीक है। बुनियादी केंद्र में ये हम लोगों का एक मनोरंजन होता है। मैं खुश हूँ अपने लाइफ से।
1: WHO के अनुसार दुनिया में लगभग हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति लोनलीनेस का अनुभव करता है। वृद्ध लोगों में लगभग 11.8% लोनलीनेस का अनुमान दिया गया है। WHO ये भी रेखांकित करता है कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गजीविटी से है। और सोशल आइसोलेशन इससे अलग अवधारणा है। यहाँ व्यक्ति के सामाजिक संपर्कों और रिश्तों की संख्या और गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है।
2: कभी कभी कितने लोग हैं ये समस्या नहीं है, बल्कि कितने लोग हैं जिनसे मन की बात की जा सकती है। यही वो जगह है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर नवाब खान कहते हैं,
3: ये चीज जो स्टडीज से रिफ्लेक्ट हुई है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपने पार्टनर के खोने से होता है, बाकी स्ट्रेस सब उसके नीचे आते हैं। इवन अगर जो लोग ओल्ड एज में रहते हैं, उनके दोस्त हैं और उनकी नजरों के सामने अगर कोई जाता है, दे फील वेरी वेरी सैड एंड बैड। अल्टीमेटली उनको ये फील होता है कि मेरा नंबर आ रहा है। जिस वक्त इंसान को ये फीलिंग होने लगे कि मेरा नंबर आ रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उसके पास से, तो इनोवेशन खत्म हो जाते हैं, एक दो जील जो जीरे की होती है वो खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। हर कम्युनिटी में उम्र के साथ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है वो आते ही आते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर ले, तब भी एक जो कम्युनिटी का रोल होता है, जो एक रिलेटिव्स का रोल होता है, जो एक दोस्तों का रोल होता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: भारत में पारिवारिक संरचना भी बदल रही है। माइग्रेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, परिवार छोटे हुए हैं, बच्चे शिक्षा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों या दूसरे देशों में चले जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सोशल सपोर्ट की आवश्यकता कम नहीं होती।
2: इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार जब वृद्ध लोग अपने वयस्क बच्चों के साथ नहीं रहते तो लिविंग अरेंजमेंट में जेंडर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं।
1: यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। उम्र के बहुत आगे के पड़ावों पर विडोहुड और अकेलेपन का जोखिम महिलाओं में अधिक हो सकता है।
2: UNFPA की रिपोर्ट विशेष रूप से एजिंग के फेमिनाइजेशन की ओर ध्यान दिलाती है, यानी वृद्ध आबादी में महिलाओं का बढ़ता अनुपात और उनके साथ जुड़ी आर्थिक या सामाजिक वल्नरेबिलिटीज।
1: इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एक समान समूह मानकर नहीं देखा जा सकता। एक अकेले रहने वाले पुरुष का अनुभव अलग हो सकता है, महिला का अलग, ग्रामीण बुजुर्ग का अलग और शहर में अकेले रहने वाले वृद्ध का बिल्कुल ही अलग। और आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अनुभव भी आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकता है। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
4: भारत में बुजुर्गों की मानसिक सेहत और इलाज से जुड़े आंकड़े गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS के देश के सबसे बड़े सर्वे जो अब तक हुआ है, लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया यानी लासी LASI की रिपोर्ट के मुताबिक, और आपको बता दूं कि बुजुर्गों की मानसिक सेहत से जुड़े ये आंकड़े मुख्य रूप से लासी वेव 1 रिपोर्ट से लिए गए हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 जनवरी 2021 को जारी किया था। ये आंकड़े देख लेने चाहिए, इससे हमें समस्या कितनी गंभीर है और कितना ज्यादा और काम किया जाना बाकी है इससे पता चलता है। तो आंकड़े इस तरह हैं कि भारत में लगभग 20% वरिष्ठ नागरिक 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो किसी न किसी तरह

0: कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मनोरोग से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद बुजुर्गों में ये आम समस्या हो गई है। आंकड़े देखें तो लगभग 41.7% बुजुर्गों ने किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन के लक्षणों की शिकायत की है, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 7.4 बुजुर्ग, ये संख्या बैठती है लगभग 88 लाख। महिलाओं में ये खतरा ज्यादा रहता है। बुजुर्ग पुरुषों के मुकाबले बुजुर्ग महिलाओं में मानसिक तनाव और डिप्रेशन की दर ज्यादा देखी गई है। इसकी जो खास वजह है वो एकाकीपन और आर्थिक निर्भरता है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों में अवसाद के लक्षण ज्यादा पाए गए हैं, क्योंकि वहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी अपेक्षा के हिसाब से कम है।
1: LASI के विश्लेषण में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में प्रोबेबल मेजर डिप्रेशन की प्रेविलेंस 9.4% तक दर्ज हुई। 60 से 64 वर्ष में ये 8.3% थी।
2: एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। LASI में सिम्टम बेस्ड असेसमेंट से डिप्रेशन का स्तर सेल्फ रिपोर्टेड डायग्नोसिस की तुलना में कहीं अधिक पाया गया। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है। क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या कम है या हम उसे पहचान कम रहे हैं? यही इस कार्यक्रम की केंद्रीय चिंता भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को बीमारी मानकर ही नहीं देखता तो वो मदद लेने कैसे जाएगा?
1: और अगर परिवार हर उदासी को उम्र का असर है कहकर टाल देता है तो पहचान और उपचार की संभावना और कम हो जाती है। रवि पाराशर।
0: भारत में लगभग 8% बुजुर्ग ऐसे हैं जो गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद इस बीमारी की जानकारी नहीं है। ये भी एक गंभीर बात है। इसकी जो खास वजह है वो सामाजिक संकोच है। वो ये बताना नहीं चाहते दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, कि वे उन्हें कोई मानसिक समस्या है। एक और बड़ी वजह रिपोर्ट में पाई गई है कि मानसिक सेहत की जांच करने वाले और इलाज करने वाले डॉक्टरों की अभी कमी है। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है और लगातार काम जारी रहेगा, ऐसा मुझे अपने अनुभव के आधार पर लगता है।
2: उम्र बढ़ने के साथ मानसिक स्वास्थ्य को केवल मानसिक बीमारी के संदर्भ में देखना भी अधूरा होगा। उम्र के साथ साथ फिजिकल लिमिटेशंस भी बढ़ती हैं। 60 प्लस के लोगों में लगभग 23.8% को कम से कम एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशन और लगभग 48% को इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में कम से कम एक लिमिटेशन दर्ज की गई है।
1: अब जरा इसे एम्फैटिकली यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों के लिए दूसरे की मदद चाहिए, जब चलने फिरने की स्वतंत्रता कम हो, जब सुनने या देखने में कठिनाई हो, जब दर्द लगातार साथ हो, तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, व्यक्ति की ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंस और सोशल पार्टिसिपेशन भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हुए फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस को अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवाब खान।
3: बुजुर्गों में एक उम्र के बाद सुनने की जो ताकत होती है थोड़ी कम हो जाती है, कभी कभी विजन पे असर हो जाता है, और आप हम लोग ये सब जानते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी पे भी असर पड़ता है। सब पे ना हो, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन पे ऐसा काम होता है। जब आपके सुनने की, देखने की, याद करने की क्षमता में कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर ट्रस्ट का इश्यू आता है कि किस पे ट्रस्ट करें। कभी कभी आपकी मेमोरी आपका साथ नहीं दे रही होती, तो मेमोरी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर आपने खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है तो फिर आपको याद भी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर चैट की जरूरत होती है, तो प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। और इस हालत में बुजुर्गों को खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कुछ चीजें आप रखिए फिर भूल जाते हैं, या किसी ने कुछ बात कही तो हमको शक हो ऐसे शायद ये मेरे बारे में बोल रहा है। दे स्टार्ट ओवर हियरिंग एवरीथिंग, दे स्टार्ट रेफरिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग, जो पेनफुल हो जाता है बात के। और ये जेंडर से एक्चुअली चेंज नहीं होता है, दोनों जेंडर के लिए इक्वली इन चीजें एप्लीकेबल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन मतलब थिंकिंग पैटर्न, उससे रिलेटेड इमोशन और उससे रिलेटेड बिहेवियर, इन तीनों चीजों को एक लॉजिकल वे में रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो ठीक है, तो मे बी ऐसी ही मेरी जिंदगी थी और ऐसा ही होना था, इसलिए हो रहा है ये, तो इसलिए स्टार्ट ब्लेमिंग असर्ट। एक्चुअली हम ही इसको फेथ को ओन करते हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम ही ओन करते हैं और हमको ये करना ही होगा, बट सिचुएशन कुछ भी और हो सकती है। तो ये जो कॉग्निटिव एरर्स हो जाते हैं उसको एक जेंटली मोर लॉजिकली चैलेंज करके रिस्ट्रक्चर करने का तरीका है। लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब पेशेंट या पर्सन जो है, बोले आप, या ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर लॉजिकल एबिलिटी हो समझने के लिए कि इसका ये अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये अल्टरनेटिव कॉज भी हो सकता है।
2: मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और पक्ष अक्सर पीछे छूट जाता है, वो है आर्थिक सुरक्षा।
1: अब जरा सोचिए, अगर उम्र बढ़ने के साथ आय का स्रोत समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य खर्च बढ़ जाए, दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़े और व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाए, तो आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव के बीच दूरी कितनी रह जाती है।
2: इसीलिए वृद्धावस्था का मानसिक स्वास्थ्य केवल काउंसलिंग का विषय नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और डिग्निटी का भी विषय है। यानी समाधान केवल ये नहीं कि बच्चे अपने माता पिता से फोन पर बात करें, जरूरत इससे बड़ी है कि ऐसे मोहल्ले हों जहां बुजुर्ग सुरक्षित होकर निकल सके, ऐसे पार्क हों जहां बैठने की जगह हो, ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हो जिसका उपयोग वृद्ध आसानी से कर सके,
1: ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हों जहां वे केवल लाभार्थी नहीं सहभागी हों, और ऐसी सामाजिक गतिविधियां हों जिनमें उम्र बाधा न बने, क्योंकि किसी व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते उसकी मानसिक सेहत का हिस्सा हैं।
2: एक सवाल और है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य को केवल बीमारी के उपचार के रूप में देखा जाए या उसमें सोशल पार्टिसिपेशन, लोनलीनेस प्रिवेंशन, कम्युनिटी सपोर्ट, काउंसलिंग, ऑटोनॉमी और डिग्निटी जैसे विषयों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो लोनलीनेस प्रिवेंशन भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का एक हिस्सा होना चाहिए।
1: और अगर रिटायरमेंट आइडेंटिटी को बदलना है तो मीनिंगफुल एंगेजमेंट भी एजिंग पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। लंबे समय से भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर।
0: सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी बुजुर्गों को मिलना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो शहरी इलाकों में रह रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रमों में रह रहे हों। और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है कि वहां के जो प्रधान होते हैं और सरपंचों को, उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, इनसे सीधे जोड़ा जाना चाहिए। और शहरी इलाकों में जो सबसे निचली इकाई है, मोहल्लों के वार्डों के जो पार्षद हैं, उनके जिम्मे ये काम किया जाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए बल्कि। और कुछ सरकारी योजनाओं का जिक्र यहाँ करना सही रहेगा। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना ऐसी है कि 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को, देश भर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है, जिसमें मानसिक समस्याओं का इलाज भी शामिल है। दूसरी योजना है टेली मानस, ये मानसिक सेहत से जुड़े परामर्श के लिए, सलाह मशवरे के लिए सरकार की 24 घंटे सातों दिन चलने वाली हेल्पलाइन सेवा है। ये बुजुर्ग इस पर कॉल करके मुफ्त मानसिक सलाह ले सकते हैं। इसके नंबर दो हैं, एक है 14416 और दूसरा नंबर है 1800-89-14416। और अच्छी बात यह है कि यह सेवा जो है वो हिंदी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। बिना संकोच किए आप फोन घुमाइए, अगर दूसरों को नहीं बताना चाहते, अकेले में सलाह लेना चाहते हैं, अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो फोन पर बात कर सकते हैं। एक और नंबर है जिसको एल्डर लाइन कहा जाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, वो है 14567। ये आसानी से याद भी किया जा सकता है, 14567। इस पर कॉल करके बुजुर्गों को न केवल मानसिक मदद मिलती है, मानसिक समस्याओं से जूझने में मदद मिलती है, बल्कि पेंशन, कानूनी विवाद और पारिवारिक समस्याओं में भी ये यहाँ पर सलाह मशविरा और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी

0: सरकार ने जगह जगह स्थापित किए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर बुजुर्गों को बुनियादी सलाह मशविरा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाएं यहाँ इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP इसके तहत जिलों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श दिया जाता है। वयोवृद्ध जन कल्याण योजनाएं भी हैं, सरकार चलाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें चलाता है। इसके तहत डे केयर सेंटर, आश्रय और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं अगर घर पर आपको परामर्श चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये सभी हेल्पलाइन सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं और 2400 घंटे उपलब्ध हैं। ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भारत में मानसिक बीमारी के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में एक कानून बनाया गया था और आयुष्मान भारत यानी पीएम जय के नियमों के तहत बेहद सुगम और मरीज के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तैयार किया गया है।
1: आंकड़े जरूरी हैं, वो हमें समस्या का आकार बताते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि किसी शाम अकेले कमरे में बैठना कैसा लगता है, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पहली रात कैसी होती है, रिटायरमेंट के बाद सोमवार और रविवार में फर्क क्यों मिट जाता है, या जब परिवार कहता है आप आराम कीजिए तो कभी कभी उस वाक्य के पीछे छुपा संदेश कैसा महसूस हो सकता है।
2: इसीलिए इस वर्ष की थीम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज एक महत्वपूर्ण दिशा देती है। सिर्फ लोगों के बारे में बात मत कीजिए, लोगों को बोलने की जगह दीजिए। मन के मौसम बदले जा सकते हैं, उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन अकेलापन हमेशा अनिवार्य नहीं।
1: शायद उम्र का सबसे कठिन मौसम वो नहीं होता जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है, सबसे कठिन मौसम वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि उसकी जरूरत कम हो गई है, जब बातचीत उसके बारे में होती है लेकिन उससे नहीं, जब उसके लिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछी जाती, जब उसके पास घर होता है लेकिन संवाद के लिए कोई नहीं, जब उसके पास परिवार होता है लेकिन अपनापन नहीं, और जब उसके भीतर बहुत कुछ कहने को होता है सुनने वाला कोई नहीं।
2: हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत तेजी से एजिंग सोसाइटी बन रहा है। वे बताते हैं कि डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस वास्तविक और गंभीर चिंताएं हैं।
1: लेकिन एक आंकड़ा कभी किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं होता, इसलिए शायद अब समय है कि हम सवाल बदलें। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या परेशानी है, कभी पूछें आप इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं।
2: ये पूछने की बजाय आपको किस चीज की जरूरत है, कभी पूछें आप अभी भी क्या करना चाहते हैं।
1: और ये मान लेने के बजाय कि उम्र के साथ मन के रंग फीके पड़ जाते हैं, उसे फिर से रंगने के लिए एक जगह बनाते हैं, क्योंकि मन भी मौसम की तरह है, उसमें पतझड़ आता है तो वसंत भी आ सकता है, कभी बादल घिरते हैं तो धूप भी लौटती है।
2: जरूरत सिर्फ इतनी है कि खिड़कियाँ बंद न कर दी जाए, किसी के मन की खिड़की खुली रहे, कोई वहाँ से आती आवाज तो सुन सके, रुके, बात करे और कहे कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ।
1: क्योंकि शायद मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी सुना जाना है। किसी उम्र में जीवन समाप्त नहीं होता, हर उम्र में एक नया मौसम आने की गुंजाइश हमेशा रहती है,
2: और ये नया मौसम हर किसी के जीवन में आए ऐसी हमारी कामना है।
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित रूपक मन के मौसम उम्र के साथ। आलेख डॉक्टर बानी आनंद, वाचन स्वर हर्ष रंजन, नवोदिता मिश्रा, रमेश शर्मा की गीत पंक्तियों को स्वर दिया ओम प्रकाश मिश्र ने, प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह और सुमन ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता

0: नवोदिता मिश्रा केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence.
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3 लाख घरों की पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले के में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉर्पोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का प्रभाव अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वितीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का आदर्श आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इसमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थत्तन चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वे अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नगोया में आधिकारिक समापन हो गया। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू डांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया और भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तथा 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक सहित कुल 85 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the repositioning of the United States, the rise of China and growing global interdependence.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
3: Dr. Jaishankar has emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. The External Affairs Minister stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. He said India-Russia relations are shaped by that legacy in many ways. He said the bilateral relationship has widened beyond that today, and it is very much an economic relationship as well. Dr. Jaishankar said there are military, nuclear and space components along with significant amount of trade and investment between the two countries. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was present on the occasion. Addressing the gathering, the Union Minister described the 3D concrete printing project as a major step towards modernizing rural housing. Campaigning ended today for by-elections to 5 assembly constituencies across Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and one Lok Sabha constituency in Assam. Polling for the 6 seats will be held on Tuesday, while counting of votes will take place on Friday. The assembly constituencies going to poll are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat became vacant after the resignation of Congress leader Pradyut Burdalui. Indian Ambassador to UAE Deepak Mittal has said prayers continue to flow in for good health of Captain Smith Nachar. In a social media post, Ambassador Mittal said he is recovering well and in good spirits. He added that the embassy remains in touch with the local authorities and the family is extending all possible assistance. Iran has said that the Strait of Hormuz will not reopen until the United States meets 7 conditions outlined in a June interim agreement, as Tehran and Washington remain at odds over efforts to end their conflict. Iranian state media today quoted Parliament Speaker Mohammad Bagher Qalibaf as saying that Tehran's position on reopening the strategic waterway was completely clear and firm. Separately, Iranian army spokesperson Mohammad Akramania said Iran will seek to extend the range of its missiles following its recent war with the United States. The curtain has come down on the Asian Games with their dazzling closing ceremony at Aichi Nagoya in Japan, bringing more than 2 weeks of action-packed competition across 43 disciplines to an end. The ceremony featured the traditional parade of athletes, the lowering of the Asian Games flag, and the formal handover of ceremonial torch and flag to Doha, the host city for the 2030 edition. Proudly carrying the Indian tricolour for the closing ceremony was India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda.

0: That is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ईरान ने कहा, अमरीका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले किए। हूती ने रियाद में आरामको तेल संयंत्र पर हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
2: There are countries who are emerging.
3: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence.
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया ने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के हवाले से बताया कि रणनीतिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के बारे में ईरान की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट और दृढ़ है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। इस संघर्ष से ही आवश्यक हो गया है कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करे। उन्होंने कहा कि देश पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
4: हुती विद्रोहियों के दियात पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हुती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हुतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अल बहा में हुती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन

0: में 260 हुती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ओपेक प्लस के 7 देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने नवंबर में भी सितंबर 2026 वाले उत्पादन कोटे को जारी रखने का फैसला किया है। यह फैसला 4 अक्टूबर को हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा की। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक चिंताएं और राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रमुख मुद्दे हैं। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के 45 वर्षीय बेटे और सीनेटर फ्लैवियो बोल्सोनारो अपने परिवार के दक्षिणपंथी आंदोलन को वापस सत्ता में लाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य भागों पर हमले तेज करने की चेतावनी दी है। रूस के तेल शोधन कारखानों पर हमले तेज करने के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बयान के बाद ये चेतावनी आई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, रक्षा उद्योगों और संबंधित बुनियादी ढांचों पर हमले तेज करेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ लंबा मार्च शुरू किया। सरकार के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद ये कदम उठाया गया है। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वज वाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
2: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। यमन ने साना और शतादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले किए। हूती ने रियाद में आरामको तेल संयंत्र पर हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न। भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 21 स्वर्ण पदक सहित

10:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम हर सिंगार आपके साथ मैं विकास।

मीर तकी मीर की शायरी से मजरू सुल्तानपुरी ने एक टुकड़ा लिया और इस बेहतरीन नगमे को अंजाम दिया। फिल्म का नाम था एक नजर। 1972 की ये फिल्म है। पर्दे पर जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और पर्दे के पीछे आवाजें रवि साहब और लता मंगेशकर की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत और बेहतरीन बेहतरीन नगमा, जिसे मैं जानता हूं कि आप भी जब ये गीत आप तक पहुंच रहा था ना, तो आप गुनगुनाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, है ना। प्रोग्राम का अगला गीत पहुंचता है आप तक रफी साहब की आवाज में। फिल्म का नाम है सीमा। पहले गीत सुनते हैं, उसके बाद इस गीत की जो खासियत मुझे पर्सनली लगी जब मैं इस गीत को सुन रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे आपसे बात करते करते मुझे अचानक से ये एहसास हुआ कि आज मैं स्टूडियो में बहुत सारे पत्तों वाली एक टी शर्ट पहनकर आपके बीच मौजूद हूँ। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ और ये प्रोग्राम है हर सिंगार।

0: रफी साहब की आवाज थी। फिल्म का नाम सीमा, 1955 की ये फिल्म थी। जब गीत को मैं सुन रहा था तो मेरी ना आदत है कि मैं अक्सर गीत को सुनते सुनते ये कोशिश करता हूँ कि एक गेस मार लूँ कि ये आखिर गाना किसने लिखा होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग भी ऐसा कुछ करते हों, संगीतकार के तौर पर या गायक के तौर पर। तो मुझे लगा कि ये शायद शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंदाज शैलेंद्र साहब का इस गीत में झलका। लेकिन जब इस गीत की डिटेल्स देखी तो ये गीत हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ पाया। इसमें एक बेहद प्यारी सी लाइन मुझे अच्छी लगी जो कि छू लेती है एक मन को। लिखते हैं कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। कितना गहरा एक एहसास है इस लाइन में कि अगर किसी का पेट भरा हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है। फिल्म की बात करूं तो इसमें शोभा खोटे की ये फिल्म जो थी पहली फिल्म थी, और सीमा जो 1955 में आई थी इसी नाम की एक और फिल्म जब रिलीज हुई 1971 में, उसमें भी इसी जोड़ी यानी शंकर जयकिशन साहब का ही संगीत रहा। और एक खास बात उस फिल्म के साथ ये रही कि जयकिशन साहब का देहांत भी उस फिल्म के निर्माण के दौरान हुआ। प्रोग्राम का नाम है हर सिंगार, आपके साथ इस सफर में मैं विकास।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

फिल्म का नाम रजिया सुल्ताना और पर्दे पर नजर आते हैं निरूपा रॉय और जयराज। गीत की बात करूं तो इस गीत को आपने कई बार सुना होगा और बहुत सारे लोग, खासकर मैं उसमें भी इंक्लूडेड हूं। बहुत बार होता यही है ना कि हम गीत को तो सुन लेते हैं लेकिन उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल रहे उनको नहीं याद रख पाते। आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत रहा और इस गीत को कंपोज किया लच्छी राम ने। और हाँ, ये तो हम जानते ही हैं, पहचानते ही हैं कि रफी साहब की आवाज थी और साथ में उनका साथ निभा रही थी आशा जी। और इसने कहा ना कि ढलती जाए रात, रात का ये समा है और रात ढल भी रही है। खूबसूरत तब और हो जाती है जब इस तरह के प्यारे

1955 की यह फिल्म थी और फिल्म का नाम है आजाद। राजेंद्र कृष्ण, सी रामचंद्र और लता जी जब उस दौर में मिलते थे, यानी इन तीनों की तिगड़ी जब बनती थी, तो संगीत के मामले में तो कम से कम यह एहसास हो ही जाता था कि उस फिल्म के गाने चल निकलेंगे। कुछ कुछ इस फिल्म के साथ भी यही कहा जा सकता है। लावणी या कहूं कि बैठकी के अंदाज वाला ये गीत आज भी बहुत से लोगों को पसंद है। प्रोग्राम का अगला गीत पहुंचता है आप तक और ये शायद प्रोग्राम का आखिरी गीत भी हो, क्योंकि घड़ी बता रही है कि अब कुछ देर बाद हम थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो जाएंगे और आप सुनेंगे समाचार, लेकिन समाचारों के बाद भी एफएम गोल्ड के साथ जुड़ते रहिएगा, आप जुड़े रहिएगा, गीतों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are

0: इमर्जिंग।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मिथ मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मिथ तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jayashankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi today. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers. He said it is marked by the

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
2: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट। ब्रेंट क्रूड राइजेस नियरली 5%, WTI क्रूड ड्रॉप्स अराउंड 1.5%। In bullion market, gold and silver prices declined last week, and foreign portfolio investors turned net sellers of Indian equities in September, infused over 9,600 crore rupees through primary market.
2: पिछले हफ्ते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में मिलाजुला रुख। ब्रेंट क्रूड लगभग 5% उछला, WTI क्रूड करीब 1.5% गिरा। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट। और सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों की बिकवाली की। प्राथमिक बाजार में 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया।
1: And may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. Brent crude December futures rose 4.9% to settle at $102.25 per barrel. West Texas intermediate crude November futures dropped 1.4% to end at $91.11 per barrel over the week. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for updates on latest developments in West Asia.
4: Hi. The first thing in West Asia is that today the seven OPEC plus countries have decided to keep November production unchanged. That means we might not see any additional plant supply increase. Secondly, we've seen some kind of escalation on the Saudi-Yemen Houthi front. Houthis had yesterday claimed that they attacked Riyadh, specifically the Aramco facility. While Saudi Arabia has rejected these claims, any potential danger to Saudi Arabia's oil infrastructure may put pressure on oil prices in the future. Hormuz continues to remain a big oil market risk. Even today, there was report of an unidentified projectile hitting an oil tanker. Now, these geopolitical tension is being counterbalanced by G7's decision to coordinate the release of 100 million barrels of oil and refined products, which may help ease the pressure. But I think the volatility will remain for some days.
2: धन्यवाद मनीष शिवा। ये थे हमारे संवाददाता मनीष शिवा। और जैसा कि उन्होंने भी बताया, ओपेक प्लस के 7 देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने नवंबर में भी सितंबर 2026 वाले उत्पादन कोटे को जारी रखने का फैसला किया है। यह फैसला 4 अक्टूबर को हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा की। संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति JMMC की 68वीं बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। समिति ने चेतावनी दी कि हमला होने या आपूर्ति में रुकावट से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तो ये बहुत सारी खबरें हैं दुनिया में अस्थिरता की, और देखते हैं कि अब कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं हमारे। मेरठ से हरीश लाइन पर है। हरीश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: जी सर, नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मैं ये कह रहा था मेरी म्यूचुअल फंड में 70-80,000 की सिप चल रही है और मेरा टाइम होराइजन

0: 2-12 years है सर। तो क्या सही है सर मेरा म्यूचुअल फंड में? मैंने स्मॉल कैप में और मिड कैप में और फ्लेक्सी कैप में कर रखा है, एक SBI कॉन्ट्रा फंड ले रखा है सर।
1: हरीश जी, आपके टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग और आपकी जो कैटेगरी सिलेक्शन है ये एकदम अलाइंड है। फोकस आपका इस पूरे समय में इस पे रहना चाहिए कि जो आपने मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन रखी हुई है वो एलोकेशन एक सीमे तरीके से आपके कोर पोर्टफोलियो के अराउंड बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें अपना जो परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का उसको 30% से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि लंबे समय में बहुत बेहतर रिटर्न देने की ये आपको गारंटी मतलब संभावना देते हैं। बट होता क्या है कि इनमें जो एक रिस्क लेवल है वो भी काफ़ी हाई रहता है, तो हमें अपना एक कोर पोर्टफोलियो रखना चाहिए जैसे आपने बताया फ्लेक्सी कैप कॉन्ट्रा टाइप की कैटेगरी से, और मिड और स्मॉल कैप जो एक अग्रेसिव ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करता है वो एक एक लिमिटेड तरीके से रहे तो ये काफ़ी सही रहता है। आप एक चीज़ का ध्यान ये रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा पोर्शन डेट एलोकेशन में रख सकते हैं ताकि आपकी एक एसेट एलोकेशन इस तरीके से बनी रहे। आप जब मार्केट में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो और आपको डर की संभावना लगती हो, तब जो आपकी डेट एलोकेशन होती है वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसका आप ध्यान दीजिए, अपनी SIPs को कंटिन्यू रखिए। कोई भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर होती है तो उससे अपने SIPs को स्टॉप या पॉज ना करें।
2: जी, आपने जैसा भी बताया वो स्मॉल कैप की हालत, ये कई जगह देखा है क्योंकि लोग अक्सर एजेंट्स के पास या एडवाइजर्स के थ्रू करते हैं, या कई बार लोग ऐसे सलाह दे रहे होते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे होते हैं कि आप इसमें डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, और कई बार पोर्टफोलियो देखते हैं कि आप 60-70% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं। थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है, जैसे अभी पिछले कुछ महीने से शायद अच्छा लग रहा हो, किसी ने अभी एक आध साल में किया होगा तो उसको बढ़त भी कुछ दिख रही होगी, लेकिन आगे के लिए क्या करें?
1: बिल्कुल, आगे के लिए बस ध्यान ये देना चाहिए, ये जो इतना अग्रेशन जब बिल्ड हो जाता है पोर्टफोलियो में तो मार्केट जब, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट जब हरी दिख रही होती है तब ये वाले फंड्स आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। इसे हम एक तरीके से परफॉर्मेंस चेजिंग कह देते हैं। वो ना करते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका टेम्परमेंट है वैसा कि आप ये स्मॉल कैप मिड कैप की इतनी ज़्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो आप बिल्कुल वो करिए, पर ध्यान इस बात का रखना चाहिए कितना रिस्क उठा सकते हैं, और रिस्क एक ही बार आपको दस्तक देती है अपने पोर्टफोलियो में, और जब देती है तब आपको रियलाइज होता है कि उतना ज्यादा सही नहीं था। इसीलिए जैसे अभी मैं हरीश जी को बता रही थी कि आप डेट एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखिए और अपना रिस्क आपको जानना चाहिए, उससे पहले इन्वेस्ट करने से पहले जो अपने एक पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अगर आपका गोल ही आपके 3 साल का गोल है तो आप मिड स्मॉल कैप छोड़िए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास ही सूटेबल नहीं है। जैसे हरीश जी ने बोला उनका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, इस होराइजन के लिए आप स्मॉल कैप मिड कैप एलोकेशन चाहे तो 30-40 रख सकते हैं,
2: बस 30-40, उससे ज्यादा नहीं,
1: मतलब फॉर स्टार्टर्स आपको 20-25 तक ही उसको
2: 20-25 ही रखना चाहिए जी, नए निवेशकों के लिए जी।
3: वेल, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर व्हाट हिज क्वेश्चन इज। योगेश जी, सवाल पूछें।
4: जी नमस्कार आप सभी को, मेरा एक सवाल है और एक क्लैरिफिकेशन है। जो मैंने पिछली बार सवाल पूछा था कि सारा कुछ हमारा डिजिटल एसेट में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसका रीजन ये था कि रियल एस्टेट अपने आप में एक फिजिकल एसेट क्लास होता था, बट उसको रीट की वजह से डिजिटाइज कर दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। दूसरा जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को ऐड करने का सही तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा पोर्टफोलियो ही 1 करोड़ से कम का है, अगर हम उसमें रियल एस्टेट ऐड करते हैं तो जैसे ही हम ऐड करेंगे वो एक मेजर पोर्शन खा जाएगा पोर्टफोलियो का अपने आप में, जबकि हमारा गोल है कि 20% से ज्यादा रियल एस्टेट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो क्या अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक SIP करें एक मिड या लार्ज मिड कैप फंड में और उसको एक रियल एस्टेट का लेवल कर दें, फिलहाल के लिए मेंटल लेवल दे दें रियल एस्टेट, और जब वो अपने आप में एक अच्छा अमाउंट हो जाए तो फिर उसको हम रियल एस्टेट के लिए यूज करें।
1: योगेश जी, मुझे आपका वो सवाल याद है जिसपे अभी आपने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा। मैं एक्चुअली आपसे, मैं आपको एक थॉट देना चाहूंगी कि जो रियल एस्टेट का जो एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल रियल एस्टेट आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर आपके दिमाग में इस तरीके से है, तो एज एन एसेट अगर आपको वो चाहिए तो आपको कोई भी

0: कुछ भी कहे वो आपको लगेगा नहीं कि उसको उस नजरिए से देखना चाहिए, बट मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में आजकल इनडायरेक्ट मतलब नॉट फिजिकल तरीके से जो रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिलता है वो इतना इजी हो चुका है, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। आप कह रहे हैं अगर वो कैपिटल रिक्वायरमेंट बन भी जाती है तो आप फिर उसके उसको फिजिकली खरीदें, बट बियॉन्ड दैट जैसे और दो प्रॉब्लम्स रहती हैं फिजिकल रियल एस्टेट में, विच इज़ इलिक्विडिटी या फिर जो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जैसे आपने बोला कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो इमीडिएटली काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो ये कुछ रिस्क रहेंगे ही जो फिजिकल रियल एस्टेट की जहां तक बात है। फिर भी रियल एस्टेट का एक्सपोजर जो रीट्स के माध्यम से आजकल मिलता है, म्यूचुअल फंड्स में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आपको एक रीट्स की एक एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्योंकि वो एलोकेशन लिमिटेड रहती है, हाल फिलहाल में 2-3 नए फंड्स आए हैं विच आर फोकस्ड ऑन दिस, यू नो वो रीट्स ओरिएंटेड इंडेक्स फंड हो जाते हैं, तो क्योंकि वो पैसिव फंड्स हैं आपको इतना पता होता है कि वो कौन से रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी लिस्टेड रियल एस्टेट हैं जिसका आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मेरी नज़र में आप उसको एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको सहानुभूति देता है कि ये मुझे एक रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल रहा है। लिमिटेड रीट्स अवेलेबल हैं आज की तारीख में हमारी लिस्टेड मार्केट में, बट क्योंकि ये इंडेक्स है तो ये रियल एस्टेट कंपनीज का भी आपको एक्सपोजर देगा और रीट्स का भी जो आप चाह रहे हैं वो एक्सपोजर आपको मिल जाएगा।
1: जी, रियल एस्टेट के लिए अब तक भारतीय निवेशकों में काफ़ी प्यार बना हुआ है,
0: बिल्कुल
1: ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर हम इतिहास में जाएं, अगर इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं तो कई बार हम देखते हैं जो काफ़ी जानकार एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं, विद्वान हैं, इवन मुझे नील फर्ग्यूसन की किताब पुरानी याद आ रही है, उसमें भी उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था, कैसे बाजार गिरा था और सब कुछ बर्बाद हुआ था, कई शहर खाली हो गए थे। तो रियल एस्टेट में रिस्क जब आता है और जब गिरावट होती है तो बुरी तरह से वो बर्बाद करके जाता है,
0: वो बात भी है। और जहां तक मतलब मैं योगेश जी की बात समझ पा रही हूँ, रियल एस्टेट के लिए आपका एक फेवरेटिज्म आ जाता है, क्योंकि वो जो फिजिकलिटी अटैच होती है कि ये
1: है हमारे पास
2: समथिंग पैल्पेबल,
0: एग्जैक्टली। तो कभी कभी वो एक मेरे नज़रिए में नुकसानदायी बात हो जाती है, क्योंकि आजकल के टाइम्स में जहाँ पे बिल्डर्स आपको बेच देते हैं पर उसका जो उसको जो बनाना है, जो ग्रोथ है, कितना समय लग जाता है, आप समय इन्वेस्ट कर सकते हैं तो और भी बढ़िया बात है, वो आपको कंस्ट्रक्ट मिल जाता है, उसके बाद टेनेंट ढूंढना, मेंटेनेंस, ये सब काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अटैच होते हैं, तो काफ़ी सूझबूझ से ये मेरे हिसाब से सोचना चाहिए। इन द मीन टाइम क्योंकि डिजिटल एनवायरनमेंट में भी अब ये रीट ओरिएंटेड इंडेक्स फंड्स आ गए हैं, तो एक माध्यम वहां से भी खुल जाता है।
1: जी, और वैसे भी जब आप फिजिकल अगर प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसको बेचना इतना आसान नहीं होता है। आज आप बेचना शुरू करें, हाँ, तो आपको शायद पूरा साल लग जाए उसे बेचने की कोशिश में। और चलिए देखते हैं सोने और चांदी का क्या हाल रहा। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड में बढ़त से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया। एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 1.9% की गिरावट के साथ 150,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 3.8% की कमी आई और ये 2,25,877 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 3.7% गिरकर $4,162.30 प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 6.8% लुढ़क कर $60.41 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई।
2: एंड जय कुमार जॉइंस अस फ्रॉम गाजियाबाद।
3: मार्केट बंदर टीम को नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
3: मैम मेरा सवाल है कि कई सारे इंडेक्स फंड हैं और मुझे कौन से इंडेक्स फंड में बेटर रिटर्न मिल सकता है?
0: जी कुमार जी, जो आपका सवाल है कि पैसिव फंड्स में आपको बेहतर रिटर्न कैसे मिल सकता है, तो ये जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है कि जो पैसिव फंड्स होते हैं वो अपने जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स का वो, जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे होते हैं, मतलब कि जो वो इंडेक्स जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है वो उन्हीं में ही इन्वेस्ट करेगा, तो वो आपको बस एक प्रॉमिस कर रहा होता है कि जो ये इंडेक्स रिटर्न देगा अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से वही आपको मिलेगा। तो बेहतर रिटर्न का जो एक फंडा है वो पैसिव्स में उस तरीके से नहीं चलता है। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमें इस तरीके से देखनी चाहिए कि हम एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं चाह रहे हैं, मतलब कि हम एक फंड मैनेजर को ये अपने पैसे इस तरीके से नहीं देना चाह रहे हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लें और आप उनकी सूझबूझ यूज करने के लिए उनको एक एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से कुछ कॉस्ट देते हैं जो आपके प्राइस में से कट हो जाता है। पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करने का तरीका आप ये देख सकते हैं कि आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, जो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पैसिव फंड्स होते हैं, उनसे मोस्ट इन्वेस्टर्स का काम हो जाता है, बस वो आपको एक लार्ज कैप एक्सपोजर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब ये वो वाली कंपनीज हो जाती हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनके ग्रोथ पोटेंशियल बिल्कुल स्टेबल हैं। तो मेरे हिसाब से पैसिव्स का यूज केस, इंडेक्स फंड्स का यूज केस वहां बनता है जहां पर लार्ज कैप एलोकेशन आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ढूंढ रहे हैं।
1: जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से, दिनेश कुमार, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: जी
4: मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में हर वीक इन्वेस्ट करता हूँ एक लमसम करके, और मेजर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो निफ्टी में और हाइब्रिड में है करीब 25-25%, और बाकी का 4-5 म्यूचुअल फंड में है। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो स्लाइटली नेगेटिव में आ गया है, लेकिन निफ्टी वाला जो फंड है वो हैवीली नेगेटिव में आ गया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे अभी मैं हर वीक एवरेज तो करूंगा तो वो निफ्टी में ही करना चाहिए या हाइब्रिड या लार्ज एंड मिड कैप बाकी फंड्स में करना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव हो। थैंक यू वेरी मच।
0: जी दिनेश जी, जो आपने तरीका बताया आपके इन्वेस्ट करने का, अगर वो तरीका आपको सूटेबल रहता है और आप जैसे कह रहे हैं कि आप हर वीक करते हैं और आप एवरेज आउट भी करते हैं, ये जो तरीका होता है इन्वेस्ट करने का ये काफ़ी डिपेंडेंट होता है अपॉन यू नो जो पर्सन इसको कर पा रहा है। जैसे मैं एज एन इन्वेस्टर अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मैं जो एक ये टाइमिंग वाला एलिमेंट होता है वो इतना कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगी। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो रहा है, बट निफ्टी जो कि एक पैसिव फंड है वो ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का ही रुख कुछ ऐसा है कि आपको उतना ज़्यादा रिटर्न या उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस मार्केट में दिख नहीं रही है टुवर्ड्स द अपसाइड। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप अपना जो निवेश कर रहे हैं आप उसको जारी रखिए। इम्पॉर्टेंट बस यही रहेगा कि आगे जब आपको ये अमाउंट कि ज़रूरत होती है और आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसे दिख रहा है तभी आप कुछ चेंज करें, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो लार्जली जो मैं समझ पा रही हूँ निफ्टी 50 और हाइब्रिड फंड से बना हुआ है, तो ये एक काफ़ी ऑलरेडी सूझबूझ से बनाया गया पोर्टफोलियो है।
1: जी, और देखें अब क्या हाल रहा FPIs का। सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाले, जबकि जुलाई और अगस्त में उनका रुख सकारात्मक था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार FPIs ने पिछले महीने 35,861 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। वैश्विक अनिश्चितता, US बॉन्ड्स यील्ड में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाए रखी। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से 45,537 करोड़ रुपए उन्होंने निकाले, लेकिन प्राथमिक बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले महीने भी पैसे डाले। सितंबर में उन्होंने प्राथमिक बाजार में 9,676 करोड़ रुपए का निवेश किया। ऋण बाजार पर भी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली का दबाव बनाए रखा। सितंबर में उन्होंने FAR के जरिए 10,431 करोड़ रुपए निकाले, जनरल लिमिट रूट से 5,247 करोड़ और VRR से 5,049 करोड़ रुपए निकाले।
2: स्नेहा, वी जस्ट हर्ड दीज फिगर्स अबाउट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वी लाइक टू हैव योर व्यू ऑन दिस। व्हाट डज दिस मीन इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री?
0: राइट, सो एज वी हैव ऑलवेज बीन डिस्कसिंग दैट इट इज वेरी गुड टू नो, टू बी ऑन टॉप ऑफ this kind of development that is happening, because you get to know what kind of perspective exists for the home country outside Correct. The home country. But for specifically for mutual fund investors or any retail investor, you know, my view is that these developments should never be taken as a personal cue

0: Negotiations for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, in Ottawa from tomorrow, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The five-day round led by the chief negotiators of the two countries will continue till 9th of this month. And now time to take a peep into how the markets are expected to show up next week. Domestic investors are expected to closely monitor key market triggers, including Reserve Bank of India's monetary policy decision, corporate earnings results for the second quarter of the current fiscal year, and HSBC Services PMI reading. Market sentiment will also be driven by geopolitical developments, foreign institutional investor flows, commodity prices, bond yield movements, and currency fluctuations during the week ahead. Globally, investors will closely monitor developments surrounding the West Asia conflict. In the United States, minutes from the Federal Open Market Committee's September meeting will be released on Wednesday, possibly offering Wall Street cues about the Fed's rate outlook. Additionally, focus will be on the bond yields. Last week, the benchmark U.S. 10-year Treasury yield hit 5.34%, its highest level in 24 years. Higher yields can create more investment competition for equities and pressure stock valuations.
1: और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। वे आज नई दिल्ली में 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे। बाद में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष वोल्फगैंग इशिंजर और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के सचिव बर्नहार्ड कॉच के साथ बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाले दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि तेज रहेगी और जनसांख्यिकी वृद्धि दर का स्तर बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। आज वक्त इतना ही है। स्नेहा, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
0: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Global crude oil prices wrap up week on mixed note. Brent crude rises nearly 5%. WTI crude drops around 1.5%. In bullion market, gold and silver prices declined last week, and foreign portfolio investors turned net sellers of Indian equities in September, infused over 9,600 crore rupees through primary market. And that's all in today's edition of Market Mantra. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रोग्राम चल रहा था, गीत मेरे मन मीत और घड़ी बता रही है कि अब बस कुछ एक पल है और इजाजत लेने का ही ये मौका है। तो विकास फिलहाल चाहता है आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा है कि उभरती

0: मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इनमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि इसमें तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मूज जल डमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jayashankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Dr. Jaishankar termed the Russia-Ukraine conflict as unfortunate, saying that India's position has been very clear that it would like to see an end to this conflict. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan handed over the first installment of 3 lakh houses worth 3,600 crore rupees to Andhra Pradesh under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen 2.0 at an event in Guntur district yesterday. Mr. Chauhan also laid the foundation stone for the country's first pilot housing project using 3D concrete printing technology, comprising 177 houses at a cost of 14 crore rupees. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu was also present on the occasion. India and Canada will kick off the fifth round of negotiations today for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, in Ottawa as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The five-day round led by the chief negotiators of the two countries will continue till 9th of this month. The previous round concluded in New Delhi on 18th of last month, with officials now pushing for faster progress towards a final agreement. Swiss President Guy Parmelin will arrive in New Delhi today for a three-day state visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Prime Minister Modi and President Parmelin will hold bilateral discussions to review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas. These include trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture and people-to-people contact. The visiting dignitary will also meet President Draupadi Murmu and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Indian Ambassador to UAE Deepak Mittal has said prayers continue to flow in for good health of Captain Smith Machar. In a social media post, Ambassador Mittal said he is recovering well and in good spirits. He added that the embassy remains in touch with the local authorities and the family and is extending all possible assistance. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has announced that Bhadohi district has been renamed Sant Ravidas Nagar Bhadohi. The Chief Minister made the announcement while addressing a program in Bhadohi after inaugurating and laying the foundation stones for 112 development projects worth over 1,340 crore rupees. The curtain has come down on the Asian Games with a dazzling closing ceremony at Aichi Nagoya in Japan. The ceremony featured the parade of athletes, lowering of the Asian Games flag and the handover of the ceremonial torch and flag to Doha, host of the 2030 edition. India's women's flag bearer and shooting star Neeru Dhanda carried the Indian tricolour at the closing ceremony. India finished fourth in the overall medal standings with 85 medals, including 21 gold, 21 silver and 37 bronze. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi congratulated the Indian contingent on its performance at the Asian Games. And with that, we end this news bulletin.

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में पूजनीय बापू को याद किया है, गांधी जयंती का उल्लेख किया है और साथ ही उस मंत्र की एक बार फिर से हमें याद दिलाई है, जो मंत्र पूरे देश को तो एक साथ जोड़ता ही है लेकिन हमारे भविष्य, हमारे वर्तमान को हमारे इतिहास से, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ता है। एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने आप में अथाह समुद्र जैसा, स्वच्छता। आज का हमारा कार्यक्रम बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, स्वच्छता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बापू का किन शब्दों में उल्लेख किया है, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों, उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है।
2: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्गार बापू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में और स्वच्छता के बारे में। आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि हमें स्वतंत्रता से पहले जो मंत्र दिया गया था, क्या आज भी वो हमारे लिए कारगर है? आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या उनका समाधान हमें बीते समय में मिलता है? और किस तरह से बापू का जो दर्शन है, महात्मा गांधी का जो चिंतन है, वो समसामयिक है? आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञ को, डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। आप गांधीवादी चिंतक और विचारक हैं, आप लेखक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट से आप जुड़े रहे हैं, गांधी दर्शन की पत्रिका अंतिम जन के संपादक रहे हैं, गांधीवाद रहे न रहे, पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित कई पुस्तकों के आप संपादक और लेखक भी हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: जैसा कि हमने अभी सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के जो विचार हैं उनका उल्लेख किया है, स्वच्छता जो मंत्र हमें दिया गया है फिर से हमें उसकी याद दिलाई है और हमें ये कहा है एक तरह से कि हम इससे जो कुछ सीख सकते हैं वो सीखें, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं, तो इन्हें और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये बताएं कि गांधी जी ने स्वच्छता को कैसे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा।
4: दरअसल गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां से कोई 22-23 साल अपना जीवन बिताने के बाद हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया था
2: जी।
4: यह सलाह थी उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की और यह भ्रमण उन्होंने तीसरे दर्जे में किया था, रेलवे में तब तीसरा दर्जा होता था। वे कांग्रेस के कार्यालयों में जाते थे, उन दिनों आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की थी,
2: तत्कालीन कांग्रेस
4: की जी। और कांग्रेस के कार्यालयों में, कांग्रेस के अधिवेशनों और सम्मेलनों में होने वाली गंदगियों की तरफ भी उनका ध्यान गया था। 1916 में जब महामना मदन मोहन मालवीय जी के आमंत्रण पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गांधी जी गए
2: जी।
4: तो उससे एक दिन पहले वे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे। वहां उन्होंने नोट किया कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाने की जो गलियां हैं वे बेहद गंदी हैं। गांधी जी ने उनके ध्यान में आया कि अगर कल अंग्रेज चले भी जाएं तो क्या बाबा विश्वनाथ की गली साफ हो जाएगी? क्या अंग्रेजों ने उन गली

0: को गंदा किया है। जब वे कह रहे थे तो उनके ध्यान में था कि दरअसल हमारे यहाँ गंदगी फैलाने और गंदगी की सफाई करने, इन दोनों के बीच एक बड़ी खाई है, एक द्वैत है। तो गांधी जी ने सोचा कि जब तक व्यक्ति अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को नहीं समझेगा और बुनियादी जरूरतों को नहीं समझेगा, बुनियादी दायित्वों को नहीं समझेगा, तब तक उसको स्वराज के आंदोलन से जोड़ा नहीं जा सकेगा
1: जी।
0: तो गांधी जी ने जो भाषण किया था उस भाषण में इस सवाल को उठाया था और ये जिक्र किया था। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि वो लिया होगा विचार गांधी जी का, उन्होंने पूछा उसी भाषण में। और उस भाषण में देश भर के सारे राजे रजवाड़े आए थे। 1916 का बनारस में दिया गया गांधी जी का वो भाषण उनके पूरे व्यक्तित्व और उनके पूरे दर्शन को समझने की लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहां उन्होंने पूछा था युवाओं से, सबसे, कि अपनी गंदगी के लिए हम दूसरे को कब तक जिम्मेवार ठहराएंगे और अपनी काहिली या अपनी अकर्मण्यता के लिए क्या हम अंग्रेजों को ही जिम्मेवार ठहराएंगे। और तभी उन्होंने ये सवाल किया था कि कल के डेट में अगर अंग्रेज चले गए तो जिस बाबा विश्वनाथ को हम इतना पवित्र और अपना आराध्य मानते हैं, क्या उनकी गलियां साफ हो जाएंगी? ये गलियां हमने गंदी की है।
1: तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस तरह से गांधी जी ने स्वच्छता को सामाजिक सुधार का भी एक माध्यम बना दिया था?
0: दरअसल था ये कि हमारे यहाँ एक फर्क था, जो लोग गंदगी की सफाई में जुड़े हुए थे वो दरअसल एक पूरा सामाजिक तबका था, और जो गंदगी फैलाते थे उनको श्रेष्ठ और जो गंदगी की सफाई करते थे उनको हे मानने की रवायत थी हमारे यहाँ। गांधी जी दरअसल इस पूरे दर्शन को, इस पूरे विचार को ही बदलना चाहते थे। इसी में जुड़ा हुआ था उनका विचार, जो दार्शनिक स्तर पर समझ में आता है, कि शरीर का श्रम और बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, दोनों एक ही लेवल पर माने जाने चाहिए
1: जी।
0: ये नहीं कि बौद्धिक श्रम करने वाला श्रेष्ठ है और शारीरिक श्रम करने वाला निकृष्ट है, ऐसा गांधी जी नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने जो हमारे समाज में किन्हीं कारणों से जो ये चली आ रही थी परंपरा, जिसमें एक खास सामाजिक समुदाय को, लोगों को लाद दिया गया था कि यही लोग गंदगी की सफाई करेंगे, तो इसको वो पलट रहे थे
1: जी।
0: तो दरअसल गांधी जी ऐसा करके एक समता पर आधारित समाज के निर्माण की कोशिश में भी लगे थे, भले ही वे इस बात को सीधे तौर पर कहते हों या न कहते हों
1: जी। राजीव जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो शायद बापू के जो संभाषण रहे हैं, उन्होंने जो भाषण दिए, जो संवाद किया जनता से, वहां से वो प्रेरित हुए। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में महात्मा गांधी जी के चश्मे को ही एक प्रतीक चिन्ह बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान गांधी जी के स्वच्छता के सपने को जन जन तक पहुंचा पाया, उसे साकार कर पाया?
0: अगर आप 1915 और उसके पहले सफाई को लेकर जनता के बीच चेतना के प्रसार को अनुपात के तौर पर या तुलना के तौर पर देखेंगी तो एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा
1: जी।
0: सामान्य और जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था, लोगों को लगता था ये बहुत छोटा और मामूली विषय है, और इसी मामूली विषय को गांधी जी ने तब उठाया था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने उसी विषय को जिक्र करके और उससे खुद को जोड़कर भी
1: जी
0: केंद्र में ला दिया था। और जब एक सामान्य विषय माने जाने वाले मसले को, मुद्दे को केंद्र में लाने की कोशिश देश का कोई बड़ा नेता करता है तो जाहिर है उसका असर अखिल भारतीय होता है। और चूंकि ये बहुत सुचिंतित और सुनियोजित ढंग से भारत सरकार ने इसको चलाया था और देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को इससे जोड़ा था, तो इस वजह से भी बड़े पैमाने पर ये प्रसार हुआ
1: जी।
0: दूसरा, ये समय वही है जब बड़े पैमाने पर हमारे देश में कचरा इकट्ठा हो रहा था, कई तरह के ई कचरा भी और सब कुछ, तो ये एक तरह से सही समय पर लिया गया फैसला भी था, जिससे जनता उसके प्रति भी या निकट भविष्य में आने वाली अस्वच्छता के तमाम आयामों को भी साफ करने के प्रति सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, तो इसका असर तो हुआ ही है निश्चित तौर पर
1: जी। जैसे आपने ई वेस्ट की बात की तो ये सही है कि वर्तमान समय में हमारी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक है, ई वेस्ट है, या उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, एक तरह से हम सभी उसके शिकार हैं। आपको क्या लगता है कि

0: इन सब के बीच में गांधी दर्शन से क्या हमें कोई समाधान मिलता है?
1: देखिए, असल में ये जो चुनौती है ये पूरे विश्व की है
0: जी,
1: और आप उसको दूसरे शब्दों में चाहें तो कहें कि ये पूरे मनुष्यता के भविष्य पर खड़ा हुआ सवाल है, प्रश्नांकन है। तो ये जो चुनौतियां, ये जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी चिंता बढ़ रही है
0: जी,
1: उपभोक्ता संस्कृति की वजह से ऐसा लगता है कि सारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी और हमारी मनुष्यता का क्या हश्र होगा
0: जी।
1: उदाहरण के तौर पर देखिए, पानी समाप्त हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ओजोन में छेद होता जा रहा है, उसका सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी ही बनी रहे और इससे बेहतर हो, तो विकल्प के तौर पर दिखेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही। उन्होंने सुझाया था और उनका वो विचार दुनिया भर के लोग, अब के इन्वायरमेंटलिस्ट इसके प्रति ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था बहुत बेबाकी के साथ कि इस नेचर में, इस प्रकृति में दुनिया के सारे लोगों की जरूरतों को पूरी करने की क्षमता है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को पूरी नहीं कर सकती ये प्रकृति। तो जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, जहां दरअसल हम अनावश्यक ढंग से आवश्यकता पैदा करते जा रहे हैं, मुनाफा के चक्कर में कुछ चीजों के आविष्कार होने के बाद उसकी जरूरत विज्ञापनों के जरिए या अलग अलग तरह के पीयर प्रेशर के जरिए उसको पैदा किया जा रहा है। तो रास्ता तो वही है, अगर आप सुकून का जीवन ये मनुष्यता चाहती है, व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, राष्ट्र और दुनिया के स्तर पर भी, तो जाना तो पड़ेगा उसी दर्शन के पास। और दरअसल ये दर्शन भारत की आर्ष परंपरा का निचोड़ है। हमारे यहाँ आप ध्यान दीजिए, पुराने समय में जो महान जिनको हम मानते थे वे सारे ऋषि होते थे
0: जी।
1: आप उनकी जरूरतों की वस्तुएं या उनके भोग की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं बेहद सीमित होती थी, यानी जो सबसे कम कंज्यूम करता था वो हमारी परंपरा में सबसे महान माना जाता था
0: जी।
1: पर एक उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ पूंजीवाद के विकास के बाद, और उसके बाद आवश्यकता से अधिक जो अधिकाधिक उपभोग करने लगा उसी को बड़ा मानने का चलन हमारे यहाँ मौजूद हो गया। तो दरअसल ये दो तरह की सभ्यता दृष्टि है, दो तरह की संस्कृति दृष्टि है, और गांधी की दृष्टि वो पुरानी भारतीय ऋषि परंपरा से जुड़ती है, जहाँ कहती है कि आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है, जितने से आप एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसको अब मिनिमलिस्ट कहा जा रहा है, तो आप उसको अगर जी सकते हैं तो उतनी ही वस्तुओं का उपभोग आप करें, नहीं तो आपका अपना ही जीवन संकट में पड़ेगा, और अंततः आपका अपना जीवन जो संकट में पड़ेगा वो आपकी भावी पीढ़ियों के लिए और दुनिया के लिए, मनुष्यता के लिए एक संकट के तौर पर चिन्हित किया जाएगा
0: जी। इसीलिए शायद हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, इसीलिए हम पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे हैं उसका अनुपात हमें सही रखना हो, तो कहीं ना कहीं इन सबके मूल में गांधी दर्शन आ ही जाता है। मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी सोशल मीडिया के बारे में। राजीव जी, हम कैसे सोशल मीडिया के युग में गांधी जी के विचारों को और फैला सकते हैं या समझ सकते हैं या ये मान सकते हैं कि ये विचार समसामयिक हैं?
1: दरअसल हमें देखना ये होगा कि सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक मायने में अभिव्यक्ति दे दी है
0: जी।
1: और अब उसकी अभिव्यक्ति का दायरा उसके अपने कमरे और अपने आस पड़ोस के लोगों की बजाय ग्लोबल हो सकता है। तो गांधी जो हमेशा सिखाते थे कि आप किसी के विचार से भले ही असहमत हों
0: जी,
1: पर उसके प्रति सहिष्णु हो, आप अपनी असहमति को भी सलीका में दर्ज कराएं
0: जी।
1: आप जब तक किसी सत्य को न समझते हो, न जानते हो, तब तक उसको अभिव्यक्त न करें, यानी पहले अपने अंतर मन में तमाम स्रोतों से उसकी जांच पड़ताल कर लें
0: जी।
1: ऐसा नहीं करने की वजह से हो ये रहा है कि लोगों को जो आधा अधूरा या गढ़ा हुआ सच मिल रहा है, तथ्य मिल रहा है, उसको लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं और उस पर अपना विचार रख रहे हैं, उसके आधार पर अपनी पक्षधरता तय कर रहे हैं, और उस वजह से एक बड़ी खेमेबंदी और मुश्किलें पैदा हो रही है और समाज में नफरत का प्रसार हो रहा है
0: और विचारों का उथलापन भी
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो गांधी सिखा रहे हैं, दरअसल उनकी बुनियाद में है अहिंसा और सत्य
0: जी।
1: तो आप चाहे जितने अहिंसक हों, आप चाहे जितने किसी से असहमत हों, पर अपनी अहिंसक भाषा में उसको दर्ज कराएं और उस व्यक्ति के प्रति आप घृणा न करें। आपके दर्ज कराने का मतलब उसकी अंतर चेतना को परिवर्तित करने की हो कि आप अपनी बातों से उसको प्रभावित कर पाए। एक बिहार में पैदा हुए शायर थे कलीम अजीज
0: जी,
1: उनकी एक पंक्ति है, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए
0: जी।
1: तो ये जो कहने का सलीका हो, यानी आपकी बात, आपके तर्क भरे ही कठोर हो पर आपकी भाषा और उसको अभिव्यक्ति करने का ढंग मधुर हो
0: जी,
1: वो कोमल हो, यही गांधी जी करते भी थे। गांधी जी पूरा जीवन जिस साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि उनकी भाषा में कोई बेअदबी हो। वो आपको दिखेगा कि वो उनको भी एक मित्र के तौर पर संबोधित कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं, उनके मन में ये भावना है कि ये आज हमारे प्रति अनुदार है लेकिन इसके भीतर भी किसी ईश्वर का अंश है, तो मेरी बात से आज न कल उस पर असर होगा और वो भी अपने को पहचानेगा और फिर इसी क्रम में एक बेहतर दुनिया बनेगी
0: जी।
1: तो ये जो सोशल मीडिया ने बड़े पैमाने पर फैलाया है, कहीं कहीं अच्छा और कहीं कहीं बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का असर इसका दिख रहा है, तो दरअसल गांधी जी का विचार सचेत करता है हम सबको जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सबको, कि आप किसी भावावेग में कोई बात उस पर न तो कोई अक्षर उस पर दर्ज करें और न तो कोई वाणी अपनी अभिव्यक्त करें
0: जी। यानी जो हमारे यहाँ श्रवण, चिंतन और मनन की परंपरा है उसके बाद अपना विचार रखें, उसे भी आजमाएं। और आपने कहा कि हम जो हैं वो सत्य का साथ भी ना छोड़ें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी राजीव जी कि गांधी जी का जो सत्य का सिद्धांत है, क्या वो आज के समय में, आज की जो दुनियादारी है जिसे हम कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होना है हमें, उसमें वो कितने प्रतिशत तक शामिल हो सकता है? और जो हमारे युवा हैं, हमारे जेन जी हैं, जिन पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो है ही कि आपको सोशल मीडिया में भी अपना एक अंश रखना है, एक बहुत बड़े से आकाश में आपको अपना हिस्सा भी सुरक्षित रखना है, जिसे हम कहते हैं बीइंग वोकल, कि आपके लिए कोई और बात नहीं करेगा, आपको खुद को स्थापित करना है, इस प्रेशर के साथ ये सत्य का सिद्धांत लेकर हम कितना चल सकते हैं, कैसे सामंजस्य होगा?
1: दरअसल चाहे जितनी दुनियादारी और प्रैक्टिकल किस्म की बातें हों, पर जो शाश्वत बातें हैं, मसलन क्या करुणा का स्थान कम हो जाएगा
0: जी?
1: जैसे करुणा का स्थान नहीं कम होगा, जैसे प्रेम का स्थान नहीं कम होगा, वैसे ही चाहे हम मानते हों कि ये दुनिया बहुत लफाजी, बेईमानी और जोड़ तोड़ की है, बावजूद इसके सत्य की अपनी महिमा बरकरार ही रहेगी
0: जी।
1: आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि दरअसल रास्ता वही है। हम दुनिया भर के लोग अगर गलत चीज को तवज्जो दे रहे हों तो ये तो नहीं मान लेंगे कि गलत ही सबसे बड़ा मूल्य है
0: जी।
1: दुनिया भर के लोग बेईमानी के सहारे आगे बढ़ रहे हों तो हम ये तो नहीं मान लेंगे कि बेईमानी ही सबसे बड़ा वैल्यू है
0: जी।
1: चूंकि ये जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दुनियादारी सीखनी है, तो ये दुनियादारी अच्छाई के रास्ते से भी जाती है, और अगर आप तात्कालिक न देखें, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में सोचें
0: जी,
1: तो अंततः सफल वही होता है जिसके रास्ते में सच्चाई हो, जिसके मार्ग में सच्चाई हो। दूसरी बात जो वोकल होने की है, गांधी जी यही तो कर रहे थे, भारत के उन तमाम निर्बल लोगों को और वाणीहीन लोगों को उन्होंने निर्भयता का पाठ पढ़ाया और उनके कंठ को वाणी दी, तभी तो वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सामने आकर सीना तान कर खड़े हो जा रहे थे
0: जी।
1: जिस गांव समाज के लोग सिपाहियों की लाल पगड़ी को देखकर भाग जाते थे, वे उनके अधिकारियों के सामने अपनी आजादी की बात करने लगे थे
0: जी।
1: तो गांधी जी का दर्शन किसी को वोकल होने से नहीं रोकता, बल्कि उस वोकल होने में उसके अपने दायित्व को जोड़ने की बात करता है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेवारी को लेकर भी वोकल हो और उसके प्रति भी सचेत हो।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी समझाया कि किस तरह से हम गांधी दर्शन से ही बहुत सारे समाधान पा सकते हैं। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: जी, देश प्रेमी फिल्म का गीत है।
0: जी,
1: मोहम्मद रफी साहब जी ने गाया है, नफरत की लाठी तोड़ो लालच का खंजर फेंको।
0: जी,
2: लालच

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यानी स्वच्छता की। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राजीव रंजन गिरे। राजीव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम बहुत से कामों के लिए आज तकनीक पर निर्भर हैं, बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है, ऐसे में निर्माण भी है, ऐसे में पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं हम एक तरह का समझौता भी करते हैं, वनों की कटाई है या फिर जल जो है या हमारे इस तरह के संसाधन हैं उनका दुरुपयोग भी होता है। गांधी दर्शन हमें इस बारे में क्या सिखाता है, तकनीक और गांधीवादी विचार जो है उनके बीच में कैसे सामंजस्य होगा?
1: दरअसल गांधी जी के बारे में जो कई धारणाएं उनका कुपाठ करती हैं या उनको अवमूल्यित करती हैं, उनको नहीं समझती

0: तकनीक रही होगी
1: जी,
0: उसका उसने आविष्कार किया। तो दरअसल गांधी जी कहते थे कि जिस तकनीक के आविष्कार के पीछे कोई प्रेम है या मनुष्यता के प्रति प्रेम है, जिससे आपके काम में भी सुविधा हो, आपका उत्पादन भी बढ़े और उससे किसी पर अत्याचार न हो रहा हो, किसी के हक को आप छीन नहीं रहे हो, वैसे तकनीक का वो समर्थन करते थे। एक दूसरा उदाहरण दूं, गांधी जी के साथ हमेशा चरखा रहता था, चरखा अपने आप में तकनीक है। 1925-26 का साल है जब गांधी जी ने 1,00,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया था चरखा की तकनीक के विकास पर काम करने के लिए।
1: उस समय एक लाख
0: आज के हिसाब से आप सोचिए। और अंबर चरखा कहा जाता है, दिल्ली में राजघाट के पास राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है, वहां वो चरखा रखा हुआ है, 11 पैडल का चरखा है वो। ये गांधी जी के कहने पर खोजा गया। आप सोचिए, आज से कोई 100 साल पहले
1: जी,
0: जिस चरखा में 11 पैडल की चरखा की, अंबर चरखा की खोज की उन्होंने बात की और उसको आगे बढ़वाया, वो अपने आप में तकनीक है।
1: और पेटी चरखा भी तभी तैयार हुआ कि
0: ले जा सकते हो सब कुछ, जो लैपटॉप की तरह है। तो आप देखिए, सारे तकनीक हैं। बस उनका कहना ये था कि ये सारे तकनीक अधिकाधिक मनुष्यों को काम देने और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हो। तकनीक इसलिए न हो कि कोई मुनाफाखोर उसका अधिकाधिक हिस्सा ले पा रहा हो और उस देश की, उस राष्ट्र की या दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से के हाथों को काम से वंचित कर रहा हो। यानी वो तकनीक और मनुष्य के श्रम के संयोजन से एक विकास का मॉडल गढ़ रहे थे,
1: और कल्याण की भावना,
0: और कल्याण उसमें जो जाहिर है अंतर्निहित है उसमें कल्याण, अंतर्निहित है उसमें प्रेम, अंतर्निहित है सारे हाथों को मिलने वाला काम भी। लेकिन इससे कठिनाई भी नहीं होनी है। जो श्रम कठिन है, जैसे जो सिलाई मशीन में या एक चरखा चलाने में जो कठिनाई है और कम उत्पादन है, तो उत्पादकता के बढ़ाने के साथ मनुष्य के हाथों को मिलने वाला काम हम अगर देखेंगे तो दुनिया का कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज तभी तो विकसित होगा जब उसके मानव संसाधन को, सारे हाथों को काम मिले। तो ये मॉडल दरअसल गांधी जी का मॉडल है। और इसमें फिर हमको ये नहीं लगेगा कि हमको आधुनिक तकनीक और गांधी के बीच कोई समन्वय बनानी है। दरअसल गांधी के हिसाब से सारे लोगों की प्रगति के बारे में अगर हमारे मन में चिंता है तो अपने आप हम तकनीक को पुनर्परिभाषित कर लेंगे और उसको संयोजित कर लेंगे।
1: जी, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, मौजूदा सरकार जो है वो समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए कार्यरत है, ऐसे में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा या सम्मान या उनके अधिकारों को लेकर क्या हमें गांधीवादी दर्शन से भी कुछ दिशा मिलती है, नीति निर्माताओं को कुछ उससे सीख मिल सकती है?
0: जी बिल्कुल। दरअसल आप देखिए, अगर गांधी जी के आश्रमों की बनावट पर गौर करेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ हर व्यक्ति को, चाहे वो उस समय का वहाँ का नेता हो या श्रेष्ठ व्यक्ति हो या सामाजिक पदानुक्रम में किसी भी तबके से आता हो, वो सबको संडास की सफाई से लेकर कचरे की सफाई करनी होती थी। दरअसल एक समुदायगत सफाई कर्मचारी की धारणा को गांधी जी ने झकझोर दिया था, हिला दिया था और बड़े स्तर तक तोड़ दिया था
1: जी।
0: फिर भी एक बड़ी कमी रही हमारे यहाँ, और सफाई के काम के लोगों के प्रति लंबे समय तक राज और समाज दोनों का रवैया उपेक्षापूर्ण था। अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो रहा है और उस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है जो गांधी जी कभी ख्वाब के तौर पर देखते थे। उसकी सीमाएं बेशक अभी भी होंगी, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और व्यापक है, पर ये जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो उसमें तकनीक के आविष्कार की चीजें हैं, उसको वहां फिर से लागू करने की बातें हैं, उससे बेशक उनके जीवन में भी अंतर तो आया है, उस अंतर को भी स्वीकारना होगा, पर अभी भी उन चुनौतियों या उन सवालों या अभी भी उससे वंचित लोगों के प्रति भी सचेत रहना होगा, राज को भी और समाज को भी, व्यवस्था को भी।
1: जी, और अनेक अवसरों पर हमने देखा भी है कि श्रमजीवी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, फिर जिन्होंने श्रम दान किया है स्वेच्छा से ही सही या जिनका वो कार्य है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो या फिर उनके साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाना हो, तो शायद अपने व्यवहार से भी प्रेरित

0: किया है समाज को कि वो सबको साथ लेकर चले और हर कार्य का एक सम्मान जो है वो अपने व्यवहार में दिखाए। जी राजीव जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, हम कहते हैं कि चाहे हम पर्यटन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अपनी शिक्षा की बात करें, सबके मूल में किसी न किसी प्रकार से स्वच्छता है ही, वो इनका केंद्र बिंदु है। कैसे ये सारी चीजें स्वच्छता से जुड़ी हैं?
1: दरअसल हम एक चीज मानते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और सृष्टि की सारी चीजें आपस में ऑर्गेनिकली अवयविक रूप से संबद्ध हैं।
0: जी,
1: आप कहीं भी एक चीज, आप इसको ऐसे आप व्यक्ति के शरीर के हिसाब से सोचें तो आपके किसी भी शरीर के अंग में कोई विच्छेद होता है, कोई दिक्कत आती है, तो पूरे शरीर को उसका कष्ट होता है, हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे ही सफाई का सवाल हमारे यहाँ लंबे समय तक व्यक्तिगत सवाल माना जाता था। हम अपनी, हमारी जितनी परंपरा थी पूजा पाठ की, व्रत अनुष्ठान की, उसमें ज्यादातर में अपने शरीर की सफाई और अपने घर की सफाई पर बल था। गांधी जी ने चिन्हित किया था कि लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, अपनी सफाई करते हैं, और सार्वजनिक स्थलों पर उन गंदगियों को पाट देते हैं। तो दरअसल उन सार्वजनिक स्थलों को वे अपना नहीं समझते, इसीलिए ऐसा करते हैं।
0: जी,
1: जबकि ये सारी चीजें आपस में गहरे तौर पर संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसको उन्होंने समझाया गांधी जी ने, और उसको उन्होंने एक, उनके ही एक बिंब का सहारा लें तो उन्होंने एक सामुद्रिक वलय का सिद्धांत दिया था, जिसमें आप इसको ऐसे समझें कि कोई तालाब का शांत पानी है और आप उसमें कोई कंकड़ फेंकती हैं तो उसमें एक छोटा सा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त बनता है, फिर एक बड़ा वृत्त, जब तक उसमें करंट है, उसमें ताकत है, वो वृत्त बनता जाता है, और सारे वृत्त एक दूसरे के अधीन रहते हैं लेकिन स्वायत्त रहते हैं। तो दरअसल पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि इसी तरह संबद्ध है, व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, गांधी जी जिसको ग्राम स्वराज कहते थे, तालुका, जिला, राज्य, देश, और फिर दुनिया, फिर ब्रह्मांड, और ये सारे सवाल आपस में संबद्ध हैं। और अब तो तकनीक ने हम सबको ग्लोबल विलेज कह दिया है, या पुराने समय में हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई संकट आ रहा है तो बिल्कुल हजारों मील दूर के हिस्से में भी वो संकट का असर दिखना शुरू हो जा रहा है, और कोविड के प्रश्न के बाद तो ये और भी साफ साफ दिखने लगा है।
0: जी,
1: तो गांधी दरअसल बताते थे कि कहीं भी तुम अगर कुछ अन्याय करोगे, कुछ गलत करोगे, या सभ्यता के प्रतिकूल कोई काम करोगे, तो उसका असर सब पर होगा जिस पर तत्काल न दिख रहा हो, जो सामर्थ्यवान हो, जो सोचता हो कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देर सबेर वो भी उसकी जद में आएगा, उसके असर में आएगा ही।
0: जी बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अब कि गांधी जी का एक सादगी का सिद्धांत भी था कि हम जितने सादा रहे उतना अच्छा है, और एक हमारा जेंजी है जो अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन मानता है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई नया फैशन आता है तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा भी बनने लगता है, या हमारी रोजमर्रा की चीजों में उसकी झलक दिखती है। तो कैसे गांधी जी के ये सिद्धांत हम अपना सकते हैं, कैसे हमारे युवा पीढ़ी को ये प्रभावित कर सकते हैं?
1: दरअसल जिस तत्कालिक चकाचौंध में हमारा जेंजी या युवा पीढ़ी या हम सब लोग इसमें आते हैं, उसके असर में आते हैं, देखना ये है कि उससे हमारा जीवन सहज और सरल हो रहा है या हमारा जीवन और जटिल होता जा रहा है।
0: जी,
1: दरअसल सादगी के सिद्धांत के जरिए गांधी जी स्वावलंबन के दर्शन की प्रस्तावना कर रहे थे कि आप स्वावलंबी हो। तो क्या हम इसके साथ साथ पलट कर ये पूछ सकते हैं कि जो लोग सादगी के सिद्धांत के विपरीत आचरण कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो भी ट्रेंड में है वो सारी चीजें हमारे वार्डरोब में होना चाहिए, वे स्वावलंबी भी हैं, और इन सारे ट्रेंड की वजह से क्या उनका जीवन सहज और सरल हो रहा है या उनका जीवन और मुश्किलों से भरा रह रहा है, क्या उनका भविष्य सुरक्षित बन रहा है या उनका भविष्य असुरक्षित होता जा रहा है, वे जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ रही है या उनकी मुश्किलें कम हो रही हैं। अगर इन कसौटियों पर देखें तो वो गांधी जी हो या कोई भी पुरखे का विचार हो, वे सबको समझाई देती है कि जिसमें आपको संयम के साथ

0: की बात कही गई है
1: जी।
0: हमारे यहाँ उपनिषद का एक मंत्र है तेन तत्तेन भुंजिक था कि आप उपभोग करें लेकिन उसमें एक संयम भी हो, आप अपने लिमिटेशंस को भी जानते रहें। पहले कहा नहीं जाता था कि आप पांव उतना ही पसारें चादर जितनी लंबी हो
1: जी।
0: तो दरअसल अगर चादर लंबी नहीं है और पांव पसारते जा रहे हैं तो फिर कर्ज में दबते जा रहे हैं, फिर मुश्किल और अंततः अपना ही जीवन संकट में आ रहा है
1: जी।
0: तो सादगी के सिद्धांत और सादगी के सौंदर्य की स्थापना करके गांधी जी सबके जीवन को सरल और श्रेष्ठ बनाने की बात करते थे। अब ये चॉइस हमारे आपके या युवा पीढ़ी के हाथ में है कि वो उसमें से क्या चुनता है
1: जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जब जिक्र किया तो उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण दिए जहां हमारे युवा कहीं गांव का पोखर साफ कर रहे हैं तो कहीं समुद्र से कचरा निकाल रहे हैं, कभी साथ मिलकर जो है वो कचरे को कैसे अलग करना है उसके निपटान की बात कर रहे हैं और इस दिशा में प्रयासरत हैं। आप बताएं कि कैसे ये जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं ये युवा ऊर्जा को एक सही दिशा दिखाती हैं और कैसे ये हमें अपने समाज से बेहतर तरीके से जोड़ती हैं।
0: बिल्कुल, ये बहुत सकारात्मक और खूबसूरत उदाहरण है। आप समझिए कि जिस दौर में ज्यादातर लोग व्यक्तिवादी और अपने बारे में ही सोचने वाले आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं
1: जी।
0: उसी दौर में एक युवाओं का बड़ा तबका यह भी कर रहा है कि वो प्रकृति और पर्यावरण और सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक संस्थानों या संसाधनों के प्रति वो चिंतित है, सचेत है और उस पर कदम भी बढ़ा रहा है
1: जी।
0: उसको एक्शन में भी लाने की कोशिश कर रहा है और ये उदाहरण तमाम जगहों से, अलग अलग राज्यों का जिक्र किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, तो उन सब जगहों से आ भी रहा है
1: जी।
0: और यही बताता है कि दरअसल मनुष्यता की संभावना शेष है। यही बताता है कि समाज में ऐसी सज्जन शक्ति, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। अब क्या हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दुनियादारी की कसौटी में ऐसे लोग आएंगे, इनको माना जाना चाहिए कि नहीं? दरअसल यही लोग हैं जो दुनिया की चिंता कर रहा हो अपनी चिंता के साथ साथ
1: जी।
0: वही दुनियादार है। हमें दुनियादार की परिभाषा बदलनी होगी और कहना होगा, और प्रैक्टिकल की भी परिभाषा बदलनी होगी। प्रैक्टिकल वही है अगर हमारे पड़ोस का तालाब साफ नहीं है, हमारे यहाँ पानी का लेवल नीचे जा रहा है तो हम कैसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं? प्रैक्टिकलिटी तो यही है, व्यवहारिक बुद्धि तो इसी में है कि हम अपनी पृथ्वी के पानी के स्तर को ठीक रखें, अपने आसपास के तालाब को साफ करें, और चूंकि हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते तो अपने ही तरह के लोगों को खोजें या अपने विचार से लोगों को जोड़ें और कारवां बनता चला जाए
1: जी।
0: हम अपने पड़ोस के नदी, पड़ोस के समुद्र को अगर नहीं साफ कर सकते तो उसका दुष्प्रभाव अंततः हम ही पर पड़ेगा। तो व्यवहारिक होना, दुनियादार होना यही है कि इन सब चीजों से अपने को जोड़ लें। और ये इतना खूबसूरत नजीर है जो बताता है कि उसी समय में जब लोग अपने से दूर देखना नहीं चाहते, सबसे अपने को काट कर देखने का एक दर्शन का अनुपालन कर रहे हैं, उसी समय में ऐसे नौजवान भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, वो चाहे आंध्र प्रदेश के हों या मध्य प्रदेश के हों या मुंबई के हों
1: जी,
0: जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, वे सब नदी की, तालाब की, बावड़ियों की या समुद्र की सफाई करके अपने को उससे जोड़ रहे हैं, संबद्ध कर रहे हैं।
1: और हम वो संस्कृति रहे हैं जहाँ प्राकृतिक उपादानों की पूजा होती रही है। हम आज भी हमारे तीज त्योहारों पर नदी के जल को पूजा जाता है, तो समुद्र मंथन जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो हमारा ये एक तरह से कर्तव्य भी बनता है कि स्वच्छता से इन्हें जोड़े और इनका देखरेख जो है वो हम जिम्मेदारी से करें। एक और सवाल मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी राजीव जी, जब हम महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आता है जिसने बहुत सारे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को दिशा भी दिखाई और एक महत्वपूर्ण प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम का महात्मा गांधी रहे। आज जब हम उनका जिक्र करते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि विरोध स्वरूप कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि उस दौर में जितना सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन

0: शुरू हो जाता है, बहस शुरू हो जाती है बहुत सारे नामों को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर महात्मा गांधी के प्रति सम्मान प्रकट किया जा रहा है तो क्या ये अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करना है या उनकी अवमानना करना है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति किया जाने वाला सम्मान किसी के प्रति असम्मान या उनकी अवहेलना या उनका अपमान नहीं है। दरअसल वो भारत की आजादी की लड़ाई के कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ को सबसे अधिक महत्व मिलता ही है। उसके अलावा आप जिन लोगों की चर्चा कर रही हैं, उनका असर उस समय भारत की आबादी के अल्पांश में था। चाहे आप जिनका जिक्र करेंगी, अगर आप फिर तुलना करके देखेंगी तो जिस व्यक्ति का असर उस समय भारत के सबसे ज्यादा लोगों पर था वो महात्मा गांधी थे। तो जाहिर सी बात है तवज्जो उनको ज्यादा मिलेगी, पर सिर्फ इस वजह से तवज्जो नहीं मिल रही। दरअसल गांधी जी की राष्ट्र की जो कल्पना थी वो उस कल्पना में भारत का विविध समाज और अलग अलग स्तरों में विभक्त या अलग अलग तरह का दिखने वाला समाज का सारा अंग शामिल था। दरअसल गांधी जी किसी एक समाज के प्रतिनिधि नहीं थे, किसी एक समाज के हित की चिंता नहीं कर रहे थे। चाहे वो समाज जाति के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, जाति लिंग धर्म भाषा के आधार पर जो लोग आजादी की लड़ाई में हमारे जो पूर्वज लगे हुए थे, दरअसल वे किसी तबके के प्रतिनिधि के तौर पर थे। गांधी जी इन सबके नेता के तौर पर थे
0: जी।
1: तो कमांडर इन चीफ की या जिसकी राष्ट्र कल्पना में सारे लोग शामिल हो सकते हैं, सबकी पीड़ा को अधिकाधिक दर्ज किया जा सकता हो, जिसका पाठ इतना व्यापक हो जिसमें सबकी आवाज को समाहित किया जा सकता हो, और जो इतना सहिष्णु हो जो अपने से असहमत के साथ भी खुले दिल से बात करने को तैयार हो और अपने कमी आने पर अपने को सुधारने को भी तैयार हो, जो इतना संवाद धर्मी हो, इसलिए इनको सबसे ज्यादा महत्व मिलता है। पर इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हम अपने बाकी सारे राष्ट्र नायकों को हम पीछे छोड़ रहे हों। इनके सम्मान में उनका अपमान नहीं है। जहां तक बात है भिन्न भिन्न दृष्टियों की, तो ये देखना होगा कौन सी दृष्टि सबसे ज्यादा समावेशी है, कौन भारत की विचार और ज्ञान के महान परंपरा का वाहक है जिसमें सबके लिए जगह है, कौन अधिक करुणामयी है, कौन सर्वाधिक उदार है। और इस कसौटी पर आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही दिखेंगे। अब एक दूसरी बात मैं यहीं दर्ज कर दूं कि इसके साथ साथ हमारे वो पूर्वज जो क्रांतिकारी धारा के थे, जो हिंसा में यकीन करके आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दरअसल उनके प्रति भी गांधी जी के यहाँ कोई दुर्भाव नहीं दिखेगा। पर उनको सिर्फ ये लगता था कि हिंसा के आधार पर ना तो आप आजादी पा सकते हैं और ना आप एक नए किस्म की सभ्यता की रचना कर सकते हैं। ताकत के आधार पर ली गई आजादी को निभाने के लिए भी उससे अधिक ताकत की जरूरत पड़ेगी
0: जी।
1: आप ये भी गौर करिए कि गांधी जी से पहले भी हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने 1857 का युद्ध लड़ा था। 1857 की जो हमारी पहली आजादी की लड़ाई थी
0: जी,
1: या उसके पहले जो हमारे आदिवासी पूर्वजों ने जो आजादी की लड़ाई अपने अपने इलाकों में लड़ी थी, उन सबको कुचलने में अंग्रेजों को बहुत बहुत आसानी हुई। किसी भी दौर में किसी भी सत्ता के लिए अहिंसक संघर्ष, सत्याग्रह के संघर्ष को कुचलना बेहद कठिन है, क्योंकि वहां लड़ने वाला निर्भीक हो जाता है। आप गौर करें, हिंसा के जरिए कोई कार्रवाई करने वाला सत्ता से हमेशा छुपने की बात करता है, पर अहिंसा के जरिए अपनी मांगों पर अडिग निर्भय बनकर उसके सामने खड़ा रहता है, वो अपनी बात कहता रहता है, और ताकतवर से ताकतवर सत्ता को झुकना ही पड़ता है, सोचना ही पड़ता है
0: जी। एक और प्रश्न मैं यहाँ आपसे ये करना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इस समय हर उम्र के श्रोता आपको सुन रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे युवा साथियों के मन में ये विचार आए कि वो गांधी स्मृति से जुड़ना चाहते हैं या गांधी दर्शन को समझना चाहते हैं, दर्शन समिति से जुड़ना है, तो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं और क्या कोई भी व्यवसायी हो या फिर वो छात्र हो वो जुड़ सकते हैं ऐसे?
1: बिल्कुल, गांधी दर्शन और गांधी स्मृति तो दो संस्थान हैं जो दोनों मिलकर फिर एक हुए हैं, वो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, उसकी स्वायत्त संस्थाएं हैं। ये राजघाट के पास हैं, वहाँ राजघाट बापू की जहाँ समाधि है वहीं पर एक दफ्तर है और दूसरा वहीं पर राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है जहाँ गांधी जी से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं को रखा गया है और जिसको गांधी स्मृति हम कहते हैं, जहाँ गांधी जी की हत्या की गई थी वो स्थल है
0: जी।
1: तो उन स्थलों पर अभी भी प्रतिदिन हजारों लोग जाते हैं और वहाँ किसी किस्म की बंदिश नहीं होती, कुछ एक अवसरों को छोड़कर जिस दिन वहाँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या दुनिया के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सुरक्षा कारणों से उस दिन कुछ कुछ अनुशासन रखा जाता है। पर गांधी का विचार तो सबके लिए है, गांधी की फिलॉसफी तो सबके लिए है, उसमें सबके लिए जगह है
0: जी।
1: दरअसल जो न्याय की कामना रखता है और एक न्यायपूर्ण समाज की रचना की बात करता है, उन सबके लिए उनका रास्ता, उनका दर्शन खुला हुआ है और वे सबके लिए हैं, वे सबके हैं
0: जी। बहुत अच्छी पंक्ति आपकी ये, वे सबके हैं। कहा जाता है गांधी समसामयिक है, गांधी प्रासंगिक है और गांधी सबके हैं। गांधी चिंतन या गांधी विचारधारा को हम किसी एक कालखंड से नहीं जोड़ सकते, किसी एक घटना से नहीं जोड़ सकते। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज इस कार्यक्रम में हमने बात की बापू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि की, जो है स्वच्छता, बापू का मूल मंत्र जो कि हमेशा प्रासंगिक रहा है, हर समय हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा, समाज के प्रति हमें अधिक जिम्मेदार बनाता रहा। और अगर ये कहा जाए कि हमें एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाता रहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ रहे गांधीवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राजीव रंजन गिरी। आप लेखक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही गांधी स्मृति और दर्शन समिति राजघाट से भी आप जुड़े रहे। गांधी दर्शन की पत्रिका अंतिम जन के आप संपादक रहे हैं। गांधीवाद रहे न रहे, पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज सहित कई पुस्तकों के आप संपादक और लेखक रहे हैं। आज कार्यक्रम में बेहद रोचक तरीके से, बेहद ही सादे शब्दों में आपने हमें गांधी दर्शन के बहुत सारे बिंदु जो हैं वो समझाए, जो आज भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो राजीव जी, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
3: There are countries who are emerging.
4: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा है कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके

0: साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलिन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। उन्होंने भदोही में एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 1,340 करोड़ रुपए से अधिक की 112 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन तक मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान जताया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। हालांकि कल से कोंकण क्षेत्र में मौसम के ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday. He said the world, its agenda and its geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers.
2: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
1: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Dr. Jaishankar termed the Russia-Ukraine conflict as unfortunate, saying that India's position has been very clear that it would like to see an end to this conflict. India and Canada will kick off the 5th round of negotiations today for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The 5-day round, led by the chief negotiators of the two countries, will continue till 9th of this month. The previous round concluded in New Delhi on 18th of last month, with officials now pushing for faster progress towards a final agreement. Swiss President Guy Parmelin will arrive in New Delhi today for a three-day stay.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। आज इस कार्यक्रम गीत सुहाने के संग आपके साथ जुड़ी हूँ मैं श्रेयसी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एक फिल्मी संगीतमय सफर का और आगाज करते हैं इस गीत से।

कश्मीर की कली फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। अगर जब भी रोमांटिक गीतों का सिलसिला चलता है तो रफी साहब का नाम ऑटोमेटिकली हमारी जबान पर आ ही जाता है, और ऐसा ही एक और मस्ती भरा नगमा मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की और सुमन कल्याणपुरी की। फिल्म का नाम ब्रह्मचारी और पेश है ये गीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ दोस्तों, तो जब बात होती है प्यार मोहब्बत की या उन जज्बातों की जो हम बयां नहीं कर पाते हैं, तो हम लेते हैं बॉलीवुड के इन बेहतरीन गानों का सहारा। ये गीत आपने सुना फिल्म जब जब फूल खिले से, आवाज लता मंगेशकर की। ऐसा ही एक और नगमा आपके साथ साझा कर रही हूँ, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है और फिल्म का नाम दो रास्ते।

और यूं ही जब कोई नगमा ऐसे हमें छू जाए तो अक्सर हमारे दिल में भी अपने प्यार का इजहार करने की चाह उठती ही है। जी हाँ, और उस चाह में हम ये भी सोचते हैं कि बस जो साथ मिले हमदम का तो सफर यूं ही आसान हो जाए।

जब बात हो रही हो मोहब्बत की तो इस फिल्म के कोई भी नगमे को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। जी हाँ, फिल्म का नाम कश्मीर की कली और आवाजें आशा भोसले मोहम्मद रफी की। और जब भी मोहब्बत या प्यार या एहसास या रूहानी रिश्ते किसी भी ऐसे टॉपिक का डिस्कशन चलता है तो जाहिर सी बात है रफ़ी साहब का नाम या लता मंगेशकर या आशा भोसले हमारे जो बेहतरीन सिंगर रहे इन सब का नाम बस यूं हमारे नज़रों के सामने से गुजर जाता है और बेहतरीन नगमे हमारे सामने आते हैं। उसी में से एक और पीस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अगला नगमा फिल्म हम दोनों से लिया है मैंने, ये आपके लिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलेन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलेन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कल 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 का वक्त हो चला है और ये वक्त है कार्यक्रम रात सुरमई का। तो आइए आज रात सुरमई के कार्यक्रम में कुछ अलग अंदाज से 1990 के दशक से लेके 2000 तक के कुछ बेहतरीन गीतों का संकलन आपके साथ साझा करती हूँ। शुरुआत करते हैं इस नगमे से।

फिल्म परदेस का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, फिल्माया गया शाहरुख खान और महिमा चौधरी पर, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल सज्जाए आनंद पक्षी ने और म्यूजिक नदीम श्रवण का। इतने सारे जब दिग्गज लोग एक साथ हों तो जाहिर सी बात है एक बेहतरीन सा नगमा जरूर बनता है। ऐसा ही एक अगला नगमा आपके साथ पेश करने जा रही हूँ। जीत फिल्म का ये गीत है, करिश्मा कपूर और सलमान खान पर फिल्माया गया है, आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

फिल्म इम्तिहान का ये नगमा दोस्तों आपने सुना। फिल्माया गया सैफ अली खान और रवीना टंडन पर, आवाज कुमार सानू की और बोल सजाए फैज अनवर ने। जहां एक तरफ कोई बात करता है कि तेरे चेहरे पर नजर छोड़ जाऊंगा, वहीं दूसरा ये भी इस पहलू को भी ज्यादा चेरिश करता है, एंजॉय करता है कि काश उनसे राहों में मुलाकात हो जाए। जी हाँ, अगला नगमा विजय पथ फिल्म का आपके लिए।

दोस्तों, अक्सर जब भी हम बातें करते हैं अपने प्यार और इजहार की, तो कहीं ना कहीं हमें सामने वाले पर प्यार भी उसी हिसाब से आता है और फिर गुस्सा भी वैसा ही लगता है। भाई, अब बात आती है कि गुस्सा क्यों लगता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम इतना तड़प रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो तो अपना कुछ इजहार कर ही नहीं रहा होता, हमें किसी भी तरह का कोई क्लू हिंट कुछ दे ही नहीं रहा होता। अब आप कहेंगे कि मैं ये अचानक से इस तरह की बातें क्यों लेकर बैठी हूँ। अचानक कुछ नहीं है, ये तो बस इन गीतों का सिलसिला है जो मुझे उस एरा में ले जा रहे हैं 1990 से लेकर 2000 तक के दशक में, जहां पर इजहार करना चाहता है लड़का, सुनना चाहती है वो बातें लड़की, लेकिन ना वो लड़की आगे बढ़ती है अपने दिल की बात कहने के लिए और ना लड़का लिहाज में आगे बढ़ता है। ये जो एरा थी 90 से भी 2000 तक के दशक की, ये जो पूरा 10 साल था, अगर आपको याद हो तो ये सारी फिल्में, ये सारी पिक्चरें, सारे गाने हमें सीधे एक ऐसे पशुपेश वाले जज्बात में ले जाते हैं जहां हम कहना काफ़ी चाहते हैं और हमें पता है शायद सामने वाला मान भी जाए, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ दिल में रह जाती है और हम वो बात नहीं कह पाते। या तो बीच में कोई विलन आ जाता है और ना हो तो माँ पापा के अपने संस्कार आ जाते हैं। तो ये जो समय था ना 1990 के दशक वाला, जो पूरा ये जो एक दशक बीता है, ये हमारे जैसे हर किसी मैं यंगस्टर तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, ये एक सर्टन एज की ये वो मेमोरीज हैं जो कि कभी हम भूल नहीं सकते, और ये सारे गाने कहीं ना कहीं हमें उनसे जोड़ते रहते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड और कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई, और आज रात सुरमई के इस खास कार्यक्रम में हमने आपके साथ वो गीत साझा किए जो बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है उसके बारे में तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। जी हाँ, दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इन सब में एहसास है, जज्बात है, इकरार है, लेकिन इनकार किसी में भी नहीं है। बताना चाहते हैं, बता नहीं पाते हैं, बस ऐसा ही कुछ है। खैर, चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस

मेरे गीत की तरफ। ओ अच्छा हाँ, मैं वैसे ये तो बताना भूल ही गई कि घड़ी जो है वो अब इशारा कर रही है कि जल्दी ही हमें अपने इस कार्यक्रम रात सुरमई को यहीं पर देना होगा विराम। उसके बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार और उसके बाद अगला कार्यक्रम गीतों का सिलसिला लेकर के जारी हो जाएगा। तो खैर, चलते चलते ये एक आखिरी नगमा आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरती और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पारमेलन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के उत्सुक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। मतदान कल मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। ये चुनाव स्नातक और शिक्षा निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए होगा। भाजपा ने पुणे संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्मिता जाधव, नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सुधाकर कोहले और पुणे संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कौस्तुभ गावड़े को उम्मीदवार घोषित किया है। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा।

कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसास किसी पैगाम के मोहताज नहीं होते। दूर रहकर भी जो दिल के सबसे करीब रहे, वो रिश्ते किसी मुलाकात के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, रात के इस खूबसूरत पहर में आपका स्वागत है। आपने अपने कार्यक्रम हमराही में और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। रात के इस सन्नाटे में शहर की आवाजें धीमी पड़ी हुई हैं और शायद इसी खामोशी में कोई अपने किसी साथ को याद कर रहा है। किसी को किसी की आवाज तो किसी को किसी की मुस्कान याद आ रही होगी और किसी को शायद सिर्फ इतना याद आ रहा होगा कि कोई था जो मुझे समझता था, सिर्फ वही।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म इंतकाम से। दोस्तों, प्रेम हमेशा साथ चलने का नाम नहीं, कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है दूर रहकर भी किसी के सुख की दुआ करना। तो आज की रात उन तमाम रिश्तों के नाम जो दूरी से कम नहीं हुए बल्कि दूरी ने उन्हें और ज़्यादा गहरा बना दिया।

कितनी अजीब बात है ना, हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ थोड़ी देर साथ चलते हैं और फिर उनकी राहें अलग हो जाती हैं। लेकिन कोई एक ऐसा भी होता है जिससे बात करके लगता है कि हाँ, यही वो इंसान है जिसके सामने मुझे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं। उसके सामने हम अपनी खुशियाँ भी रख देते हैं, अपनी कमज़ोरियों भी, अपने डर भी और अपने वो राज भी जिन्हें दुनिया से छिपा कर रखते हैं। यही तो प्रेम की खूबसूरती है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:27 और ये अब हो चुके हैं 28 मिनट। 3:28

कहते हैं ना, फासले सिर्फ रास्तों में होते हैं, दिलों में नहीं। कभी कोई इंसान हमसे बहुत दूर होता है, लेकिन सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उसी का ख्याल आता है। रात को सोने से पहले आखिरी याद भी उसी की होती है। दिन में कोई छोटी सी बात होती है और मन कहता है कि काश ये बात उसे भी बता सकते। यही जुड़ाव है सच्चे रिश्तों का। हर दिन साबित करने की जरूरत नहीं होती, उनमें एक विश्वास होता है कि जहां भी हो मेरे दिल में हो।

तुमसे दूर रहकर भी दूर नहीं हूँ, यादों के सफर में कभी मजबूर नहीं। तुम सामने नहीं फिर भी हर पल साथ हो, शायद इसी एहसास का नाम मोहब्बत है।

दोस्तों, कुछ लोग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रहते, वे हमारी आदत बन जाते हैं। उनकी कही हुई हर बात याद रहती है, उनका किसी खास अंदाज में हंसना याद आता है, उनका नाराज होना फिर थोड़ी देर बाद खुद ही मान जाना। रात की खामोशी में यादें बड़ी शरारती होती हैं। एक तस्वीर दिखी नहीं, पूरा बीता हुआ समय आंखों के सामने छा जाता है। एक गीत बजा नहीं कि लगता है जैसे कोई पुरानी शाम फिर लौट आई हो, और फिर दिल धीरे से कहता है, काश वो पल फिर से मिल पाते।

प्रेम की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि इसमें हर बात कहनी नहीं पड़ती। कभी सामने वाला सिर्फ आवाज सुनकर समझ आता है कि आज मन उदास है, कभी मैं ठीक हूँ ये सुनकर ही जान जाता है कि आप ठीक नहीं हैं, और फिर वो समझ जाता है कि बहुत कुछ है। यही रिश्ता दिल के सबसे करीब होता है, जिसमें शब्द कम पड़ जाएं लेकिन समझ कभी कम ना हो।

दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिससे आप रोज बात नहीं कर पाते, तो आज रात उसे याद जरूर कीजिए। जरूरी नहीं कि संदेश या फोन करें, बस दिल से कहिए तुम जहां भी रहो खुश रहो, क्योंकि प्रेम पाने का नाम नहीं, किसी की खुशी में अपनी खुशी खोज लेने का नाम ही

और दोस्तों आखिर में जिससे प्रेम करते हो उसे सिर्फ अपने पास रखने की कोशिश मत कीजिए, उसके दिल में अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फासले कितने भी हों दिल का रास्ता रहता है। कोई अपना दूर होकर भी अपना रहता है। मुलाकातें भले ही कम हो जाएं जिंदगी में, सच्चा रिश्ता हो तो एहसास हमेशा रहता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई परमेलन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति परमेलन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर इंटेलिजेंस फोर्स नामक नई सरकारी कार्यबल की घोषणा की है। यह कार्यबल संघीय सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़े प्रयासों के बीच समन्वय का काम करेगा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहली अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक यात्रा को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए माल की खेप जलमार्ग से भेजी जाएगी। सड़क परिवहन और जलमार्ग राजमार्ग मंत्रालय आज से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भदोही जिले का नाम अब संत रविदास नगर भदोही होगा। उन्होंने भदोही में एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। भारतीय बैडमिंटन टीम आज मिस्र के काहिरा में आयोजित BWF विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत का मुकाबला आज अल्जीरिया से और कल पेरू से होगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ वर्षा तथा बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़चिरौली के कुछ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will hold bilateral discussions in New Delhi today. President Parmelin will arrive this morning on a three-day state visit to India, accompanied by a high-level delegation comprising senior officials and business leaders. Mr. Modi and President Parmelin will review progress in bilateral cooperation across a wide range of areas, including trade and investment, science, technology and innovation, mobility, culture, and people-to-people contact. The visiting dignitary will also meet President Draupadi Murmu and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said international peace and security, supply chain resilience and connectivity are among the key areas where emerging and middle powers can play an important role. Dr. Jaishankar was speaking at the 62nd Munich Security Conference in New Delhi yesterday. He said the world, its agenda and geopolitical landscape are all undergoing significant changes, creating substantial scope for cooperation among emerging and middle powers.
3: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
2: The minister also emphasized that Russia is a country that stood by India in many ways when India's security and territorial integrity was under threat. He stressed that at a time when much of the world preferred backing a military regime next to India, Russia was a country with which India's relations were very good. Dr. Jaishankar termed the Russia-Ukraine conflict as unfortunate, saying that India's position has been very clear and that it would like to see an end to this conflict. India and Canada will kick off the fifth round of negotiations today for their proposed Comprehensive Economic Partnership Agreement in Ottawa, as both sides aim to conclude the trade pact by the end of 2026. The five-day round, led by the chief negotiators of the two countries, will continue till 9th of this month. The previous round concluded in New Delhi on 18th of last month, with officials now pushing for faster progress towards a final agreement. The government has said that under the National Supercomputing Mission, India has established an ecosystem focused on achieving self-reliance in supercomputing. The mission was launched in April 2015 with an outlay of about 4,500 crore rupees to strengthen the country's computing capabilities. According to an official release, India's supercomputing ecosystem is set to grow significantly by expanding computing capacity and developing more advanced technologies within the country. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal will today flag off the first international cargo voyage from Dibrugarh, Assam. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma will also attend the ceremony virtually. According to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, this maiden voyage will carry methanol from Assam Petrochemicals Limited, departing Bogibeel for Pangaon Port in Dhaka, Bangladesh. The Ministry of Road Transport and Highways will organize a two-day Chintan Shivir in Gujarat from today. The conclave will bring together senior representatives from the center states and implementing agencies to deliberate on key issues concerning the development and delivery of highway infrastructure in the country. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has announced that Bhadohi district has been renamed Sant Ravidas Nagar Bhadohi. The Chief Minister made the announcement while addressing a program in Bhadohi after inaugurating and laying the foundation stones for 112 development projects worth over 1,340 crore rupees. India has begun its campaign at the BWF World Junior Mixed Team Championships in Cairo, Egypt. The Indian team is led by Tanvi Patri, who recently won the Under-17 Girls Singles title at Badminton Asia Junior Championships. India are placed in Group D1 with Peru and Algeria. They will face Algeria today and Peru tomorrow. The tournament is being played under a new 3x55 relay scoring system and will conclude on the 10th day of this month. And that's the end of this news bulletin.

जब रात अपनी आखिरी चादर समेट रही हो, जब आसमान के माथे पर उजाले की पहली किरण अभी दस्तक ना दे पाई हो और जब चारों ओर एक ऐसी खामोशी हो जिसमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगे, तब समझिए एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। सुबह सिर्फ उस सूरज निकलने का नाम नहीं, सुबह उस उम्मीद का नाम है जो हमसे कहती है कल चाहे जैसा भी रहा है आज को बेहतर बनाया जा सकता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अरुणिमा कार्यक्रम के साथ, मैं अर्चना गोयल आपके साथ। आइए आज की शांत सुबह में उस परम शक्ति को याद करें जिसकी कृपा से हमको एक और दिन मिला है।

हे प्रभु, आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद उस सांस के लिए जो जीवन का एहसास कराती है। धन्यवाद उस परिवार के लिए जो हमारा अपना है। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो हमें संभालते हैं, और धन्यवाद उन चुनौतियों के लिए जो हमें हर दिन मजबूत बनाती हैं। आज हमारे मन में किसी के लिए शिकायत कम हो, किसी के लिए प्रेम अधिक हो, हमें इतनी शक्ति देना कि हम परिस्थितियों से हारे नहीं, और इतनी बुद्धि देना कि परिस्थितियों से सीख लें।

दोस्तों, सुबह का ये समय हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है। बाहर की दुनिया जागने से पहले अगर हम अपने भीतर जाग जाएं, तो दिन अपने आप बेहतर होने लगता है। सूरज भी निकला नहीं है, लेकिन उसका आना तय है। यही तो जीवन है। अंधेरा इस बात का प्रमाण नहीं कि सूरज नहीं निकलेगा। अंधेरा हमें ये बताता है कि उजाला आने वाला है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल।

आज सुबह खुद से एक वादा कीजिए, मैं बीते कल की गलतियों को अपनी आज की पहचान नहीं बनने दूंगी। जो हो गया उससे सीखूंगी और जो आने वाला है उसकी चिंता करने के बजाय आज को ईमानदारी से जीने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जिंदगी हमेशा बड़ी खुशियों से खूबसूरत नहीं बनती। कभी किसी की मुस्कान तो कभी किसी का साथ, कभी चाय की एक प्याली या कभी आसमान को कुछ पल निहारने से भी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है।

दोस्तों, सुबह का ये शान समय खुद से मिलने का भी समय है। दिन भर हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी अपेक्षाएं पूरी करते हैं, लेकिन क्या कभी कुछ पल अपने लिए भी निकालते हैं? कभी गहरी सांस लेकर खुद से पूछिए कि वास्तव में मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस बात की खुशी मिलती है। शायद इन सवालों के जवाब किसी किताब में ना हो, लेकिन आपको शांति का रास्ता दिखा देते हैं।

क्या आपने सूर्य निकलने से पहले की हवा को महसूस किया है? पेड़ों पर बैठे पक्षी धीरे धीरे अपनी आवाज से सुबह का स्वागत कर रहे हैं। फूल अभी पूरी तरह खिले नहीं हैं, लेकिन उनके खिलने की संभावना बहुत है। शायद यही सबसे बड़ा संदेश है। हर चीज को खिलने में अपना समय लगता है।

0: और अब एक छोटी सी प्रार्थना। हमारे घर में सुख रहे, मन में शांति रहे, विचारों में पवित्रता रहे और हमारे हाथ किसी की मदद के लिए उठे, हमारी आंखें दूसरों की भलाई देख सकें और हमारा हृदय कृतज्ञ बना रहे। जब रास्ता कठिन हो तो धैर्य देना, जब सफलता मिले तो विनम्रता देना और जब असफलता मिले तो फिर से उठने का साहस देना।
1: बोलो हाथ की सफाई की जय, हाथ की सफाई की जय, मेहनत की कमाई की।

कुछ ही देर में निकलने वाला है और जब पहली किरण धरती को छुएगी तो वो हमसे कुछ नहीं पूछेगी। वो ये नहीं पूछेगी कि कल आपने क्या खोया, वो बस अपना प्रकाश देगी। तो फिर क्यों ना अपने जीवन में हम प्रकाश बांटें, किसी से प्रेम से बात करके, किसी को माफ करके, किसी उदास व्यक्ति का हाल पूछकर, क्योंकि रोशनी सिर्फ पानी से नहीं बढ़ती बल्कि रोशनी बांटने से बढ़ती है।

दोस्तों, आज की सुबह आप एक विश्वास लेकर चलिए कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं मुस्कुरा सकता हूँ और ईश्वर मेरे साथ है। इसी विश्वास के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए। इस खूबसूरत विचारों के साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहेगी। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन 3 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारी जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: राष्ट्रपति पारमेलिन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए वार्ता करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय परिदृश्य में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर खतरा था, उस समय रूस ने कई तरह से भारत का साथ दिया। नई दिल्ली में हुए 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश भारत के पड़ोस में सैन्य शासन का समर्थन कर रहे थे, तब रूस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंधों पर इस ऐतिहासिक विरासत का गहरा प्रभाव है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉ सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र को भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है, जिन्होंने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है हमारे स्टूडियो की घड़ी में। समय हुआ है सुबह के 5:11:08 और ये वक्त है कार्यक्रम भोर सुहानी का। भोर सुहानी के साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों।
1: प्यार है मंदिर, प्यार है पूजा।
0: कार्यक्रम की शुरुआत इस प्रार्थना के साथ।

दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना है तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो। नियत देखनी है तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताकर देखो, उसके बारे में सब पता चल जाएगा।

एक पेन गलती कर सकता है, लेकिन एक पेंसिल गलती नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ एक दोस्त है और वो दोस्त है रबर। जब तक एक सच्चा दोस्त आपके साथ है, वो आपकी जिंदगी की गलतियां मिटाकर आपको अच्छा इंसान बना देगा। इसलिए हमेशा सच्चे और अच्छे दोस्त अपने साथ रखिए दोस्तों।